0: बांसुरी वादन, राग था नट भैरव। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप पहले हिंदी और फिर 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांव से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की। ये यात्रा 7 अक्टूबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को समीप से समझने का अवसर देती है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान के प्रति अपने स्पष्ट और निरंतर समर्थन को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के से अलग दो राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। मंत्रालय ने कहा कि भारत राजनीतिक समर्थन के साथ व्यवहारिक सहयोग पर भी बल देता है। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $20 ट्रिलियन की है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत का नदियों के साथ संबंध हजारों वर्ष पुराना है। उन्होंने कहा कि देश के शहर, सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी हुई है। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में 7वें नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यमुना का पुनरुद्धार केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसे एक सांस्कृतिक अभियान के रूप में भी आगे बढ़ाना होगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का 4था संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मान किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ

0: The relay race at Nagoya. Before that, Seema Kumari won bronze in the 10,000-meter race after finishing at third spot in 32.50 minutes. The achievement marks India's first medal in the women's 10,000-meter event at the Asian Games in 16 years. And that is the end of this news bulletin.
1: Yee. आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 6:10 और पूरे 15 सेकंड। और आइए आप सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शबद, और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे सफलता का दर्शन। वाचन स्वर रहेगा सुभाषिनी शर्मा का।
1: सफलता एक ऐसा शब्द है जिसका अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ होता है। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब वित्तीय स्थिरता या पेशेवर उपलब्धि के लिए एक निश्चित स्तर तक पहुंचना हो सकता है। इसके विपरीत दूसरों के लिए सफलता का मतलब एक संतुष्ट व्यक्तिगत जीवन या दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालना हो सकता है। सफलता कोई साधारण बात नहीं है। यह केवल आपके धन और भौतिक संपदा की प्राप्ति के द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती। सफलता का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। यह केवल आपकी आंतरिक शांति और मानसिक नियंत्रण की उस मात्रा से आंका जा सकता है जो आपको हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने के योग्य बनाती है। वही सच्ची सफलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सफलता मनुष्य को मिलती कैसे है? सफलता पाने के लिए कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। प्रथम नियम है कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। सफलता के लिए मेहनत और लगन बहुत जरूरी है। मेहनत करते समय धैर्य रखना चाहिए। कहा गया है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। दूसरा नियम, सही लक्ष्य का चुनाव। हमारे आने वाला समय कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं। व्यक्ति को अपने साधनों और कार्य क्षमता के अनुसार सोच समझकर अपना लक्ष्य चुनना चाहिए। जीवन की विडंबना यह नहीं है कि आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, बल्कि यह है कि आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। हमेशा लक्ष्य अपनी क्षमताओं को सोचकर चुनें। तीसरा नियम सकारात्मक सोच से संबंधित है। दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना ही असली सफलता है। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। इससे परेशानियों का सामना करना भी आसान होता है। वस्तुतः सकारात्मक सोच एक मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण है जो जीवन के उज्ज्वल पक्ष पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। जीवन में सकारात्मकता एक ऐसी चाबी है जिससे व्यक्ति हर समस्या के ताले को खोल सकता है। हर विचार एक बीज की तरह होता है। अतः हमें ही ये तय करना है कि हमें सकारात्मक सोचना है या नकारात्मक। सकारात्मक सोच की शक्ति से घोर निराशा और अंधकार को भी आशा की किरणों में बदला जा सकता है। चौथा नियम है सही मार्ग का चुनाव। मनुष्य को जीवन में सफल होने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम सही रास्ते का चुनाव करें। हमें अपने कार्य में पूरी ईमानदारी रखनी चाहिए और मेहनत और समर्पण से पूर्ण करना चाहिए। सही रास्ते ही हमें सही मंजिल पर पहुंचा सकते हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानें, ये पांचवा नियम है। हमें अपनी क्षमताओं को पहचान कर ही आगे बढ़ना चाहिए व धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। छठा नियम आत्मविश्वास से संबंधित है। हमको अपने मन में हमेशा यह भरोसा रखना चाहिए कि सफलता का जो सपना हमने देखा है वह पूरा हो सकता है। मुझे खुद पर और अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास है, यही सोचना और दोहराना चाहिए। आत्मविश्वास एक मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है। आत्मविश्वास से ही विचारों की आज़ादी मिलती है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें अपना ध्यान गलतियों या समस्याओं पर केंद्रित करने की बजाय अपनी खूबियों पर केंद्रित करना चाहिए। सकारात्मक विचार ही आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, बस हमें मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हार मानना हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि सफलता का पहला कदम है। खुद पर भरोसा रखो, आपके सपने

0: आपकी मेहनत से ही सच होंगे। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं रखोगे, दूसरा भी आप पर विश्वास नहीं रखेगा। सफलता का दर्शन जीवन में व्यक्ति के सकारात्मक दृष्टिकोण से संभव होता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आइए सुनते हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड भाग 59।

सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहउ मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजसु विधि हाथ। श्री रामचरित मानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए ये वचन कहे थे। राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है, सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। मुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार नारी वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्णों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा अन्य लोगों के हित अहित और उन कार्यकलापों की चर्चा की जिनके कारण वे सोच करने के हेतु बनते हैं। राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़भागी थे, अतः उनके कारण विषाद व्यर्थ है। उन्होंने भरत को राज दिया है तो भरत को पिता के वचन को साकार करना चाहिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की है और सेवा कार्यों में हिस्सा लिया है। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में जारी इन मोटरसाइकिल रैलियों का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना है। ये यात्रा 7 अक्टूबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को करीब से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर की है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इसका विषय है, बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से करें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मानित किया जाएगा। भारत ने इसराइल फलस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान के प्रति अपने स्पष्ट और निरंतर समर्थन को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग दो राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए अपना दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का सामना नेपाल से होगा। भारत की पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.

810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 7:10 और पूरे 15 सेकेंड। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे स्वाति मिश्रा द्वारा गाए भजनों का। सहयोगी कलाकार रहेंगे खालिद मुस्तफ़ा सितार पर, दानिश असलम सरोद वादन और दामोदर लाल घोष हारमोनियम पर संगत करेंगे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत का, जिसके अंतर्गत आपने सुना स्वाति मिश्रा द्वारा गाए भजन। साथी कलाकार थे खालिद मुस्तफा सितार पर, दानिश असलम सरोद वादन और दामोदर लाल घोष हारमोनियम पर। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर

मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिरकर वो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। ये शानदार पंक्तियाँ आज सुबह के इस वक्त के एक पन्ने की तरह हैं। कल क्या हुआ उसे भूल जाइए, क्या छूटा उसे भी भूल जाइए, लेकिन आज का दिन आपका है, आपकी मेहनत का है, आपके सपनों का है। तो बस गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए और तैयार हो जाइए आज के दिन को अपनी मुट्ठी में करने के लिए। मैं हूं आपकी दोस्त आरती गौर और लेकर आई हूं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी का, सुबह हो गई है और सुबह उठते उठते इतने प्यारे प्यारे विचार भी आप तक मैंने पहुंचा दिए हैं। अब तो सुबह में चार चांद भी लग गए होंगे, वैसे सुबह चांद नहीं सूरज निकलता है, लेकिन फिर भी जब हम किसी चीज़ की खूबसूरती की बात करते हैं तो चांद अपने आप ही दिल में आ ही जाता है और सुबह का सूरज जगमगाने लगता है। चांद और सूरज के बीच की ये जो खूबसूरती है, यही तो हमारे जीवन की भी खूबसूरती है। कभी रात है कभी दिन है, लेकिन हर वक्त जो आपके साथ होना चाहिए वो है आपकी इच्छा शक्ति और आपकी मुस्कुराहट।

दोस्तों हमेशा की तरह मैं यानी आरती गौड़ आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसके बाद आपका भी जो विल पावर है वो और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि हम जीवन में जो सबसे ज़्यादा हार मानते हैं वो अपने विल पावर की वजह से ही मानते हैं। कई बार रास्ता उतना मुश्किल नहीं होता जितना हमें लगने लगता है, और हमारा जो अंदर का जो विश्वास है ना वो कमज़ोर हो जाता है, और हमें छोटी सी जो आसान सी राह है ना वो भी मुश्किल लगने लगती है। चलिए आपकी राह को आसान करते हैं, सुनाते हैं आपको एक ऐसी जिंदा दिल व्यक्तित्व की कहानी कि जिसके बाद आप भी कहेंगे मैं अब कभी नहीं हारूंगा या हारूंगी। तो ये कहानी है बेथनी हैमिल्टन की, जिनका जीवन वास्तव में एक विल पावर और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल है। उनकी कहानी सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े ना हो जाएं तो बताइएगा, और दिल में एक हौसला भी नया जाग ही जाएगा। तो उनकी कहानी की बात करें तो वो मात्र 13 साल की थी जब वो अमेरिका के हवाई में सर्फिंग की दुनिया का एक उभरता हुआ सितारा थी। जब समंदर में जो लोग सर्फिंग करने जाते हैं, बहुत सारे लोग आप भी गए होंगे, शायद आपको भी पता होगा, तो वो भी उस टाइम में छोटी सी 13 साल की बच्ची वो सर्फिंग की दुनिया में कमाल का अपना जो जज्बा था वो रखती थी, और उन्होंने बहुत सारे जो इनाम थे वो भी जीत रखे थे। एक सुबह वह अपनी दोस्त और उसकी फैमिली के साथ कावी के तट पर सर्फिंग कर रही थी। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनकी जीवन जो बस है वो बदल गया, और वो ऐसा बदला कि अगर उस हालात में हम जैसे लोग होते तो शायद हौसला हार जाते, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया वो अलग ही था। वो भी बताऊंगी, पहले सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, मैं सुना रही थी आपको 13 साल की एक ऐसी छोटी सी बच्ची की कहानी जिसने अपने हौसले की मिसाल हम सब के सामने कुछ इस तरह पेश की कि सबके दांतों तले उंगलियां दब गईं। तो वो जो लड़की थी उसका नाम था बेथनी हैमिल्टन। वो अपनी दोस्त और उसकी फैमिली के साथ कावी के तट पर सर्फिंग कर रही थी। अचानक से 14 फीट लंबी एक टाइगर शार्क ने उस पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, शार्क ने उनका बायां हाथ कोहनी के पास से काट दिया और जो वो पानी था, समुद्र का नीला पानी, पूरा लाल हो चुका था, खून से लाल। और सोचिए कि किसी की बाहें जा चुकी हैं और उसके बाद वो कुछ ऐसा कर दिखाए जो सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ये भी बताऊंगी इस गीत के बाद।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे बेथनी हैमिल्टन की, जिन्हें सर्फिंग करते वक्त एक टाइगर शार्क ने उन पर कर दिया था हमला और उनका जो एक बाजू था वो पूरा उखाड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने हिम्मत का परिचय दिया। खून तो बहुत बह चुका था और जान का खतरा भी था, लेकिन शांत रहकर, ऐसी स्थिति में शांत रहकर उन्होंने खुद को पानी से बाहर निकाला और पहुंची हॉस्पिटल। उनके शरीर का लगभग 60% खून बह चुका था, लेकिन डॉक्टरों की मेहनत और उनकी जिंदगी ने उन्हें जल्दबाजी से बचा लिया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को शांत रखा। अक्सर जब हम परेशान होते हैं किसी चीज़ से, परेशान होकर हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं और ऐसे कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए, लेकिन ऐसे हालात में जहाँ पर एक बाजू कट चुकी है, खून बह रहा है, इंसान तो एक सुई चुभ जाए तो डर जाता है। उनका तो पूरा का पूरा हाथ जा चुका था, उसके बावजूद उन्होंने शांति का परिचय दिया और अपने आप को बचा लिया। लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद तो लोग सोच रहे थे अब उनका सर्फिंग का करियर ख़त्म, मतलब मात्र 13 साल की उम्र में एक सितारा भी बनी और अब डूबने वाली हैं और उनका करियर ख़त्म हो गया, क्योंकि लोग ऐसा ही तो सोचते हैं। पर बेथनी के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके बाद सब सोचने पर मजबूर हो गए।

जी हाँ, तो दोस्तों मैं बता रही थी बेथनी हैमिल्टन की कहानी, जिनके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन उसके बाद लोगों ने ये सोचा कि अब उनका सर्फिंग का करियर तो हो गया बर्बाद, अब बेचारी क्या करेगी। सबको उन पर तरस आने लगा, लेकिन बेथनी के इरादों ने कुछ और ही कर दिखाया। घटना के ठीक 26 दिन के बाद उनका एक हाथ जो जा चुका था, उसके बावजूद वो फिर से सर्फिंग बोर्ड पर थी। सिर्फ एक हाथ से संतुलन बनाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने मुश्किल काम को भी आसान कर दिया। कैसे? हार ना मानकर। अपनी टेक्निक में उन्होंने थोड़े चेंजेस किए, उन्होंने प्रैक्टिस की और बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस करी, और इस लेवल की प्रैक्टिस करी कि बहुत ही जल्द वो बहुत सारे कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो एक प्रोफेशनल सर्फर बन गई। अगर उनकी बात करें तो उनकी इस संघर्ष गाथा पर

यानी उनकी जो ये लाइफ का जो उनका मोमेंट आया था जो बहुत ही ख़राब था, लेकिन उस ख़राब मोमेंट को उन्होंने जिस तरीके से जादुई तरीके से बदल दिया था, उस पर एक किताब भी लिखी गई है। नाम है सोल सर्फर, पढ़िएगा ज़रूर। और उस किताब को 2011 में उसी किताब के ऊपर एक शानदार हॉलीवुड फिल्म भी बनी थी। तो आप देखिए कि जहाँ पर हम हार मान जाते हैं वहाँ से उन्होंने जीत की शुरुआत करी थी।

तो दोस्तों, जो बेथनी हैमिल्टन की कहानी है वो ये बताती है कि अगर आपके अंदर अच्छी इच्छा शक्ति है यानी विल पावर है, तो आप हर नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन करने की हिम्मत रखते हैं। और उनकी ये कहानी यही साबित करती है कि इंसान का असली हौसला उसके शरीर के अंगों से नहीं, बल्कि उसके मजबूत इरादों से तय होता है। ऐसा कई बार होता है कि जिनके हाथ पांव बॉडी के हर पार्ट सब कुछ बहुत अच्छे से सलामत है, लेकिन वो भी चार कदम की दूरी तय करने में डर जाते हैं। और देखिए, बेथनी हैमिल्टन ने तो समंदर तय कर लिया।

तो दोस्तों, हमारे इस शो का, आज के कार्यक्रम का संदेश भी यही है कि आपकी ज़िंदगी में भी अगर कभी ऐसा वक्त आ जाए, कोई मुश्किल दौर आ जाए, हो सकता है कोई परीक्षा हो, करियर का कोई चैलेंज हो, पर्सनल लाइफ की कोई उलझन हो, तो याद रखिए, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर आपकी विल पावर यानी इच्छा शक्ति मजबूत है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। ये बात हमेशा अपने मन में बिठा के रखिए और यकीन मानिए कि आप अगर अपने विल पावर से आगे बढ़ेंगे तो एक दिन मंजिल आपके कदमों में ज़रूर होगी।

तो श्रोताओं, इसी खूबसूरत से संदेश के साथ आपका ये कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, जिसे मैं लेकर आई थी आपके बीच आरती गौड़, आपसे लेती हूँ विदा। लेकिन यकीन मानिए, मेरी भी विल पावर बहुत मजबूत है और मैं पूरे विल पावर के साथ आपसे कह रही हूँ कि आपसे मिलने दोबारा जरूर आऊंगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आपका ये शुभ दिन गुनगुनाता रहे, मुस्कुराता रहे और आप जीवन में तरक्की करें। इसी के साथ चलिए, मैं तो चली और आप जुड़े रहिए इंद्रप्रस्थ के साथ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

0: सिंह की जोड़ी मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंची और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस कार्यक्रम में सेवा यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांव से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की और सेवा कार्यों में हिस्सा लिया। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में चल रही इन मोटरसाइकिल यात्राओं का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को नजदीकी से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर तक सेवा की भावना पहुंचाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।
2: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे श्री अन्न यानी मिलेट्स के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहारिकता में लाया गया है।
3: भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था में बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सावा और राजगिरा सदियों से भोजन का हिस्सा रहे हैं। इन्हें श्री अन्न के नाम से आज व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाए जाने के बाद श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। श्री अन्न में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग सहित कई बीमारियों में लाभकारी है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना का कहना है कि श्री अन्न ग्लूटेन फ्री है और गेहूं और चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक है।
4: मिलेट, जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, रागी की। रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं।
3: श्री अन्न कम पानी में उगने के कारण जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती को भी बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में बाजरा और अन्य मोटे अनाजों की खेती पहले से ही बड़े पैमाने पर होती रही है। अब इनके उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। किसानों को उन्नत किस्मों, बेहतर कृषि तकनीक और श्री अन्न आधारित उत्पादों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
5: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगा।

0: गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब यह पहल भारत में इन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट।
4: प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से।
5: 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। इस संस्करण के साझेदार देशों में ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार और उद्योग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी आयोजन में भाग लेंगी। प्रदर्शनी में कृषि, ऑटोमोबाइल, रक्षा, IT, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत है। इसे एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन में ज्ञान सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अंकित कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में इस सेवा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 वर्ष से बंद सार्वजनिक बस सेवा अब फिर से शुरू की जा रही है।
6: सेवा संकल्प सप्ताह के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार 21 साल बाद वापस लोक परिवहन की बस सर्विसेज की सेवा शुरू करने जा रही है। ये अपने आप में यूनिक मॉडल है। आधुनिकतम नई तकनीकी ई बस सेवा से लगा करके सभी प्रकार की सर्व सुविधाएं, सभी प्रकार की बसें चरणबद्ध रूप से लगभग हर नगर, हर जिला तक हम अपने नीचे तक नेटवर्क ले जाने वाले हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना गहरा दबाव अब कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओडिशा के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है।
7: कमजोर पड़े डिप्रेशन के असर से दक्षिणी और पश्चिमी ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। राज्य सरकार के अनुसार दर्जनों ब्लॉक और गांवों में बारिश का असर देखा गया है और 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बालेश्वर जिले के मथानी में जलका नदी में बाढ़ की गंभीर स्थिति है और बस्ता के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने ओडिशा में बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रतिक्रिया टीमों को अलर्ट पर रखा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब जापान में जारी एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
8: जापान एशियाई खेलों के सातवें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमा रहे हैं। कमलजीत और सुरचित सिंह की जोड़ी ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफाइंग राउंड में पहला स्थान हासिल किया। वहीं कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: और फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने कल समरकंद में अजरबैजान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
9: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी मंत्रालयों से 5 वर्ष की आगामी रूपरेखा मांगने के निर्देश को अपने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, फाइलों से निकले मंत्री, जमीन पर देखें योजनाओं का लाभ। वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री का बयान, सत्ता कितनी भी बड़ी हो हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। लोक सत्ते में है। पत्र ने वैश्विक साइकिलिंग कार्यक्रम के पहली बार भारत में आयोजित होने को भी सुर्खी बनाया है। पत्र के शब्द हैं, भारत को मिली रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2032 की मेजबानी, UCI पुणे में करेगा आयोजन। गन्ने से जल्द तैयार होगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इससे जुड़े प्रोडक्ट को औपचारिक मंजूरी मिलने की खबर प्रकाशित की है। नवभारत टाइम्स ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमरीका की सेनाओं के बीच जारी सैन्य अभ्यास पर सुर्खी दी है, युद्ध अभ्यास में दिखी भारत US की जुगलबंदी। अमर उजाला के कारोबार पन्ने की खबर है, दूसरी छमाही में श्रम बल में 5.4% बढ़ोतरी का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच कल अमेरिका में हुई बातचीत पर पंजाब केसरी लिखता है, ट्रंप का जिनफिंग से मिलकर काम करने का वादा।
1: धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा UP इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में। और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to interact with participants of Seva Yatra for second day today. Make in India initiative aimed at transforming the country into manufacturing nation completes 12 years today. FSSAI proposes nationwide ban on manufacture and sale of analog paneer. Fourth UP International Trade Show to begin today at India Expo Center and Mart in Greater Noida. Indian duo of Kamaljeet and Suruchi Singh storms into final of mixed team 10.

0: एक्सपो सेंटर मार्ट में शुरू हो रहा है। जापान में जारी एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की भारतीय जोड़ी 10 मीटर के एयर पिस्टल मिक्स टीम मुकाबले के फाइनल में पहुंच गई है और समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें राउंड में अजरबैजान के साथ मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेवा संकल्प अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में वाराणसी से गुजरात में वडनगर तक सेवा यात्रा में शामिल अफराद के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस गुफ्तगू से सेवा यात्रियों को अपने सफर के तजुर्बात शेयर करने का मौका मिलेगा, जिसका मकसद सफर में आने वाले मकामात पर नौजवानों की शमूलियत और कम्युनिटी खदमात को मुंसलिक करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और ये आवामी खिदमत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 25 साल को उजागर करने के वसीतर सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। इसमें शामिल अफराद कस्बों, ज़िलों, तालुकों और गांवों से होकर सफ़र करते रहे हैं। इसमें कम्युनिटी खिदमात और आवामी राबतों की सरगर्मियों को सबसे निचली सतह तक ले जाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। यह सफ़र मोटरसाइकिल मुहिम तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इस तरह तरतीब दिया गया है कि यात्रा के रास्ते पर मुख्तलिफ मकामात पर खिदमत, राबतों, नौजवानों की शमूलियत, समाजी बहबूद, सकाफती राबतों और लोगों को यकजा किया जा सके। वडनगर और वाराणसी के दरमियान दोनों तरफ से होने वाली मोटरसाइकिल यात्राओं में नौजवान अफराद मुख्तलिफ रियासतों, ज़िलों और गाँवों से होकर गुजर रहे हैं। इस सफर के दौरान सेवा यात्रा में शामिल अफराद मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें सफाई सुथराई की मुहिम और स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम्स और दीगर मकामात पर सरगर्मियां भी शामिल हैं। ये सेवा यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। यशस्वी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कल वडनगर से वाराणसी तक सफ़र करने वाले सेवा यात्रा में शामिल अफराद के साथ गुफ्तगू की थी और सबसे निचली सतह पर मुल्क की तामीर की सम्त एक अहम कदम के तौर पर उनके सफ़र की सताइश की थी। इस गुफ्तगू में जनाब मोदी ने यात्रा के शुरका से उनके तजुर्बात, लोगों के साथ उनकी मुलाकात और नया सीखने के ताल्लुक से उनके तजुर्बात से वाकफियत हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस तरह की यात्राएं मुल्क की गुनागुनियत को नौजवान अफराद के समझने में अहम रोल अदा करती हैं। उनकी इस गुफ्तगू में इस बात पर जोर दिया गया कि यात्रा महज एक मकाम से दूसरे मकाम तक का सफ़र करने का नाम नहीं, बल्कि ये लोगों से मिलने, उन्हें समझने और सेवा के जज्बे को अमली शक्ल देने का नाम है। आज मेक इन इंडिया पहल को 12 साल मुकम्मल हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन और अख्तरा का एक आलमी मरकज़ बनने के मकसद से 2014 में आज के ही दिन इस पहल का आगाज़ किया गया था। मुख्तलिफ सनतों में पैदावार, सरमायाकारी और सलाहियत में वसत के साथ इस पहल से भारत का मैन्युफैक्चरिंग का मंजरनामा पूरी तरह बदल गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गुज़श्ता बरसों में मेक इन इंडिया पहल से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सफ़र में शामिल होने की खातिर कारोबारी इदारों और सरमायाकारों के लिए नए मौके पैदा हुए हैं। मस्कूरा पहल के तहत अब 27 शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है, जिसमें 15 मैन्युफैक्चरिंग में और 12 खिदमात के शोबे में हैं। इनमें सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने, इख्तरा को फ़रोग देने और आलमी दर्जे का बुनियादी ढांचा तैयार करने पर ख़ास जोर दिया गया है। मस्कूरा पहल के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की तैयारी में तकरीबन 7 गुना इजाफा हुआ है। इसी अरसे के दौरान मोबाइल फ़ोन तैयार करने के शोबे में तकरीबन 33 गुना का इजाफा हुआ। इसी मुद्दत में भारतीय रेलवेज ने तकरीबन 55,000 रेल डिब्बे तैयार किए, जबकि इससे पहले के 10 वर्षों में रेल डिब्बों की सालाना औसत प्रोडक्शन 3,300 से भी कम थी। इसके अलावा मेक इन इंडिया पहल के तहत अंदरूने मुल्क दिफाई सामान की तैयारी माली साल 2025-26 में बढ़कर 1,78,000 करोड़ की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई, जबकि 2014-15 में ये 46,429 करोड़ थी। इस तरह दिफाई सामान की तैयारी में 4 गुना इजाफा हुआ। मस्कूरा पहल में अब ज्यादा सामान तैयार करने से आगे बढ़कर हुनरमंदी, तकनीक और इन्हें अंदरूने मुल्क तैयार करने की सलाहियत बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: भारत की फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने पनीर के तौर पर एनालॉग प्रोडक्ट तैयार करने और इसकी फरोख्त पर पूरे मुल्क में

0: पाबंदी आयद करने की तजवीज पेश की है। एक नोटिफिकेशन में अथॉरिटी ने कहा है कि डेयरी के जिम्न में एनालॉग जुमरे के तहत लाइसेंस याफ्ता या रजिस्टर्ड अशिया के लिए उनके नाम, लेबलिंग या मार्केटिंग में पनीर की इस्तलाह का इस्तेमाल तर्क करना होगा। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने एनालॉग पनीर के लिए फूड सेफ्टी और मेयारात से मुतालिक 2011 के जाब्तों में तरमीम तजवीज़ की है। एनालॉग प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और इसकी फरोख्त पर बंदिश आयद करने के लिए ऐसा किया गया है ताकि सारिफीन को प्रोडक्ट की नौइयत और उसे तैयार करने के ताल्लुक से गुमराह न किया जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल कर रहे हैं जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी हैं और इस पुख्ता अहद का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नज़रिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज़ में हम इस बात का तज़किरा करेंगे कि किस तरह श्री अन्न या मोटे अनाज के जरिए इस नज़रिए को बरवकार लाया जा रहा है।
1: बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, गुटकी, सानवा, राजगिरा जैसे मोटे अनाज सदियों से भारत की रिवायती गिजा का हिस्सा रहे हैं। भारत सरकार अब इन अजनास को श्री अन्न के तौर पर फरोग दे रही है। 2023 में मोटे अनाज के बैनुल अक्वामी साल ने भी आलमी सतह पर इनकी मकबूलियत में इजाफे में मदद की है। मोटा अनाज फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और तغذیہ से मुतालिक दीगर फ़ायदे फराहम करता है। ये متوازن غذا کا ایک بہترین حصہ ہیں اور ذیابیطس اور موٹاپے جیسی طرز زندگی سے منسلک بیماریوں کو کنٹرول میں رکھنے خاص طور سے اہمیت کے حامل ہیں۔ جے پور کے سوائی مان سنگھ میڈیکل کالج کے سینئر فیکلٹی ڈاکٹر پنیت سکسینہ نے کہا کہ موٹا اناج قدرتی طور پر گلوٹن فری اور تغذیہ سے بھرپور ہوتا ہے۔
2: मिलेट्स जिसको कि हम मोटा अनाज या श्रीअन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, रागी की। रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं यह ग्लूटेन फ्री होते हैं।
1: मोटे अनाज को कम पानी की ज़रूरत होती है जिससे ये पानी की बचत और मौसम के उतार चढ़ाव के बावजूद खेती बाड़ी के लिए मौजू है। राजस्थान खास तौर से बाजरे की पैदावार के सिलसिले में रिवायती तौर पर एक अहम रियासत है। अब तवज्जो पैदावार से प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और बाजार तक बेहतर रसाई पर मबनी है। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। चौथा यूपी बैन अवी ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में आज से शुरू हो रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और उत्तर प्रदेश के वजीर अला योगी आदित्यनाथ इस 5 रोजा तकरीब का अफ्ताह करेंगे। ये नुमाइश 29 सितंबर तक जारी रहेगी जिसमें रियासत के कारोबारी, मैनुफैक्चरर्स और बरामदकार बरह रास्त आलमी बाजार से रबता कायम कर सकेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: इस ट्रेड शो में 2400 से ज़्यादा नुमाइशकारों, 1.5 लाख B2B खरीदारों की शिरकत और 4.5 लाख से ज़्यादा इसे देखने आने वालों का इम्कान है। 85 मुल्कों से 550 से ज़्यादा बैनुल अक्वामी खरीदारों के भी इसमें शिरकत करने की उम्मीद है। ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम साझेदार मुल्कों के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। तिजारत व सनत में खवातीन के बढ़ते रोल की अक्कासी करते हुए तकरीबन 300 खवातीन नुमाइंदगान इसमें सरगर्मी से शामिल रहेंगी। इस नुमाइश में ज़राअत, ऑटोमोबाइल, दिफा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेहत, सियाहत और काबिल तजदीद तवानाई समेत मुख्तलिफ सनतों और शोबों की अक्कासी की जाएगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शोएबा।
0: आज पूरे मुंबई में अनंत चतुर्दशी मनाई जा रही है जो गणेश चतुर्थी के मौके पर शुरू हुए 10 रोजा गणेश उत्सव के अख्ताम पर मनाई जाती है। मुंबई वाले गणपति बाप्पा मोरिया कहते हुए भगवान गणेश को अलविदा कहेंगे और उन्हें सुपुर्द आब किया जाएगा। ये तकरीब मुंबई में कई मकामात पर होगी। महाराष्ट्र के सियाहती महकमे ने इस सिलसिले में वसी तर इंतजाम किए हैं। शहर की पुलिस ने भी सिक्योरिटी बंदोबस्त किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये मानना था कि माशरे की सबसे पिछली कतार में खड़े होने वाले शख्स की बहबूद ही मुल्क की तामीर की बुनियाद है। वज़ीर आज़म ने

0: कहा कि अंत्योदय का उनका फलसफा अवामी बहबूद और मुल्क की तरक्की के लिए एक बड़ी तरगीब के तौर पर काम करता रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की यौम पैदाइश के मौके पर आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम ट्रांसपोर्ट सर्विस का आगाज किया जा रहा है। रियासत के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में एक प्रोग्राम में इस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। शिमाली साहली आंध्र प्रदेश और इससे मुलहक़ा जनूबी ओडिशा के ऊपर बनने वाला हवा के गहरे दबाव का हल्का कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन इसके ज़ेर असर ओडिशा के कई हिस्सों में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। जनूबी और मगरबी ज़िले सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। 6 ज़िलों में स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज़ आज भी बंद हैं। हुक्काम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। वहीं आज मगरबी बंगाल में मुख्तलिफ अज़ला में शदीद बारिश का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज छत्तीसगढ़, मशरक़ी मध्य प्रदेश, मशरक़ी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, ज़ेली हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एशियन गेम्स में जापान के नागोया में कमलजीत और सुरुचि सिंह की भारतीय जोड़ी मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले के फाइनल में पहुँच गई है। इफ्तिताही सीरीज में 196 स्कोर करने के बाद भारतीय जोड़ी ने दूसरी सीरीज में 195 स्कोर किए और वो 391 पर पहुंच गई, जिससे फाइनल में पहुंचने की उसकी उम्मीदें मजबूत हो गईं। कल समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें राउंड में दिफाई चैंपियन भारत ने अजरबैजान के साथ मुकाबला 2-2 से बराबरी पर ख़त्म किया। आर प्रज्ञानंद, अर्जुन इरिगैसी, डी गोकेश और विदित संतोष गुजराती ने अजरबैजान के अपने हरीफ खिलाड़ियों के साथ मुकाबले ड्रॉ किए। भारत 13 मैच पॉइंट्स के साथ ओपन सेक्शन में मुश्तरक तौर पर दूसरी पोजीशन पर बरकरार है। उज़्बेकिस्तान और जर्मनी 14 मैच पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर हैं। खवातीन के जुमरे में दिफाई चैंपियन भारत ने कजाकिस्तान के साथ 2-2 से ड्रॉ किया और मुश्तरक तौर पर दूसरे मकाम पर रहा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शायब होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि खिदमत ही जिंदगी का असल मकसद होना चाहिए। उन्होंने साल 2047 तक विकसित भारत की तामीर के लिए नौजवानों के रोल को भी उजागर किया। रोजनामा प्रताप ने सारिफिन के उमूर, खुराक और अवामी निज़ाम तकसीम की वजारत के इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि सरकार ने खुर्दनी तेल की बैन अल-अक़वामी कीमतों में इजाफे के पेश नज़र कस्टम ड्यूटी में कमी कर दी है। इसी अखबार की एक और खबर है, मरकजी वजीर तालीम प्रहलाद जोशी आज बेंगलुरु में वाक़ IISC में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज का इफ्तिताह करेंगे। इसका मकसद आसपास के कम्यूनिटी मसाइल की शनाख्त और इसके अमली हल के लिए तरगीब देना है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन भी सेवा यात्रा में शामिल अफराद के साथ गुफ्तगू करेंगे। मेक इन इंडिया पहल को आज 12 साल मुकम्मल हो रहे हैं, जो मुल्क को मैन्युफैक्चरिंग का मरकज बनाने के मकसद से शुरू की गई थी। भारत की फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने एनालॉग पनीर तैयार करने और उसकी फरोख्त पर पूरे मुल्क में पाबंदी आयद करने की तजवीज पेश की है। चौथा उत्तर प्रदेश बैन अल-अक़वामी ट्रेड शो आज ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट में शुरू हो रहा है। और जापान में जारी एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की भारतीय जोड़ी 10 मीटर के एयर पिस्टल मिक्स टीम मुकाबले के फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 8:45 और पूरे 15 सेकंड। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम स्वर गंगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप आनंद लेंगे चंद्रनाथ भट्टाचार्य द्वारा सितार वादन का राग है मियाँ की तोड़ी।
1: नमस्कार। अभी मैं राग मियाँ की टोड़ी बजाऊंगा। ये राग मियाँ तान सेन से बना हुआ है। ये रागों में आरोही अवरोही है, लाइक

ये मॉर्निंग राग है, ये राग मियाँ की टोड़ी ठाट तोड़ी का मेन राग है, और बहुत ही मेलोडियस राग है, बहुत सुंदर राग है। कहा जाता है सम्राट अकबर का ये सबसे पसंद किया राग है, जो तानसेन हमेशा उनको या तानसेन हमेशा उनको सुनाते थे। तो अभी इसमें मैं छोटा आलाप जोड़ देन मसीद खानी गत एंड रजा खानी गत बजाऊंगा, जो दो गत तीन ताल में निबद्ध है। उसका बाद एंड में झाला बजाऊंगा। मेरा साथ तबला में संगत कर रहे हैं पंडित अनूप घोष जी। तो आप लोग सुनिए राग मियाँ की टोड़ी। धन्यवाद।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर गंगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना सितार वादन। सितार वादन कर रहे थे चंद्रनाथ भट्टाचार्य, राग था मियाँ की तोड़ी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है स्वच्छता के महत्व पर महात्मा गांधी के विचार। आलेख एवं स्वर डॉक्टर कृष्ण मणि पाठक।
1: हम सबने कहीं न कहीं महात्मा गांधी के चश्मे का वह चित्र अवश्य देखा होगा जिस पर लिखा होता स्वच्छ भारत। ऐसा चित्र या तो हमने अपनी स्कूली किताबों में देखा होगा या गांव और शहर की दीवारों पर या अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में या देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सड़क किनारे लगे बड़े बड़े विज्ञापन पट्टिकाओं पर। चश्मे का वह चित्र देखते ही महात्मा गांधी का पूरा व्यक्तित्व हमारे जेहन में उतर आता है। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार की अशुद्धता के प्रति एक रोष था और जातिगत छुआछूत ऊंच नीच और शारीरिक और पर्यावरणीय गंदगी के लिए बिल्कुल भी स्थान नहीं था। महात्मा गांधी में रुचि रखने वालों के लिए

0: यह जानना जरूरी है कि महात्मा गांधी ने समाज सुधार, नैतिकता, राजनीति और व्यक्ति विकास जैसे विषयों पर दिए गए अपने लगभग सभी वक्तव्यों और व्याख्यानों में स्वच्छता और शुद्धता पर बहुत स्पष्टता से अपनी बात रखी है, जिसे आप गांधी साहित्य में पढ़ भी सकते हैं और विद्वानों से सुन भी सकते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार मन और शरीर की शुद्धता के साथ साथ पर्यावरण और वातावरण की शुद्धता भी आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों में एक परस्पर संबंध है जो हमारी सोच और हमारे व्यवहार में प्रकट होता है। भारतीय नीति दर्शन को अपने जीवन में हूबहू उतारने वाले महात्मा गांधी का मानना था कि स्वच्छ पर्यावरण से स्वच्छ वातावरण से स्वच्छ शरीर से स्वच्छ मन से स्वच्छ विचार और स्वच्छ विचार से स्वच्छ व्यवहार संभव है। महात्मा गांधी के अनुसार स्वच्छता का मतलब सिर्फ नहाना और शरीर धोना नहीं है, बल्कि व्यक्ति और व्यक्तित्व की स्वच्छता बनाए रखना भी अच्छा और उपयोगी है। दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित इंडियन ओपिनियन के अप्रैल 1904 के एक अंक में महात्मा गांधी साफ साफ लिखते हैं कि हमें अपने दिल दिमाग में यह अंग्रेजी कहावत बैठा लेनी चाहिए कि स्वच्छता का स्थान ईश्वर भक्ति के तुरंत बाद आता है। यदि जीवन में और वातावरण में स्वच्छता बनाए रखना ईश्वर भक्ति के समान भले ही न हो, लेकिन ईश्वर भक्ति के समान जरूर है। महात्मा गांधी के अनुसार स्वच्छता भी एक प्रकार की भक्ति ही है। फिर वह आगे पूछने के अंदाज में लिखते हैं कि क्या स्वच्छता या साफ सफाई का अपना ही इनाम नहीं है। अपने अफ्रीका प्रवास के दौरान इंडियन ओपिनियन में अपने एक लेख में महात्मा गांधी स्पष्ट करते हैं कि भारतीय आमतौर पर स्वच्छता का जीवन जीते हैं, क्योंकि भारतीयों का धर्म, संस्कार और सभ्यता स्वच्छ जीवन दर्शन पर आधारित है। वह लिखते हैं कि पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि चाहे हिंदू हों या मुस्लिम, उनका धर्म, जो उनके लिए एक जीता जागता धर्म है, व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ घर की साफ सफाई के पक्के सिद्धांत और नियम भी सिखाता है। यहाँ तक कि व्यक्तिगत स्वच्छता और घरेलू साफ सफाई सबसे निचले तबके में भी स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। महात्मा गांधी कहते हैं कि कोई भी जिसे भारतीय जीवन शैली की थोड़ी भी जानकारी होगी, वह इस बात की आसानी से पुष्टि कर सकता है। यहाँ यह बताना महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता को अपने जीवन में यूं ही नहीं अपनाया, बल्कि स्वच्छता के प्रति उनकी जागरूकता और समर्पण के पीछे था संयमित जीवन दर्शन, जो योग दर्शन के अष्टांग योग से प्रभावित है। अष्टांग योग में वैसे तो संयमित और आध्यात्मिक जीवन के 8 मार्ग बताए गए हैं, लेकिन महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से यह साफ पता चलता है कि उन्होंने उन 8 में से यम, नियम और प्रत्याहार को सर्वाधिक महत्व दिया, क्योंकि इन्हीं तीनों से शरीर, मन और समाज को स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित रखा जा सकता है। यम वह मार्ग है जो समाज को संयमित और विकार रहित बनाता है, लेकिन क्योंकि समाज व्यक्तियों से बनता है, इसलिए व्यक्तियों का अनुशासित और संयमित होना आवश्यक है। नियम मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति अपने आप को अनुशासित कर सकता है। योग दर्शन के नियम मार्ग में शौच यानी शुद्धता और साफ सफाई का प्रावधान है। शरीर और मन को स्वच्छ और शुद्ध रखने वाला व्यक्ति ही आसपास के वातावरण और पर्यावरण को स्वच्छ रखकर शुद्ध और सद्गुणी समाज की स्थापना कर सकता है। यम और नियम का पालन करने वाला व्यक्ति ही अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने में सक्षम होता है, जिसे योग दर्शन में प्रत्याहार मार्ग कहा जाता है। महात्मा गांधी हर एक छोटी से छोटी बात जो यम, नियम और नैतिकता से संबंधित हो सकती है को बहुत गंभीरता से लेते थे और लोगों को उसके बारे में अवश्य जागरूक करते थे। उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी विचार सृष्टि में ऐसा मिलता है कि रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को महात्मा गांधी 10 सुझाव देते हैं, जिसमें एक सुझाव इस बारे में है कि यात्रियों को प्लेटफार्मों पर और यात्रियों के आसपास थूकने से क्यों बचना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर आप थूकना चाहते हैं और कहीं थूकते हैं जहां यात्री पैर रखते हैं, तो वह जगह उस यात्री के लिए बहुत गंदी हो जाएगी और इससे किसी को कोई भी बीमारी होने का खतरा पैदा हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरे यात्री साफ सफाई के नियमों का ध्यान रखते हैं, उन्हें आपकी थूकने की गंदी आदत बहुत ज्यादा कष्टदायक लगेगी। नवम्बर 1917 में गुजराती राजनीतिक सम्मेलन में बोलते हुए महात्मा गांधी ने देशवासियों के अपने ही लोगों के प्रति छुआछूत और विकृत सोच सोच पर भी कटाक्ष करते हुए कहा था कि उन लोगों को जो हमारी सबसे अच्छी सेवा करते हैं और जिन्हें हम अछूत मानते हैं। नतीजा यह हुआ कि हम उन्हें अपनी कोठरियों का सिर्फ एक हिस्सा ही साफ करने देते हैं। धर्म के नाम पर हम खुद गंदगी के डर से जगहें साफ नहीं करते, जिसका नतीजा यह है कि हम ऐसी हवा में बड़े होते हैं जो बीमारी के कीटाणुओं से भरी होती है। महात्मा गांधी कहते हैं कि जब तक हम अपने गांवों में रहे हम सब सुरक्षित थे, लेकिन शहरों में गंदगी और अपनी गंदी आदतों की वजह से हम हमेशा अपने जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि एक प्रकार से जानबूझकर आत्महत्या करने जैसा है। इसी संदर्भ में साफ सफाई की आवश्यकता पर बल देते हुए गुजरात में महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता के लिए या साफ सफाई बनाए रखने के लिए पैसे की नहीं बल्कि सिर्फ समझदारी से देखभाल की जरूरत होती है। महात्मा गांधी का पूरा विश्वास था कि स्वच्छता व्यक्ति के जीवन की पहली अवस्था है। यदि हम सभी समझदारी से अपने आसपास, पड़ोस में, वातावरण में, पर्यावरण में पूरी सफाई बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय अपनाते हैं तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ और दीर्घायु होंगे, क्योंकि व्यक्ति के विकास से समाज का विकास और समाज के विकास से ही देश का विकास संभव हो सकेगा। यह सच है कि प्राचीन भारत में स्वच्छता की समस्या नहीं थी, स्वच्छता और शुद्धता दोनों ही हमारे जीवन के अहम हिस्से थे। संत महात्मा से लेकर सामान्य जनमानस तक सभी लोग स्वच्छता को अहमियत देते थे। इसी बात को सिद्ध करने के लिए दार्शनिक शंकराचार्य का उदाहरण देते हुए 1919 के काठियावाड़ पाटीदार सम्मेलन में महात्मा गांधी कहते हैं कि शंकराचार्य, जो एक महान दार्शनिक थे, ने एकदम दक्षिण से लेकर एकदम उत्तर तक पूरे देश का दौरा किया। इससे पता चलता है कि भारत पुराने समय से ही एक देश रहा है जहां सड़कें उतनी ही अच्छी थीं जितनी कोई चाह सकता है, गांवों की व्यवस्था और रखरखाव अच्छा था। उन दिनों सड़कों और गलियों की सफाई हमारी विरासत का हिस्सा था। महात्मा गांधी भी मानते थे कि यदि हमारे शरीर, मन और पर्यावरण में साफ सफाई आ जाए तो हमारे चारों तरफ खूबसूरती अपने आप आ जाएगी। महात्मा गांधी हरेक व्यक्ति में चार प्रकार की स्वच्छता और शुद्धता देखना चाहते हैं। पहली घर की स्वच्छता, दूसरी शरीर की स्वच्छता, तीसरी मन की स्वच्छता और चौथी आत्मा की स्वच्छता। घर, शरीर और पर्यावरण की स्वच्छता बाह्य स्वच्छता है, जो कि सही तरीके से साफ सफाई करके और कूड़े करकट के सही निपटारे से संभव है, जबकि मन और आत्मा की स्वच्छता आंतरिक है, जो यम, नियम, प्राणायाम और प्रत्याहार से ही संभव है। महात्मा गांधी के अनुसार प्राणायाम न केवल आंतरिक स्वच्छता लाने में सहायक है अपितु इसका नित्य अभ्यास शरीर को सशक्त भी बनाता है। प्रत्याहार से हम विकारों की ओर भटकती अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख पाते हैं, जिससे पर्यावरण और जीवों के साथ हम आसानी से जुड़ पाते हैं। 1921 में मुल्तान के अपने एक व्याख्यान में महात्मा गांधी ने यहाँ तक कह दिया था कि शरीर, मन और आत्मा की सफाई और पवित्रता उनके लिए पहला कर्तव्य था, जिसके बिना स्वराज पाना मुमकिन नहीं। महात्मा गांधी के अनुसार हम सभी को अपने अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिए, साफ सफाई की आदतें डालनी चाहिए ताकि कोई हम पर उंगली न उठा सके।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था स्वच्छता के महत्व पर महात्मा गांधी के विचार। आलेख एवं स्वर डॉक्टर कृष्ण मणि पाठक।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। और लीजिए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
2: आपकी तरफ उम्मीदों की दृष्टि से देश देख रहा है, युवा पीढ़ी देख रही है, आने वाली पीढ़ियों को भी ये आपकी बातें बहुत काम आने वाली है। आपको मेरा एक और आग्रह भी है कि आप यात्रा पूरी होने के बाद, क्योंकि आप 10-10 रूट के लोग हैं, अभी तो आप जब चल रहे हैं तो 20 लोग हैं, लेकिन जब पहुंचेंगे तब आप 500 लोग हो जाएंगे। जब वडनगर पहुंचेंगे तब 500 लोग होंगे, 7 अक्टूबर को आप पहुंचेंगे। जब काशी पहुंचेंगे वो भी 500 लोग होंगे। इन 500 लोगों ने 2-3 घंटे एक साथ बैठ करके अपने अनुभवों की चर्चा करनी चाहिए।
1: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र

0: बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
1: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर

0: देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा कि डेयरी संदर्भ के में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों का नाम, लेवल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और इस में इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान ही राष्ट्र निर्माण का आधार मानते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणादायक है। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदक की संख्या 17 हो गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में बहुत तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनू कटारिया। Prime Minister Narendra Modi said that Viksit Bharat can be realized only with contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. During the interaction, these Yatris shared their personal experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also urged the Yatris to use their Yatra to make people aware of various government schemes.
3: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है तो कितना संतोष मिलता है, ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना, इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुँचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
2: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has highlighted India's expanding engagement with the global economy and its efforts to strengthen participation in global value chains and supply chains. Addressing the leadership dialogue at the 13th PAFI Annual Forum 2026 in New Delhi, Mr. Goyal said India is negotiating trade and economic partnerships from the position of an economy that is expected to grow into a $30 trillion economy.
4: Now when we negotiate, we are looking for fair, equitable and balanced agreements. We start from the Viksit Bharat 2047 story. Today when we negotiate with the world, we put them to notice that we are a $4 trillion economy, but on a PPP basis, we already are a $20 trillion economy, the third largest in the world.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, घड़ी में वक्त हुआ है 10:10 और 19 सेकेंड, और अब वक्त है कार्यक्रम फिल्म संगीत में आपकी पसंद का। दोस्तों, देर ना करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, और आज इस कार्यक्रम को लेकर मैं हाजिर हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ,

श्रोताओं, गाना सुन के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दोस्ती पर। साथियों, दोस्ती वो रिश्ता है जिसे किसी नाम या रिश्ते की मोहर की जरूरत नहीं होती।

0: सच्चा दोस्त वो होता है जो हमारी खामोशी भी पढ़ ले और हमारी मुस्कान के पीछे का जो छुपा दर्द है वो भी समझ ले। साथियों, जिंदगी की राह में कई लोग मिलते हैं, कुछ याद बनकर रह जाते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा बन जाते हैं। और देखिए, जैसे ही मैंने दोस्त की बात की है और यहाँ मेरी दोस्त हाजिर है, क्यों
1: जी
0: आरती?
1: जी हाँ भाई, शिल्पा ने कहा है दोस्ती की बात तो दोस्ती तो निभानी पड़ेगी ना, तो मैं
0: बिल्कुल,
1: निभाने के लिए आ गई हूँ। शिल्पा जी, कैसी हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
1: और
0: आरती तुम
1: श्रोताओं,
0: बताओ।
1: आप कैसे हैं? क्योंकि आपसे भी तो हमारी बड़ी खास दोस्ती है।
0: बिल्कुल, ये श्रोता जो है ये तो हमारे बहुत ही पुराने और गहरे दोस्त हैं आरती।
1: जी हाँ, क्योंकि ये जो रेडियो है जिसके माध्यम से हम आप तक और आप हम तक पहुंचते हैं, हमने एक दूसरे को भले ही ना देखा हो लेकिन आवाज़ों से और आपके संदेशों से एक दूसरे से ऐसी खास दोस्ती हो गई है जो शायद कभी टूट ही नहीं पाएगी।
0: बिल्कुल, और एक ऐसा अपनापन जो कि अपने खास जो होते हैं ना उनसे होता है। क्यों आरती?
1: तो भाई, दोस्ती की बातें बहुत सारी हो गई, अब मैं जानना चाहती हूँ। मैंने तो बता दिया कि मैं शिल्पा से दोस्ती निभाने आ गई हूँ,
0: जी
1: आप जरा मुझे बताइए कि बचपन से ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके साथ आप दोस्ती निभाते चले जा रहे हैं? समझ लीजिए खानदानी दोस्ती बनी पड़ी है। बस
0: बिल्कुल,
1: ऐसी दोस्ती किसके साथ है, क्योंकि दोस्त तो वक्त वक्त पे हमारे जीवन में बहुत सारे आते
0: बहुत
1: हैं,
0: सारे आते हैं।
1: लेकिन बचपन का कोई खास दोस्त जो आज भी आपके जीवन में उतना ही शामिल है।
0: और देखो आरती, ये संदेश लेने से पहले ना मैं एक छोटी सी लाइन बोलना चाहती हूँ, बोल सकती हूँ
1: जी हाँ, बिल्कुल बोलिए।
0: क्या? देखिए, दोस्ती वो एहसास है जिसमें दूरी कितनी भी हो लेकिन दिल हमेशा पास रहता है। क्यों, मानती है ना?
1: बहुत ही खूबसूरत बात कही है। तो आपके दिल के पास कौन सा दोस्त है, हमें जल्दी से लिख भेजिए ipradiodelhi@gmail.com पर। लेकिन उसके पहले चलिए सुनते हैं एक संदेश।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: देखिए आरती, हमने बात की दोस्ती की और हमारे पास जो संदेश आया है वो भी कितना अच्छा आया है। ये लिखते हैं, आप दोनों बहनों को हार्दिक नमस्कार। बहुत आनंद आता है जब आप कार्यक्रम पेश करते हैं। बड़ी शिद्दत से लाइव आपको सुन रहे हैं। दोस्ती का रिश्ता बहुत अनमोल है, दोस्ती निस्वार्थ होनी चाहिए, कृष्ण और सुदामा जैसी। क्यों आरती, हमारी
1: बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि दोस्ती तो निस्वार्थ होनी चाहिए लेकिन थोड़ा सा मस्ती मजाक भी होना चाहिए। और जहाँ तक आपने बात कही है कृष्ण और सुदामा की, तो भाई अभी तो फिलहाल हम दोनों सुदामा है, कृष्ण ढूंढ रहे हैं।
0: बिल्कुल। और देखिये, ये संदेश जो आया है हमारे पास आया है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार जी का।
1: जी हाँ, बहुत सारे संदेश हमारे पास आ रखे हैं और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले संदेश की तरफ, जो हमारे पास आया है भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगेल, मूरज जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल, नंदनी जंगेल और धमदा ग्राम सुकरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आरवी और अंजलि, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगले जो श्रोता जुड़े हैं वो
0: जी देखिए, वो है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास आशा देवी। ये लिखते हैं, एक अच्छा दोस्त हर समय साथ होता है। बिल्कुल सही बात है, जैसे आरती और हम साथ ही हैं।
1: जी हाँ, अच्छा दोस्त साथ होता है और होना भी चाहिए, वरना दोस्ती किस काम की।
0: बिल्कुल।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: तो देखो आरती, अब कितना अच्छा संदेश हमारे पास आया है। ये लिखते हैं शिल्पा जी, मेरा बचपन का एक दोस्त है जो आज तक मेरे साथ रहता है, दुख में और सुख में मेरे साथ है। देखिए, यही सच्ची दोस्ती है। और ये जो संदेश आया है हमारे पास, स्टेशन रोड जमशेदपुर से, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया और तमन्ना भाटिया जी का है।
3: जी हाँ, तो इन्होंने तो बता दिया, लेकिन अभी बहुत सारे श्रोता हैं, उनके लिए भी सेम ही सवाल है। तो आप भी अपने दोस्त को मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं उसके बारे में कि कौन सा दोस्त है जो बचपन से लेकर आज तक आपके सुख दुख हर तरीके के मौके में आपके काम भी आया है, आपके साथ भी रहा है। भले ही आपसे थोड़ा दूर रहा हो, लेकिन दिल में हमेशा रहा है। तो जल्दी से लिख भेजिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले संदेश की तरफ। SM जावेद चगुफ्ता अंजुम, ये लिखते हैं गुमला झारखंड से। और अगले जो श्रोता है वो है,
2: ये है सनावत से, शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बुडाना।
3: जी हाँ, तो इन्होंने भी बता दिया है। इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे साथी हैं वो हैं, दोस्त वो नहीं होते जो तस्वीर में आपके साथ खड़े होते हैं, सच्चे दोस्त वो होते हैं जो तकलीफ में आपके साथ खड़े रहते हैं। तो कौन खड़ा रहता है आपके साथ तकलीफों में, और तस्वीर में भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है।
2: हाँ, देखिए, जो अपने हैं वो तो तस्वीर में भी खड़े हो जाएं तो सही है। हाँ, लेकिन जो तस्वीर में है और अपने नहीं है वो थोड़े से चलते नहीं है भाई।
3: इन्होंने लिखा है, ये हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से ये लिख रहे हैं। और इन्होंने अपनी बात तो कह दी है, अब आप में से और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो कहना चाहते होंगे कुछ।
2: जी देखिए, जो अगला संदेश है वो कहते हैं, नमस्कार शिल्पा और आरती बहन जी, आप दोनों बहनों को हार्दिक अभिनंदन, आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। ये लिखते हैं, मेरे दोस्त मेरे लिए किसी रब की इबादत से कम नहीं है, क्योंकि ये वो हकीम हैं जो अपने अल्फाजों से ही इलाज कर देते हैं। मेरे दोस्त हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें।

0: आस्था वो आईना है जिसमें हम अपना अक्स खुद देखते हैं। ये वे आईना है जो हकीकत बयान करता है। बस ज़रूरत होती है खुद को वक्त के हिसाब से तराशने की। देखिए कितना खूब लिखा है।
1: हमें भी अपना दोस्त कहा है कि इंद्रप्रस्थ भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है जो हमारे चेहरे पे मुस्कान रखता है और आप भी हमारे बहुत अच्छे
0: दोस्त। देखिए हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे श्रोता हमारे लिए बहुत खास हैं, है ना। तो आरती क्यों ना सुनवाते हैं ये
1: जी।

श्रोताओं, अगला जो संदेश आया है वो आया है हमारे पास मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी से जगदीश धाकड़ नायामा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ जी का। अगला जो संदेश है हमारे पास आया है अलंकार डबवाली से बसंत सिंह चत्र राजकुमार कुलदीप गांधी जी का। अगला संदेश हमारे पास आया है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी, पिंगा वाला चौक, गोराया जालंधर से। और अगला संदेश है हमारे पास गुरमीत सिंह मीता का साउथ एक्सटेंशन से और शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी का।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों लेते हैं अपना अगला संदेश। ये लिखते हैं हमें, दोस्त नया हो या पुराना फर्क नहीं पड़ता, मुश्किल वक्त में जो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे वही सच में अपना है। देखिए दोस्तों, ये तो बहुत सही बात है कि दोस्ती की पहचान ही तब होती है जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है। और ये संदेश हमारे पास आया है दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू जी का, श्रोता रघुवीर नगर से। और अगला जो संदेश है हमारे पास आया है जिला संभल ग्राम सिरसा से सचिन प्रजापति और कुश प्रजापति। मित्रता ईमानदारी से निभानी चाहिए, जैसे कि आकाशवाणी दिल्ली मित्रता निभाता है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन दोस्त भी तो आप जैसे ही हैं हमारे, जो हमें मित्रता निभाने के लिए मजबूर कर देते हैं। और लीजिए सुनिए दोस्ती के ऊपर ये प्यारा सा गीत।

0: देखो आरती, अब जो अगला संदेश हमारे पास आया है, पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन साहा, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह जी का।
1: जी हाँ, तो इन्होंने अपना संदेश भेजा है। साथ ही हमारे पास जो अगला संदेश आया है, वो कहते हैं, दोस्त से बढ़कर कोई नहीं है ज़िंदगी में, हम तो ऐसा समझते हैं दीदी। और ये कह रहे हैं खैल बाजार पानीपत से, नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से, पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भाविक सिक्का। साथ ही हमारे साथ जो अगले श्रोता जुड़े हैं वो हैं
0: वो है जैजनेन्द्र श्रोता संघ परभड़ी महाराष्ट्र से, रूपेश संघई, महेश, प्रगेश, प्रितेश और पूरा संघई परिवार। और अगला जो हमारे पास संदेश आया है वो आया है हमारे पास ये संदेश हमारे पास आया है सहारनपुर से, आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग जी का। अगला जो संदेश हमारे पास आया है वो ऊपरकोट मोहल्ला चौखंड चौखुंटी बुलंदशहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों का। अगला जो संदेश हमारे पास आया
1: वो
0: है
1: है धनोरा विटारी महाराष्ट्र से, भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल का। और ये हमारे पास संदेश जो अगला भेज रहे हैं, वो अपना संदेश पहले भी हम तक पहुंचा चुके हैं।
0: हाँ
1: वैसे मुझे लगता है कि इनमें से कुछ लोग जो हैं हमारे श्रोता, वो बहुत ही शरारती हैं,
0: हाँ
1: क्योंकि हम
0: कैसे?
1: बार बार कहते हैं कि अपने संदेश जरा एक या दो बार से ज़्यादा मत भेजिए, बाकी की डांट हमें खानी पड़ती है।
0: देखो आरती, लेकिन इसमें भी मजा है ना, दोस्त शरारती हो तो कुछ और ही मजा
1: भाई,
0: आता
1: पर
0: है।
1: आपकी शरारत की वजह से डांट तो हम दोनों की पड़ जाती है, कि बाकी सब कहते हैं कि
0: बिल्कुल।
1: आप कुछ लोगों से तो अच्छा निभा रहे रिश्ता और हमारे को
0: हमारे
1: भूल गए,
0: संदेश ही नहीं
1: जबकि
0: लेते हैं।
1: हकीकत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सामने जो भी संदेश आता है हम उसे लेते हैं, लेकिन कई लोग एक ही संदेश को 25 बार भेज देते हैं। अब आप बताइए क्या करें।
0: जी
1: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ये ले लेते हैं, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। साथ ही हमारे साथ जो अगले श्रोता जुड़े हैं वो भी यही हैं, लेकिन उसके
0: देखिए,
1: आगे जो जुड़े हैं वो
0: हाँ,
1: हैं
0: उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश जी का। और ये हमें लिखते हैं आरती, हमारा तो बचपन से एक दोस्त है, नाम है सुभाष गांधी, जो हम दोनों ने अपनी दोस्ती को आज भी बरकरार रखा है, हर काम हर दुख सुख में साथ निभाते हैं, दोस्त से अच्छी कोई चीज़ नहीं
1: और
0: है।
1: ये इन्होंने दोस्त का भी नाम अपने इसमें
0: जी,
1: शामिल किया
0: सुभाष
1: है।
0: गांधी जी का शामिल किया है।
1: तो भाई बहुत अच्छी बात, इन्होंने तो बता दिया कि इनकी दोस्ती किससे निभ रही है, पर आप लोग अभी तक हमें नहीं बता पाए हैं। तो आप भी अगर बताना चाहते हैं तो मेल खुला है, मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com पर। और फिलहाल एक और गीत हो जाए।
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों, अगला संदेश जो हमारे पास आया है वो आया है पोटिया कला दुर्ग से, संजय साहू, सुजाता साहू और शशांक साहू, सीमा साहू जी का। अगला जो संदेश हमारे पास आया है वो आया है हमारे पास पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी का। अगला संदेश आया है हमारे पास वड़िंगखेड़ा पंजाब से, मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जी का। और जो अगला संदेश हमारे पास आया है वो
1: वो
0: आया
1: है
0: है
1: झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया का। ये हमारे पास संदेश भेज रहे हैं। साथ ही हमारे पास जो संदेश आया है वो कहते हैं प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और ऐसा कहने वाले हैं आदर्श नगर मालौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा, यानी कि पूरी शर्मा फैमिली हमें सुन रही है।
0: जी। और आपने एक चीज़ नोट की श्रोताओं, जैसे आरती ने मुझे रोका बीच में ही और खुद कूद पड़ी मैसेज पढ़ने के लिए, ये होता है सच्चा
1: हाँ, जो
0: दोस्त।
1: दूसरे का काम जरूर बिगाड़ता है।
0: बिल्कुल। तो लीजिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: जी हाँ, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा और साथ में इस फिल्म में थे अक्षय कुमार। फिल्म का नाम था मुझसे शादी करोगी। तो भाई, इन्होंने शादी की या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास मेल आ गए हैं और उसका जवाब भी आ गया जो हमने सवाल पूछा था। सवाल है कि आपका वो कौन सा दोस्त है जो आपके साथ बचपन से लेके आज तक रहा, और उसका जवाब आया है, बचपन का दोस्त वो होता है जिसके साथ दोस्ती कम और शरारतों की पार्टनरशिप ज़्यादा होती है। साथ में खेलना, छोटी छोटी बातों पर लड़ना, फिर 5 मिनट बाद ऐसे मिल जाना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कभी स्कूल की मस्ती, कभी गली के खेल, तो कभी बिना वजह घंटों हंसना। वो दिन आज भी याद आते हैं। समय बदल गया, जिंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन बचपन के दोस्तों के साथ बिताई यादें आज भी दिल में बिल्कुल ताज़ा है। सच्चा बचपन का दोस्त वो है जिसके सामने उम्र बढ़ जाती है मगर बचपन कभी खत्म नहीं होता। ये लिखना है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवानगन, कौशल्या देवानगन और हेमलता डिंपल देवानगन का।
1: जी हाँ आरती, बिल्कुल सही बात है कि दोस्ती होती ही ऐसी है।

0: जहाँ लड़ाई हो, झगड़ा हो, लेकिन प्यार तुरंत हो जाता है। और जो अगला संदेश आया है वो हमारे पास आया है मारहरा दरवाज़ा एटा से, नवी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी और अनम यशफ अब्बासी जी का। और किदवई नगर से, सिद्धपुरा टाउन से, जुबेर अली खान साहिबा अंजुमन खान जी का। अगला जो संदेश हमारे पास आया है वो आया है हमारे पास रामेश्वर कठेरिया, उमाकांती कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्रवधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार जी का। ये हमारे पास आया है संदेश ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से।
1: जी हाँ, बहुत सारे श्रोताओं ने अपने संदेश भेज दिए हैं और बहुत सारे संदेश हैं जो रह गए हैं, तो उनसे तो हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि आपके संदेश शामिल नहीं हो पा रहे क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी हो गई है। हम कार्यक्रम से ले रहे हैं विदाई, लेकिन बहुत लंबी नहीं होगी ये जुदाई क्योंकि
0: जी
1: हम आपसे मिलने फिर से आएंगे। फिलहाल के लिए, आज के लिए आप सभी के साथ गुजारा गया ये वक्त हमें बहुत अच्छा लगा और ये दोस्ती को समर्पित जो हमारा ये कार्यक्रम था, इसने मुझे भी मेरे दोस्तों की याद दिला दी। फिलहाल आप भी अपने दोस्तों को याद कीजिए और फिलहाल मैं और शिल्पा
0: आपसे अनुमति चाहते हैं कार्यक्रम समाप्त करने के लिए। आप सभी को हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर, और स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को है, और 11 बजे आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
2: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना, इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है, और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए सेवा, संतुलन, धैर्य, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदनशीलता और संवाद के 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हर भाजपा कार्यकर्ता सेवा भाव के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिखाए मार्ग पर चलने पर गर्व महसूस करता है। सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ यात्रा के अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से यात्रा के दौरान अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का भी आग्रह किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों को बनाने और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एनालॉग पनीर का अर्थ है कि जो वास्तविक दूध के बजाय अन्य सामग्री से बनाए जाते हैं। प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत लाइसेंस

0: लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियमन 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
1: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज श्रीनगर स्थित आकाशवाणी केंद्र में उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय चैनल प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें उत्तरी क्षेत्र के आकाशवाणी केंद्रों के कामकाज और प्रसारण की समीक्षा की गई। इस अवसर पर श्री जैन ने कहा कि बैठक का उद्देश्य क्षेत्रीय चैनल प्रबंधकों के सामने आ रही समस्याओं को समझना, उनकी प्रतिक्रिया लेना और समस्याओं के समाधान तलाशना है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में 484.6 अंक हासिल किए। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की जोड़ी ने रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.

श्रोताओं, अभी आपने सुना जगजीत सिंह की गाई ये गज़ल। लीजिए अब सब रस कार्यक्रम में सुनते हैं फाल्गुनी पाठक की गाए ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। और लीजिए, आप सुनते हैं सुरमंजरी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में सुनील कुमार के स्वर में राग जौनपुरी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुरमंजरी के अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनील कुमार के स्वर में राग जौनपुरी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और अब से कुछ ही देर में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
2: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव,

0: केसे राज्य वन संस्थानों में नई सुविधाएं विकसित करने और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। सिक्किम में ग्यालशिंग जिले के रिम्बी गांव में कल रात मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। श्री तमांग ने स्थानीय अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आज हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मछुआरों को आज समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक हासिल किया। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले मुक्केबाज सचिन सेवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत अब 19 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said Vikasit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colours of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colours of service.
2: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुँचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
1: The Prime Minister noted that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. Today, infrastructure in villages has improved considerably, while self-reliance among women of the country has also increased. And Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupinder Yadav, today launched the Capacity Enhancement for Effective Forest Management Project to support forest conservation practices. Addressing the inaugural session of the project launch in New Delhi, he said the project will promote innovation and the creation of more facilities in state forest institutes. Mr. Yadav said this project has been launched with an outlay of approximately 537 crore rupees with the objective of providing the forest personnel the training of common protection competitiveness and region-specific knowledge. Vice President C.P. Radhakrishnan has said, in an increasingly interconnected world, emerging challenges cannot be effectively addressed by nations working in isolation. Interacting with participants of the fourth edition of International Strategic Engagement Programme INSTEP at the Uparashtrapati Bhavan today, Mr. Radhakrishnan said the Indian ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future, reflects collective well-being of people around the globe. He said this philosophy provided an opportunity for the foundation during India's G20 presidency and continues to guide India's approach towards inclusive and cooperative international engagements. The government has said 70,000 rural youth across states and union territories will be provided skill training from next month under the Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0. The Yojana is a centrally sponsored scheme providing placement-linked skill training to poor rural youth. The duration of the training varies from 3 months to 12 months. The Rural Development Ministry said all the

घर आंगन। कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ रेनू। तो कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर, यानी 100.1 MHz पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी, यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 KHz पर। आज है शुक्रवार और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित होता है हमारे बुज़ुर्गों को, यानी हम बढ़ाते हैं एक कदम बुज़ुर्गों की ओर। और जब बुज़ुर्ग हमारे साथ होते हैं, हमारे पास होते हैं, तो हम कुछ ऐसा महसूस करते हैं। हमारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि तुम असमर्थताओं में नहीं, संभावनाओं में घिरे हैं। हर दीवार पे द्वार बन सकता है और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है।

असली ताकत उसकी गगनचुंबी इमारतें नहीं बल्कि अंतिम कतार में खड़ा वो अंतिम व्यक्ति ही होता है। ये समावेशी और क्रांतिकारी विचार थे महान मनीषी और विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के, जिनकी जयंती आज हम सब मना रहे हैं अंत्योदय दिवस के रूप में। और इसके मूल में है एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद एक ऐसा दर्शन, एक ऐसा विचार जो कहता है कि अगर हमारे पैर के छोटे से अंगूठे में भी चोट लग जाए तो दर्द पूरे शरीर को होता है, वैसे ही हमारा समाज भी है। अगर समाज का एक भी हिस्सा, एक भी गरीब भाई बहन अभाव में है तो हमारा देश पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुखी कैसे हो सकता है। इस महान विचार को भी दुनिया के समक्ष रखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, जिन्हें विश्वास था कि मनुष्य का विकास केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि उसके मन, बुद्धि और आत्मा के संतोष से होता है, और ये संतोष तभी मिलेगा जब आर्थिक प्रजातंत्र आएगा। तो ऐसी महान विभूति को आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं और साथ में ये संकल्प भी लेते हैं कि हमारे आसपास जिन्हें भी हमारी ज़रूरत होगी उसकी हम मदद करेंगे और उसे आगे बढ़ाने में हमसे जो भी संभव हो सकेगा हम उसे करेंगे, और तभी होगा अंत्योदय और एकात्म मानववाद का पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना साकार।

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी नीला आकाश और आवाज़ लता और रफ़ी की। आज है 25 सितंबर, जिसे हम सब मना रहे हैं अंत्योदय दिवस के रूप में। इसमें अंत का अर्थ है सबसे अंतिम या पिछड़ा हुआ व्यक्ति, और उदय का अर्थ है उत्थान, यानी जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाता, तब तक राष्ट्र की प्रगति का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि किसी भी देश

आकाशदीप, इस फिल्म से अभी आपने सुना लता मंगेशकर को। और आज है अनंत चतुर्दशी यानी कि गणेश विसर्जन की तिथि। 10 दिनों से भगवान गणेश के आगमन के हर्षोल्लास में हम सब डूबे हुए थे, लेकिन आज भारी मन से उन्हें विदाई दे रहे हैं। भले ही बप्पा के मूर्ति रूप को आज हम विसर्जित करेंगे, लेकिन हमारे मन में, हमारे हृदय में उनका निवास सदैव है और रहेगा। इसी मंगल कामना के साथ कि बप्पा को हम विदा तो दे रहे हैं, लेकिन कहते हैं हम सब मिल करके कि गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी।

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी इलाका और आवाज़ आशा भोसले और किशोर कुमार की। और अब बात जापान में चल रहे एशियन गेम्स की, जिसने हमारे देश में अच्छा प्रदर्शन लगातार जारी है और विशेषकर हमारे देश की महिला खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन तो हमें गर्व से भर ही देता है। महिला खिलाड़ियों ने महिला क्रिकेट में स्वर्ण पदक समेत कई पदक अपने नाम किए हैं। सिल्वर मेडल की बात करें तो शूटिंग में इला वेनिल वालारिवन, वुशु में रोशेबीना देवी और वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतकर इतिहास ही रच दिया। इसी तरह कांस्य पदक लाने वाली महिला खिलाड़ियों की बात करें तो सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर की रेस में कांस्य पदक जीता, सुचिका तरियाल मिक्स्ड मार्शल आर्ट में, और महिला स्किट टीम शूटिंग में परिणाज धालीवाल, रायजा ढिल्लो और महेश्वरी चौहान की टीम ने मिलकर देश को कांस्य पदक दिलाया। तो भाई हमारे खिलाड़ी इसी तरह अच्छा प्रदर्शन करते रहें और हमारे देश में पदकों की बरसात यूं ही होती रहे, हम सब लोगों की यही शुभकामनाएं हैं।

जीने की राह, अभी इस फिल्म से आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर और रफ़ी की आवाज़ में। और अब बात प्रधानमंत्री मानधन योजना की। ये योजना भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है जो असंगठित क्षेत्र जैसे रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार और खेतिहर मजदूर, जिनका देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है, उन्हें सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। ये योजना उन श्रमिकों को एक औपचारिक पेंशन ढांचे के तहत लाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और देश के विकास में उनकी भागीदारी का सम्मान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। ये पेंशन प्रदान करने वाली एक स्वैच्छिक और अंशदायी सरकारी योजना है जो ये सुनिश्चित करती है कि श्रमिक जब शारीरिक रूप से काम करने में असमर्थ हो जाएं, यानी 60 वर्ष की आयु के बाद, तब भी उन्हें 3,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिलती रहे ताकि वे स्वाभिमान से जी सकें। इसमें आवेदन के समय श्रमिक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और श्रमिक की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। इसमें 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपये की निश्चित पेंशन मिलती है और लाभार्थी के इस दुनिया से जाने के बाद उसके जीवन साथी को भी 50% यानी कि 1,500 रुपये पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलती है। और इस योजना में अपना पंजीकरण करवाने के लिए आधार कार्ड, पासबुक या जनधन खाता और चालू मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेजों के साथ आप नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर या जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। और इससे संबंधित और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए मानधन पोर्टल योजना पर जाकर और अधिक जानकारी ले सकते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने ये गीत सुना। फिल्म थी तेरे घर के सामने। और अब बात स्वास्थ्य की कर ली जाए तो जिसका सीधा संबंध होता है जीवन शैली और खान पान से, इसीलिए सही जीवन शैली और आहार अपनाना बहुत आवश्यक है, खासकर हमारे बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में शरीर को सही देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाना कोई मुश्किल काम नहीं, बस अपने जीवन को थोड़ा अनुशासित और नियमित करना है। सबसे पहले अपने शरीर को सक्रिय रखना ज़रूरी है, और इसके लिए भारी वर्कआउट नहीं, बस सुबह शाम 20 से 30 मिनट की हल्की सैर, क्योंकि नियमित वॉक और योगासन से जोड़ों का दर्द भी कम होता है और हड्डियों की मजबूती बनी रहती है, जिससे गिरने या फ्रैक्चर होने का खतरा भी कम हो जाता है। इसी तरह आहार पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संतुलित और सुपाच्य आहार लें, जिसमें फाइबर, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन की मात्रा अधिक हो।

क्योंकि सुपाच्य भोजन और पर्याप्त पानी पीने से कब्ज, गैस और अपच जैसी बुढ़ापे की जो आम समस्याएं हैं उनमें भी इससे राहत मिलती है। साथ ही तेल मसाला जो कम खाते हैं और हल्की सैर करते हैं, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण भी इससे रखा जा मतलब मिलता है, उससे नियंत्रण होता है और दिल की बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। तो बुज़ुर्गों के लिए 7-8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है और शरीर की इम्यूनिटी जो इससे बढ़ती है, बुज़ुर्ग मौसम बदलने पर जल्दी बीमार नहीं पड़ते। इसी तरह प्राणायाम, ध्यान और अपनों से बातचीत करने से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डिमेंशिया आदि जानी मतलब भूलने की जो बीमारी होती है वो खतरा भी इसका कम हो जाता है। इसके साथ ही बुज़ुर्गों को सामाजिक रूप से सक्रिय रहने के लिए हम उम्र दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए। इससे जैसे पार्क में जाएं, किसी कम्युनिटी क्लब से जुड़ें और अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए घर में भी कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे शतरंज खेलना, किताबें पढ़ना, संगीत सुनना, ये सब आपके लिए बहुत फायदेमंद है।

मेरे सनम, अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और बात करें अगर सीखने की, तो सीखना सिर्फ स्कूल की किताबों या कॉलेज की डिग्री तक सीमित नहीं है, बल्कि सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है और ऐसा सफ़र है जो कि पैदा होने के साथ ही हमारे शुरू होता है और जीवन के आखिरी पड़ाव तक चलता रहता है। ज़िंदगी में मिली असफलताएं, गलतियां और अनुभव हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाते हैं, इसलिए सीखना या सीखते रहना ज़रूरी है, चाहे उम्र कोई भी हो। नया हुनर, नई भाषा, जीवन को जीने का नया नज़रिया हमेशा आपको युवा बनाए रखता है। और वो कहते हैं ना कि जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, समझो आपने आगे बढ़ना बंद कर दिया। लेकिन अक्सर आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि सीखने की उम्र नहीं रही। ऐसा कहने वाले ज़रूरी नहीं बुज़ुर्गों, कुछ लोग आदतन भी ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये किसी काम को ना करने का एक बहाना जो होता है। किसी काम को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है उस काम को करने की आपकी इच्छा शक्ति। जब तक आप में इच्छा शक्ति नहीं होगी, फिर जानने की, किसी काम को जानने की उत्सुकता नहीं होगी, तब तक आप कोई चीज़ वाकई नहीं सीख सकते। इसीलिए जब भी जहाँ भी अवसर मिले, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ भी सीखा हुआ बेकार नहीं जाता, उम्र के किसी मोड़ पर काम ज़रूर आ जाता है। इसीलिए जब सीखना हो तो किसी का ना उम्र देखनी चाहिए, ना समय देखना चाहिए, और ना ही देखना चाहिए कि हमारा उस्ताद कौन है, यानी कि उसकी उम्र क्या है। वो छोटा हो बड़ा हो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो सीखने से मतलब कोई कुछ भी सिखाए।

फिल्म थी सावन की घटा और आवाज़ थी आशा भोसले की, जो गीत आपने अभी सुना था। और अब बात एक ऐसी जगह की जहाँ स्वच्छता कोई सरकारी नियम नहीं बल्कि जीने का सलीका है, वहाँ की जीवन शैली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय के एक खूबसूरत गांव मावली नोंग की, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव भी कहा जाता है। ये गांव प्राकृतिक रूप से तो खूबसूरत है ही, लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत और ख़ास बात ये है कि यहाँ की सुबह की शुरुआत सफाई की एक खूबसूरत परंपरा से ही होती है। स्कूल जाने से पहले छोटे छोटे बच्चे, घर के बड़े और बुज़ुर्ग सब मिलकर गांव की सड़कों पर निकल पड़ते हैं और रास्ते में गिरे सूखे पत्ते और जो भी कूड़ा होता है उसे बांस की खूबसूरत डस्टबिन में डाला जाता है, जो कि यहीं की प्राकृतिक रूप से बनाई हुई डस्टबिन होती है। साथ ही यहाँ प्लास्टिक के प्रयोग पर भी पूरी तरह प्रतिबंध है। गांव के सभी घरों में शौचालय की सुविधा है और इसके साथ ही यहाँ कचरे से बेहतरीन खाद भी बनाई जाती है। यहाँ की साफ सफाई कोई सरकारी नियम नहीं बल्कि स्थानीय लोगों की दैनिक आदत और परंपरा है। यहाँ के लोग कहते हैं कि सफाई उनके लिए कोई काम नहीं, ये तो भगवान की पूजा जैसा है। शायद इसीलिए इस गांव को भगवान का अपना बागीचा भी कहा जाता है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, साफ सुथरी पक्की सड़कें और मुस्कुराते हुए लोग, ऐसा लगता है जैसे आप किसी पेंटिंग के अंदर आ गए हो। तो कभी भी अवसर मिले तो यहाँ ज़रूर जाएं और इस छोटे से गांव मालुंडकन को ज़रूर देखें। और वैसे भी नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही खूबसूरत है पूरा क्षेत्र जो है। तो यहाँ के गांव, जो ये गांव की बात हमने की, वो सिखाता है कि इरादा पक्का हो तो बदलाव किसी भी कानून या उसकी नियम की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक सोच अच्छी होनी चाहिए तो आप कुछ भी कर गुजरते हैं। तो अगली बार जब भी रास्ते पर आप कोई रैपर या खाली बोतल फेंकने लगे या कोई भी कूड़ा फेंकते हैं, तो भाई मेघालय के छोटे से गांव को ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिन्होंने स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी माना और जन भागीदारी से स्वच्छता की एक मिसाल कायम की है।

आप अभी ये गीत सुन रहे हैं, ये रात फिर ना आएगी फिल्म से, और आवाज़ है आशा भोसले की। इसी के साथ मुझे यानी रेनू को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है, गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का 4th संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन किया। इस समय गृह मंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: शामिल हो रहा हूं। ये 4th संस्करण आते आते पहले संस्करण में यूपी में जो परिवर्तन हुआ है उसका दुनिया ने परिचय किया, दूसरे में यूपी में आना है ऐसा इरादा जताया, तीसरे में यूपी में आए और 4th में यूपी के विकास में सहयोगी बनकर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत के विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है और उत्पादन, निवेश तथा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि मेक इन इंडिया का अगला लक्ष्य भारत को वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनाना है, जिससे

0: फास्ट रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में मिक्स 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर भारतीय एथलीट मनु टीएस पुवम्मा, एमआर विशाल टीके और मिथ्या रामराज को बधाई दी है। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में भारत का सामना ईरान और चीनी ताइपेई के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम से होगा। भारतीय स्क्वाश खिलाड़ियों ने 3 पदक पक्के कर लिए हैं। जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार की जोड़ी मिक्स्ड युगल के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan.
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: मिस्टर मोदी हाइलाइटेड दैट वडनगर गेव हिम द वैल्यूज दैट शेप्ड हिज लाइफ व्हाइल काशी एडेड काउंटलेस कलर्स ऑफ सर्विस टू दोज वैल्यूज। ही नोटेड दैट ओवर द पास्ट 12 इयर्स द गैप बिटवीन सिटीज एंड विलेजेस इन इंडिया हैज नैरोड सिग्निफिकेंटली। द प्राइम मिनिस्टर सेड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेजेस हैज इंप्रूव्ड कंसिडरेबली व्हाइल सेल्फ रिलायंस अमंग द वुमेन ऑफ द कंट्री हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड। Vice President C.P. Radhakrishnan has said, in an increasingly interconnected world, emerging challenges cannot be effectively addressed by nations working in isolation. Interacting with participants of the 4th edition of the International Strategic Engagement Program, or INSTEP, at the Uparashtrapati Bhavan today, Mr. Radhakrishnan said the Indian ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family and one future, reflects collective well-being of people around the globe. INSTEP is an initiative aimed at promoting regional security and closer cooperation among like-minded nations. Prime Minister Narendra Modi has highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post today, Mr. Modi said the initiative has led to more being made in India, more investment in India and more exports from India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, South African Foreign Minister Ronald Lamola and Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira have strongly condemned the Pahalgam terror attack and reaffirmed their commitment to zero tolerance for terrorism. The three ministers met under the IPSA Dialogue Forum in New York on the sidelines of the United Nations General Assembly yesterday and stressed their commitment to the UN Charter, international law and a stronger multilateral system. In a joint statement, the ministers called for a comprehensive reform of the UN Security Council. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav launched the workshop on capacity enhancement for effective forest management project in New Delhi today. On the occasion, the minister said the project holds significant potential for enhancing technical and field level capabilities in forest fire management, biodiversity conservation and climate action. The project has an outlay of over 537 crore rupees, including a contribution of over 440 crore rupees by Japan International Cooperation Agency. The project is being implemented over 7 years and involves all states in India. The government has said 70,000 rural youth across states and union territories will be provided skill training from next month under the Deen Dayal

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो घड़ी में

दिन के 1:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आप सभी श्रोताओं का

समुद्र की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। फिल्म का निर्देशन और निर्माण SD नारंग ने किया। मुख्य भूमिकाओं में जितेंद्र, बबीता, जयंत, जगदीप, जीवन, DK, सप्रू, राजेंद्र नाथ, अरुणा ईरानी, वीणा, टुनटुन और शबनम जैसे कलाकार इस फिल्म में दिखाई देते हैं। और इस कहानी की धड़कन थी समुद्र के भीतर छिपा हुआ वो मोती जिसके लिए इंसान अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है। श्रोताओं, कहानी की शुरुआत होती है समुद्र के किनारे एक छोटे से समुद्री गांव से। यहां के लोगों की रोजी रोटी मोती निकालने पर निर्भर है। समुद्र उनके लिए सिर्फ पानी का आधा विस्तार नहीं बल्कि उनका घर, उनका खेत और उनकी जिंदगी भी है। इसी गांव में गांव का सम्मानित मुखिया गोकुल है। उसका परिवार और गांव के दूसरे लोग पीढ़ियों से समुद्र की गहराइयों में उतरकर मोती तलाशते आए हैं। गोकुल का बेटा माणिक भी इसी परंपरा का हिस्सा है। श्रोताओं, गांव में शादी ब्याह की खुशियां हैं, रिश्तों में अपनापन है और समुद्र के किनारे जिंदगी अपनी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। और इसी वातावरण में फिल्म का रोमांटिक पक्ष सामने आता है, विजय और रूपा की कहानी। विजय की भूमिका जितेंद्र ने और रूपा की भूमिका बबीता ने निभाई है। दोनों के बीच धीरे धीरे प्रेम पनपता है और समुद्र, गांव तथा मोती की दुनिया के बीच ये प्रेम कहानी फिल्म को एक अनमोल भाव देती है।

श्रोता हूँ, इस खूबसूरत गीत को गाया था महेंद्र कपूर साहब ने, संगीत रवि जी का और बोल राजेंद्र कृष्ण के। गीत केवल प्रेम का इजहार ही नहीं करता, बल्कि उस दौर की फिल्मों की वो खूबसूरत परंपरा भी हमारे सामने लाता है, जिसमें कहानी कुछ पल के लिए रुकती है और प्रेम संगीत बनकर पर्दे पर उतर आता है। आपको गांव फिर लिए चलते हैं। श्रोताओं, गांव में माणिक और लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां होती हैं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर है। समुद्र की गहराइयों में मोती तलाशने का काम जितना खूबसूरत दिखाई देता है, उतना ही खतरनाक भी है। एक हादसा सबकी खुशियों को मातम में बदल देता है। मुखिया के बेटे माणिक की समुद्र में मृत्यु हो जाती है। इस दुर्घटना के बाद हालात इतने गंभीर हो जाते हैं, सरकार समुद्र में गोता लगाकर मोती निकालने पर रोक लगा देती है, लेकिन इस फैसले से गांव के सामने एक नया संकट खड़ा हो जाता है। जिस काम से उनकी पीढ़ियां पलती आई थीं, वो अब बंद हो गया है। यानी समुद्र सामने है, मोती सामने है, लेकिन उसे निकालने की इजाजत नहीं, और भूख किसी सरकारी आदेश को नहीं मानती, न समझती है। फिल्म यहीं से केवल प्रेम कहानी नहीं रहती, बल्कि रोजगार, गरीबी, परंपरा और इंसान की मजबूरी की कहानी बन जाती है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कहानी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ही फिल्म में, फिल्म अनमोल मोती की। आपको फिर गांव लिए चलते हैं। श्रोताओं, इस कहानी में गांव की परेशानी के बीच एक बड़ा मोती कहानी के केंद्र में आता है। गोकुल अपने बेटे की मौत से टूट चुका है, लेकिन उसके भीतर अपने परिवार और गांव के लिए जिम्मेदारियां अभी भी जिंदा हैं। वो समुद्र की ओर फिर देखता है, जिस समुद्र ने उसका बेटा छीन लिया, उसी समुद्र की गहराइयों में अब वो उसके परिवार और गांव के भविष्य का सवाल छिपा है। लेकिन जहां दौलत होती है, वहां लालच जरूर होती है। गांव का जमींदार उस कीमती मोती को हासिल करना चाहता है और उसके लालच से कहानी में संघर्ष पैदा होता है। मोती अब सिर्फ एक कीमती पत्थर नहीं रह जाता, वो इंसान की नियत की परीक्षा बन जाता है।

श्रोताओं, इस गीत को आशा भोसले और साथियों ने गाया था। ये गीत उस दौर की फिल्मों की खासियत याद दिलाता ही है और ये बताता है कि मुश्किलों के बीच भी जीवन अपने लिए खुशी का कोई छोटा सा रास्ता खोज ही लेता है। लेकिन अनमोल मोती में खुशियां ज्यादा देर तक ठहरती नहीं है। गोकुल आखिरकार उस समुद्र में उतरने का फैसला करता है। ये सिर्फ मोती पाने की कोशिश नहीं है, ये उसके लिए अपने बेटे की मौत, अपने गांव की मजबूरी और अपने जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा से सामना करने जैसा है। वो समुद्र की गहराइयों में उतरता है और यही फिल्म अपने सबसे रोमांचक हिस्से में पहुंचती है। समुद्र की अंधेरी गहराइयां, चारों ओर पानी और जान पर खतरा, और सामने एक ऐसा रहस्य जिसके लिए पूरा गांव बेचैन है। गांव का मुखिया गोकुल एक और मोती तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी संकट और गहरा हो जाता है। एक ऑक्टोपस उस पर हमला कर देता है और गोकुल की जान खतरे में पड़ जाती है। ऐसे समय में विजय और रूपा गोकुल को बचाने के लिए आगे आते हैं। समुद्र की गहराइयों में होने के कारण ये संघर्ष फिल्म के सबसे अलग दृश्यों में से एक बनकर उभरती है। विजय ऑक्टोपस से मुकाबला करता है और आखिरकार गोकुल को बचाने में सफल होता है। यहां प्रेम कहानी अचानक साहस और बलिदान की कहानी में बदल जाती है और दर्शक को एहसास होता है कि असली अनमोल मोती शायद समुद्र में मिलने वाला मोती नहीं, बल्कि इंसान का साहस, प्रेम और अपनों के लिए त्याग करना होता है।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से आज हम जिस कहानी का जिक्र कर रहे हैं, फिल्म का नाम है अनमोल मोती। श्रोताओं, अब हम कहानी के अंतिम दौर में पहुंच गए हैं। कहानी के अंत में जमींदार को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने किए पर पछताता है और गांव वालों से क्षमा मांगता है। लंबे संघर्ष के बाद वातावरण फिर शांत होने लगता है। वहीं विजय और रूपा के प्रेम को मंजिल मिलती है और उनका विवाह हो जाता है। गोकुल भी अपने जीवन की अगली यात्रा यानी तीर्थ यात्रा की ओर बढ़ने की तैयारी करता है।

समुद्र ने सबसे बहुत कुछ छीना था, लेकिन उसी समुद्र ने गांव वालों को जिंदगी का एक नया अर्थ भी दिया। और इस तरह अनमोल मोती का अंत केवल एक मोती मिलने पर नहीं, बल्कि रिश्तों, प्रेम और साहस और पश्चाताप के साथ समाप्त होता है। तो ये खूबसूरत कहानी थी फिल्म अनमोल मोती की, और इसी फिल्म का एक और गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: ठीक नहीं है तो कैसे जीत गए आप जी बताओ। अभी सरकार किसकी है वहाँ केरला में? एकदम झूठा आरोप लगा रहे हैं, वो झूठा आरोप लगाना और भाग जाना ये उनकी फितरत हो गई है।
1: इसी तरह सामाजिक न्याय ते शक्तिकरण बारे केंद्रीय मंत्री वरिंदर कुमार ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी झूठ ते नकारात्मकता दी राजनीति च विश्वास रखते ने अते चोन कमीशन बारे गुमराहकुन जानकारी फैलाउन दी कोशिश कर रहे ने। उन्होंने आज चंडीगढ़ विच मीडिया वालों भारतीय चोन कमीशन दे कामकाज बारे श्री गांधी वालों लगाए गए इल्जामां बारे पुछे सवाल दे जवाब विच ए गल कही। मंत्री ने कहा कि सारियां नूं नाल लैके देश दे विकास लई वचनबद्धता अते सकारात्मक सोच नाल अगे वधना चाहीदा है।
2: वो केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, झूठ की और नकारात्मकता की राजनीति ही करने में विश्वास रखते हैं। सकारात्मक सोच के साथ में देश के प्रति विकास का भाव लेकर आगे बढ़ना चाहिए सबको साथ मिलकर, न कि केवल विरोध के लिए विरोध करना।
1: उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो UPITS का चौथा एडिशन आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा च इंडिया एक्सपो सेंटर अते मार्ट च शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह अते सहकारिता मंत्री अमित शाह अते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पांच दिनों के इस समागम का उद्घाटन किया। बेहतरीन खरीददारी की शुरुआत इथों ही। विषय वाली यह नुमाइश 29 सितंबर तक जारी रहेगी जो राज्य के उद्यमियों निर्मातावां अते बरामदकारां नूं सीधे तौर पर आलमी बाजार नाल जुड़ेगी। इस समागम विच 2400 तों वध नुमाइशकारां, 1.5 लाख कारोबार तों कारोबार यानी B2B खरीददारां अते 4.5 लाख तों वध आम सैलानियां दी हिस्सेदारी देखण नूं मिलण दी उम्मीद है। 85 देशां दे 550 तों वध अंतरराष्ट्रीय खरीददारां दे वी इस समागम च शामिल होण दी उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सैशन दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों नाल मुलाकात की। इस दौरान दुवल्ले संबंधा अते इलाकाई ते विश्व पद्धरी मुद्दों उत्ते चर्चा की गई। एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस तहा तसाह कना नाल हुई बैठक विच यूक्रेन संघर्ष अते इस दे असर समेत बहुपक्षी सहयोग उत्ते चर्चा हुई। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुट जेटो अबलाकवा नाल दुवल्ले संबंधा नूं मजबूत करन अते इलाकाई ते विश्व पद्धरी मुद्दियां ते गलबात हुई। उत्थे मालदीव दी विदेश मंत्री इरू थिशम आदम नाल दुवल्ले संबंधा अते बहुपक्षी मंचां उत्ते सहयोग दी पड़चोल कीती गई। आकाशवाणी समाचार दे डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन ने अज श्रीनगर स्थित आकाशवाणी केंद्र विच उत्तरी खेत्र दे खेतरी चैनल प्रबंधकां नाल समीक्षा बैठक कीती। एशियाई खेडां विच भारत दीआं मर्दां अते महिला कबड्डी टीमां फाइनल च पहुंच गईआं ने। महिला टीम ने नेपाल नूं 48-24 नाल हराया जदके मर्दां दी टीम ने थाईलैंड नूं 66-28 नाल हरा के अपनी जेतू लीड बरकरार रखी। अखीर च खास खबरां एक बार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सारियां दे योगदान अते हिस्सेदारी नाल ही विकसित भारत दा संकल्प साकार हो सकदा है। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि तेजी नाल आपस च जुड़ रही दुनिया विच उभर रहीयां चुनौतियां दा असरदार ढंग नाल हल इकल्ले रह के नहीं कीता जा सकदा। मेक इन इंडिया पहलकदमी ने अज अपने 12 साल पूरे कर ले ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस पहलकदमी दा उद्देश अजिहा बुनियादी ढांचा, उद्यम अते नवीनता तैयार करना है जिस नाल भारत विकास अते खुशहाली दे राह ते अगे वध सके। भारत दी मर्दा ते औरतां दी कबड्डी टीमां एशियाई खेडां दे फाइनल च पहुंच गईयां ने। इस दे नाल ही साडा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक खबरां दा बुलेटिन शाम 6:20 ते होएगा। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत को हर एक के तआवुन से ही हकीकत की शक्ल दी जा सकती है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा यात्रियों से बातचीत की। हुकूमत ने अगले महीने से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत 70,000 देही नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत फराहम करने का फैसला किया है। जनूबी अफ्रीका और ब्राजील के वज़ीरे खारजा ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अलग IBSA मुज़ाकरात फोरम के दौरान मीटिंग में दहशतगर्दी को हरगिज़ बर्दाश्त न करने के अज़्म को दोहराया। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बहुत से इलाकों में हवा के दबाव के सबब मूसलाधार बारिश की वजह से तबाही हुई। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि अगले 12 घंटे में हवा का कम दबाव कमजोर पड़ जाएगा। और जापान में जारी एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर के एयर पिस्टल मिक्स टीम मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर एक की शमूलियत और ताउन के साथ ही विकसित भारत को हकीकत में बदला जा सकता है। सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वडनगर जाने वाले सेवा यात्रियों से वर्चुअल वसीले से बात करते हुए जनाब मोदी ने ये बात कही। जनाब मोदी ने उजागर किया कि वडनगर ने उन्हें ऐसी इकदार दी हैं जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को बनाया है, जबकि काशी ने इन इकदार में अनगिनत रंग भरे हैं। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि खिदमत के गुनागुन रंगों के साथ नौजवान भी इस सफर में हिस्सा ले रहे हैं।
1: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
0: वजीर आजम ने कहा कि पिछले 12 बरस में शहरों और देहातों के दरमियान फर्क में बहुत ज्यादा कमी आई है। आज देहातों के बुनियादी ढांचे में बेहतरी आई है, जबकि मुल्क की खवातीन में खुद इनसारी में भी इजाफा हुआ है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: इस बातचीत के दौरान यात्रियों ने वजीर आजम के साथ अपने तजुर्बात पेश किए। जनाब मोदी ने यात्रियों से यात्रा के दौरान अपने तजुर्बात को कलम बंद करने के लिए भी कहा। हुकूमत ने कहा है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 70,000 देही नौजवानों को अगले महीने हुनरमंदी की तरबियत दिलाई जाएगी। यह तरबियत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY-2M के तहत दिलाई जाएगी। इस योजना को मरकज की तरफ से शुरू किया गया है, जिसके तहत गरीब देही नौजवानों को रोजगार फराहम करने से मरबूत हुनरमंदी की तरबियत फराहम की जाती है। तरबियत की मुद्दत 3 से 12 महीने की होती है। देही तरक्की की वजारत ने बताया कि स्कीम में शामिल सभी 31 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को 2 साल की मुद्दत के लिए 9 लाख से ज्यादा निशाने दिए गए हैं। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने कहा है कि बाहम मरबूत होती हुई दुनिया में उभरते हुए चैलेंजों से वो ममालिक मुअसर तौर पर नहीं निबट सकते जो अलग थलग रहकर काम कर रहे हैं। आज उपराष्ट्रपति भवन में 4th बैन अल-अक़वामी अहम सरगर्मी प्रोग्राम इन स्टेप के शुरुआत से बात करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि वासुदेव कुटुंबकम एक कुरैर्स, एक कुनबा और एक मुस्तकबिल की भारतीय इकदार से दुनिया भर के लोगों की इज्तमाही खुशहाली का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि इस फलसफे से भारत की G20 सदर नशीनी के दौरान बुनियाद के लिए एक मौका फराहम हुआ है और इस फलसफे से सबकी शमूलियत और मुआविन बैन अल-अक़वामी सरगर्मियों की जानिब भारत के नज़रिए की रहनुमाई अब भी हासिल हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमात के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नज़रिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तذکرہ कर रहे हैं कि किस तरह इस विजन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को अमल में तब्दील किया है।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के तहत जो 2016 में शुरू की गई थी, 2026 तक गरीब घरों की खवातीन को 10 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे मरहले का आगाज़ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम की अहमियत को उजागर किया।
1: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में LPG गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
2: उज्ज्वला स्कीम से मुस्तफीद

0: एक खातून ने आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बताया।
1: मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं नागपुर जिला की रहवासी हूँ। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत उज्ज्वला योजना का मुझे गैस सिकड़ी का लाभ मिला है, जिससे मुझे अब खाना बनाने में समय की बचत होने लगी है।
0: उज्ज्वला स्कीम के दूसरे मरहले के तहत लोगों को पहला LPG रिफिल और हॉट प्लेट मुफ्त दी जा रही है। इसके अलावा इस स्कीम में इंदराज के लिए बहुत कम कागजात की जरूरत है। नागपुर से धनंजय वांखेड़ा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
2: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, जनूबी अफ्रीका के वजीर खारजा रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के वजीर खारजा मारो वियेरा ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की है और दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने के तहत अपने अज़्म को दोहराया है। इन तीन वज़रा ने कल अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अलग न्यूयॉर्क में IBSA मुज़ाकरात फोरम के तहत मुलाकात की और अक़वामे मुत्तहिदा के मंशूर बैनुल अक़वामी कानून और एक मजबूत तर कसीर मुल्की निज़ाम के तहत अपने अज़्म पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 81वें इजलास के मौके पर गैर मुल्की रहनुमाओं और वज़ीरों के साथ दो तरफ़ा बातचीत की और बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई हालात और वाक़यात और आलमी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने एंटीगुआ और बारबुडा के वज़ीर आज़म गैस्टन ब्राउन से मुलाकात के साथ अपने दिन का आगाज़ किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराकजी ने कहा है कि ईरान ने मगरबी एशिया में लड़ाई ख़त्म करने, आबनाए हुरमुज़ को दोबारा खोलने और ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए 7 दिन का मनसूबा पेश किया है। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये इत्तला दी गई है। जनूबी ओडिशा के ऊपर बने हुए हवा के दबाव की वजह से रियासत के कई इलाकों में मुसलसल शदीद बारिश हो रही है। नदियों की पानी की सतह बढ़ने के साथ जनूबी ओडिशा में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है, जबकि कई ज़िलों में सड़क राबतों में खलल पड़ा है। अगले 12 घंटों के दौरान इस दबाव में कमी आने का इम्कान है, लेकिन कुछ इलाकों में शदीद बारिश जारी रहेगी। एशियन गेम्स में जापान के नागोया में कमलजीत और सुरुचि सिंह की भारतीय जोड़ी ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 484.6 स्कोर किए और सोने का तमगा जीता, जबकि जनूबी कोरिया की जोड़ी ने चांदी का और ईरान ने कांसे का तमगा हासिल किया। कमलजीत और सुरुचि ने कुल 587 पॉइंट्स स्कोर किए और बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत को हर एक के ताउन से ही हकीकत की शक्ल दी जा सकती है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा यात्रियों से बातचीत की। हुकूमत ने अगले महीने से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत 70,000 देही नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत फराहम करने का फैसला किया है। जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ील के वज़ीरे ख़ारजा ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अलग IBSA मुज़ाकरात फोरम के दौरान मीटिंग में दहशतगर्दी को हरगिज़ बर्दाश्त न करने के अज़्म को दोहराया। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बहुत से इलाकों में हवा के दबाव के सबब मूसलाधार बारिश की वजह से तबाही हुई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says Vikasit Bharat can be realized only with the contribution of everyone, interacts with Seva Yatris under Seva Sankalp Abhiyan. Government decides to provide skill training to 70,000 rural youth under Deendayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana from next month. Foreign ministers of South Africa and Brazil condemn Pahalgam terror attack, reaffirm zero tolerance towards terrorism during IBSA Dialogue Forum meeting on the sidelines of UNGA. Heavy rain due to depression wreaks havoc in several parts of Odisha, Andhra Pradesh and Telangana. IMD says depression likely to weaken into low pressure area in next 12 hours. And in Asian Games, Indian duo Kamaljeet and Suruchi Singh win gold in mixed team 10-meter air pistol event in Nagoya, Japan. Prime Minister Narendra Modi has said Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colours of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colours of service.
4: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है. चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं. इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है. इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी.
3: The Prime Minister noted that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. Today, infrastructure in villages has improved considerably, while self-reliance among the women of the country has also increased. During the interaction, the Yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also urged the Yatris to maintain a diary and record their experiences during the Yatra. Prime Minister Narendra Modi today highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post, Mr. Modi said the initiative has led to more being made in India, more investment in India, and more exports from India. He noted that this transformation is visible across sectors. The Prime Minister said Make in India is about creating infrastructure, enterprise, and innovation that allow India to grow and prosper. Union Home Minister Amit Shah has said, despite global uncertainties, India has achieved a 7.8% growth rate and maintains its position as the fastest growing major economy. Inaugurating the Uttar Pradesh International Trade Show at Greater Noida this afternoon, Mr. Shah cited robust global indicators for India. He noted that Moody's has upgraded India's growth forecast, while Japan's JCR has elevated the nation's sovereign rating. Mr. Shah stated that the country is moving forward with the resolve of Viksit Bharat by 2047. He said exports have witnessed a manifold increase and there has been rapid progress in the semiconductor sector.
5: Uttar Pradesh aaj bhay mukt hokar nivesh ka kendra ban raha hai.
6: Uttar Pradesh is rapidly emerging as a major investment hub and one of the key drivers of India's economic growth. The state's transformation, driven by sustained reforms and the double engine government, that has significantly strengthened its economic potential and laid a strong foundation for its

0: This is Akashvani giving you the news.
1: For news on the go, follow us on X at AIR News Alerts and listen to AIR News on PB Shabd.
0: Welcome back to the Midday News. External Affairs Minister S. Jayshankar, along with South African Foreign Minister Ronald Lamola and Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira, has strongly condemned the Pahalgam terror attack and reaffirmed their commitment to zero tolerance for terrorism. The three ministers met under the IPSA Dialogue Forum at New York on the sidelines of UNGA yesterday and stressed their commitment to the UN Charter, international law and a stronger multilateral system. In a joint statement, the ministers called for comprehensive reform of the UN Security Council to make it more democratic, representative and reflective of contemporary realities. The IPSA ministers expressed concern over the impact of global conflicts on the global south, particularly through energy and food insecurity, inflation and fiscal pressures. Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi has said Iran has offered a seven-day plan to end the conflict in West Asia, reopen the Strait of Hormuz and resume talks on its nuclear program, according to a report in the New York Times. Mr. Araghchi said the proposal was conveyed to the United States through intermediaries and included certain conditions under which the Strait of Hormuz would reopen by the seventh day and nuclear talks would restart. He reiterated Iran's commitment to diplomacy while accusing the US and Israel of military aggression against Iran and criticizing European countries for failing to address alleged violations of international law. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy to extremely heavy rainfall over parts of Chhattisgarh and Odisha today due to the formation of a depression which lay over South Chhattisgarh and adjoining South Interior Odisha. The agency further said the depression would weaken into a well-marked low-pressure area during the next 12 hours. Under the influence of the depression, IMD has also issued an orange colour warning for very heavy rainfall for East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim and Vidarbha for the day. The depression over South Odisha is continuing to cause heavy rain across several parts of the state. Flood-like conditions have emerged in southern Odisha with rivers rising and road communication disrupted in several districts. More from our correspondent.
2: Heavy rain continues in several parts of southern and western Odisha under the influence of the weekend depression. Koraput, Raigada, Malkangiri, Ganjam, Navarangpur, Gajapati and Kalahandi remain among the most affected districts. According to the state government, rain-related impacts have been reported across dozens of blocks and villages, while more than 8,000 people have been shifted to safer locations. Road communication has been disrupted in many parts of southern and western Odisha. Flood conditions are also being monitored in northern Odisha. The Jalaka River at Mathani in Baleswar district is in a severe flood condition with several low-lying areas of Basta facing inundation. The India Meteorological Department has forecast continued rainfall in Odisha, although the weather system is gradually weakening. Authorities have kept disaster response teams on alert in vulnerable areas. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: At the Asian Games, Indian duo Kamaljeet and Surajit Singh won gold in the mixed team 10-meter air pistol event in Nagoya, Japan today. The pair shot 484.6 in the final to finish 6.6 points ahead of South Korea's Soo Hyun Hong and Geon Chu, who took silver with 478. Kamaljeet and Suruchi had topped the qualification with 587 points, including 29 inner tens. Indian men's and women's kabaddi teams have also entered the finals at the Asian Games after registering comprehensive victories in their respective semi-final matches. Indian squash players have assured themselves of three medals at the Asian Games, with Joshna Chinnappa and Velavan Senthil Kumar reaching the mixed double semi-finals, while Anahat Singh and Abhay Singh entered the last four in singles. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says Vikasit Bharat can be realized only with the contribution of everyone. Interacts with Seva Yatris under Seva Sankalp Abhiyan. Government decides to provide skill training to 70,000 rural youths under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana from next month. Foreign ministers of South Africa and Brazil condemn Pahalgam terror attack reaffirmed zero tolerance towards terrorism during IPSA Dialogue Forum meeting on the sidelines of UNGA. Heavy rain due to depression wreaks havoc in several parts of Odisha, Andhra Pradesh and Telangana. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटों में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
4: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
3: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
4: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
3: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक रिपोर्ट।
5: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और RSS के प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान अलग थलग रहकर नहीं किया जा सकता। श्री राधा कृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम के चौथे संस्करण के प्रतिभागियों से संवाद में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की विकास दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने ये बात कही। श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है।
6: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं। दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
3: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य देश में विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
3: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। नई दिल्ली में आज आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो रहा है। श्री नड्डा ने नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री मोबाइल ऐप और सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट एप्लीकेशन भी शुरू किए। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी।
8: ये रेलगाड़ी समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर और पीलीभीत सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस सेवा को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दे दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।
3: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोपों को गलत बताया है। अमृतसर में श्री मेघवाल ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है तो केरलम में कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई। श्री मेघवाल नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल होने के लिए अमृतसर में हैं। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
9: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
10: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
11: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
10: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त कराना है। आकाशवाणी से बात करते हुए उज्ज्वला योजना की ऐसी एक महिला लाभार्थी ने बताया,
12: मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं नागपुर जिला की रहवासी हूँ। उज्ज्वला योजना का मुझे गैस सिकड़ी का लाभ मिला है, जिससे मुझे अब खाना बनाने में समय की बचत होने लगी है। पहले मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी, जिससे पर्यावरण तथा मेरे आंखों को धुएं से तकलीफ होती थी। अब इस योजना के माध्यम से मुझे राहत मिली है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
10: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। प्रवासी लाभार्थियों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। वे परिवार और पते से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। योजना से घरेलू वायु प्रदूषण में कमी आई है और महिलाओं को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने में लगने वाले समय की भी बचत हुई है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
3: ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 36 घंटे में भी मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने उन्हें बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर आईबीएसए संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा अगले

0: 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्ते।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 2:30:16 और आप जानते हैं कि ये वक्त होता है आपके पसंदीदा प्रोग्राम, हम सबके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक ही कलाकार। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले सुनते हैं एक संदेश।
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
2: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
3: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
2: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
3: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों, जब भी हिंदी सिनेमा के सबसे स्टाइलिस्ट, बेबाक और डेशिंग कलाकार की बात होती है तो दिमाग में एक चेहरा आता है। सिर पर काउबॉय हैट, आंखों पर गॉगल्स, चेहरे पर रोबदार सिगार और हाथ में घुड़सवारी की लगाम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के उस काउबॉय के स्टाइलिस्ट शहंशाह के, जिनका आज जन्मदिन है। अब जो गीत उनका हम सुनवाएंगे, हमेशा की तरह आप पहचान ही जाएंगे कि आज हम किस सितारे को चुनकर लेकर आए हैं। तो फिर देर किस बात की, अपने जवाब तैयार रखिए क्योंकि हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। और आज प्रोग्राम एक ही कलाकार लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। और हमारे जो नए दोस्त हैं जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं, जिन्हें हमारे साथ हम सफर बनने का रास्ता नहीं पता, उनके लिए हम बता दें एक बार फिर से, हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। तो फिलहाल किशोर कुमार की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत सुनिए और पहचानिए कि आज हम किस सितारे को इस प्रोग्राम में लेकर आए हैं।

जी हाँ, कुछ इसी तरीके का जादू इनके चेहरे में भी है। बॉलीवुड के काऊ बॉय नाम से मशहूर फिरोज खान, जिनका आज जन्मदिन है, उन्होंने अपनी एक्टिंग के स्पेशल अंदाज के चलते अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपने डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। फिरोज खान के करियर में सबसे खास बात ये रही कि वो किसी खास किरदार के लिए फेमस नहीं हुए, उन्होंने कई तरह के किरदार निभाए। फिरोज खान का आज जन्मदिन है तो हम सब उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। 25 सितंबर 1939 को बेंगलोर में जन्मे फिरोज खान की एक्टिंग के आज भी कई दीवाने हैं। बूट, हैट, हाथ में रिवॉल्वर, गले में लॉकेट, कमीज के बटन खुले हुए, ऊपर से जैकेट और शब्दों को चबा चबा कर संवाद बोलते फिरोज खान को हिंदी फिल्मों का काऊ बॉय कहा जाता था। बॉलीवुड में फिरोज खान ने अपने करियर की शुरुआत 1960 में बनी फिल्म दीदी से की थी। वो अपनी फिल्मों में सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि खलनायक भी बने। साल था 1965, उनकी पहली हिट फिल्म ऊंचे लोग आई, जिससे फिरोज खान को पहचान मिलना शुरू हुई और उसके बाद अभिनय के लिहाज से उनके लिए 70 का दशक यादगार रहा। बहुत सारी फिल्में आदमी और इंसान जो 1970 में आई थी, इसमें अभिनय के लिए फिरोज खान को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का पुरस्कार मिला। 70 के दशक में उन्होंने आदमी और इंसान, मेला, धर्मात्मा जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया और 70 और 80 के दशक के बीच उनके निर्देशन में बनी धर्मात्मा, कुर्बानी, जावाज और दयावान बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई। सुनते हैं कुर्बानी से ये सुपरहिट गीत।

0: तुम्हारी।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही कलाकार, और आज जो हम सितारा चुनकर लेकर आए हैं वो है फिरोज खान। आपके साथ आज मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और हम सुन रहे हैं फिरोज खान के खूबसूरत, उनके ऊपर फिल्माए गए गीत।

0: 25 सितंबर 1939 को बेंगलोर में पैदा हुए सितारे जिनकी जिन्होंने कुर्बानी फिल्म से बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, उनके पिता अफगानी थे और माँ ईरान की रहने वाली थी। फिरोज खान 50 साल तक फिल्मों का हिस्सा रहे और कई हिट फिल्में उन्होंने दी। हीरोइन तक फिरोज खान पर फिदा थी और उनके साथ काम करने के लिए बेचैन रहती थी। 1960 में आई फिल्म घर की लाज से हिंदी सिनेमा में बतौर लीड एक्टर कदम इन्होंने रखा था और पहली हिट फिल्म के लिए इंतज़ार काफ़ी सालों तक करना पड़ा। फिर 1965 आया, फिल्म आई ऊंचे लोग। बतौर अभिनेता फिरोज की ये पहली सफल फिल्म थी, लेकिन उनको सबसे अधिक लोकप्रियता अगर किसी मूवी से मिली तो वो थी धर्मात्मा। जी हाँ, 1975 में रिलीज होने वाली फिल्म धर्मात्मा फिरोज खान की करियर की सबसे शानदार मूवी थी। फिल्म अपराध की सफलता के बाद भी धर्मात्मा में भी फिरोज खान ने निर्माता, निर्देशक और अभिनेता की तिहरी यानी कि तीन तीन जिम्मेदारी निभाई थी और इसमें हेमा मालिनी, रेखा, डैनी और प्रेमनाथ जैसे कलाकारों से ये फिल्म सजी हुई थी और लोगों के दिल में आज भी बसी हुई है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अभी आप जो गीत सुन रहे थे ये हमने लिया था फिल्म सफ़र से। अगला गीत हमने जो लिया है वो आप सुनिए, बहुत खूबसूरत सा गीत है, मुकेश की आवाज़।
1: दर्पण को देखा
0: फिल्म है उपासना।

दोस्तों, फिरोज खान सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर नहीं थे बल्कि एक दूरदर्शी फिल्म मेकर भी थे। जब उन्होंने अपने बैनर FK फिल्म्स के तहत फिल्में बनानी शुरू की तो बॉलीवुड को एक बिल्कुल नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिनेमा मिला। फिरोज खान का स्क्रीन प्रेजेंस इतना भारी होता था कि उनकी एंट्री पर ही थिएटर्स में सीटियाँ बजने लगती थीं। चाहे फिल्म जावांज हो, दयावान हो या फिर उनके करियर की आखिरी सुपर कॉमेडी फिल्म वेलकम हो, उनका निभाया गया RDX का किरदार आपको शायद याद होगा। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत मनहर की आवाज़ में।

जी दोस्तों, हम भी बहुत खुश नसीब हैं कि हमें आपका प्यार मिल रहा है। ढेर सारे संदेश आपके हम तक पहुंच गए हैं और अब उन संदेशों को हम शामिल कर लेते हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्ला बख्श, बेगम राबिया शेख रहीम मुंडा जी हमारे साथ हैं। नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद पराग जी पलारी छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं। पिपरिया से कमलकांत दीपा जी हमारे साथ हैं। देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार जी, डोंजी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत भापसर जी प्रमीला जी के साथ हमारे साथ वीरंगाव गुजरात से जुड़े हैं और उन्होंने बहुत बेहतरीन जानकारी हम तक पहुंचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका। ये संदेश हमारे पास आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद जी का आया है और इसके बाद गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन दिल्ली और शालीमार्ग से अशोक कुमार सहगल हमारे साथ हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये संदेश सुदर्शन मुखी अनीता सिमरन जी का शांतिनगर सोनीपत से आया हुआ है। मेरठ से कविता और दिग्दर्शन गौड़ हमारे साथ हैं और ये हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवानगन, कौशल्या और हेमलता डिम्पल देवानगन प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। और ये संदेश ये संबलपुर काकेर से पहुंचाया है फागुन राम यादव ज्योति ओजस्वी जी ने। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता जुड़े हुए हैं। भटिनखेड़ा पंजाब से विंची टोमस, पिंकी लवली, आरती हमारे साथ हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा जी जुड़े हुए हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार जी हमारे साथ हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया जी हमारे साथ एंजल सोनू जी के साथ स्टेशन रोड जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। दिग्दर्शन गौड़ जी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। भबलपुर बसना से राधेश्याम चंपा जी हमारे साथ हैं। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह अनुभव ऋषभ जी हमारे सुन रहे हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय निंगे नमन अपार जी हमें सुन रहे हैं और घनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी नौशाद बेबी आलिया हमारे साथ हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैदाबासी निगत परवीन श्रीनिवास सरफराज फरदान और परिवार के सभी सदस्य हमें सुन रहे हैं। कुछ और भी संदेश हैं जिन्हें हम कुछ देर में शामिल

रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, गेंदलाल और कृष्ण कुमार जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हमारे प्रोग्राम को सुनकर आनंद ले रहे हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, चिलू नायक और मधु नायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप जी के साथ, और ये है मॉडल टाउन करनाल से। उसके बाद अगला जो संदेश है ये साहिल डार उर्फी जान जी का श्रीनगर कश्मीर से आया हुआ है। मुकेश गोस्वामी, मधु, आशी जी उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं, मोहाली चंडीगढ़ से गुरप्रीत सिंह तंगोरी जसवीर और साहित प्रीत जी हमारे साथ हैं। अमरपुर पेंड्रा से बंशीलाल श्रीवास्तव, दीपक जी हमें सुन रहे हैं। आनंद पर्वत दिल्ली से लखपत राज, सूबेदार अमर सिंह, वेद प्रकाश चौहान हमारे साथ हैं। बिहार से नूई खान, बली मोहम्मद, खातिजा बेगम हमारे साथ हैं। दिनेश काले जलगांव जंक्शन से हमारे साथ हैं। और उसके बाद जो संदेश है वो थोड़ा सा रिपीट है। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आज का ये सफ़र आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिरोज खान जी के ऊपर जो जानकारी दी और जो गीत हैं वो आपके दिल में ज़रूर समाए होंगे, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है क्योंकि 3 बजे आपका पसंदीदा प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज़ भी तो आपको सुनना है ना, और मैं आपके साथ रहूँगी इसमें। तो अब हम आपको एक खूबसूरत सा गीत सुनवार के साथ इस प्रोग्राम से विदा ले रही हूँ, लेकिन 3 बजे मैं चाहूँगी कि इतना ही प्यार जितना आपने इस प्रोग्राम में मुझे दिया है उतना ही प्यार उस प्रोग्राम में भी आप मुझे दें। तब तक के लिए अनुमति इस प्रोग्राम से यानी कि एक ही कलाकार से, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का हिंदी प्रस्त चैनल है। दोपहर के 3 बज चुके हैं। आइए अब आनंद लेते हैं प्रोग्राम मैचिनी मेलोडीज का।

0: घर के सामने।
1: जी हाँ, कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त की धूल भी धुंधला नहीं पाती। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो बरसों बाद भी कानों में पड़ते ही दिल को उसी दौर में ले जाती हैं। कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही लगता है जैसे रेडियो की पुरानी आवाज, सिनेमा हॉल की वो रोशनी और पर्दे पे चलते श्वेत श्याम यानी कि ब्लैक एंड वाइट दृश्य फिर हमारी सामने जीवित हो उठे हैं। आज का सफर कुछ ऐसा ही है जब हम चलेंगे हिंदी सिनेमा के उस स्वर्णिम दौर की ओर, जब फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थीं बल्कि समाज, रिश्तों, सपनों, संघर्षों और इंसानी भावनाओं का आईना हुआ करती थीं। वो दौर था, एक सुनहरा दौर था जिसे हम और आप कभी भी भुला नहीं सकते हैं। तो आज इस प्रोग्राम को लेकर यानी कि मैचिनी मेलोडीज को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि उस स्वर्णिम दौर की आपकी पसंदीदा फिल्में कौन कौन सी थी। जवाब भेजने का तरीका आपको पता ही है, मेल के जरिए। मेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। तो हमें इंतज़ार है कि आपकी पसंदीदा फिल्म उस दौर की कौन कौन सी थी।

स्वर्णिम दौर में आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी थी। सुदर्शन मुखी नेता सिमरन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं जी। प्रोग्राम की तो अभी शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए बहुत खूबसूरत से गीत आपके सामने आएंगे। फिलहाल हम आपको सुनवाएंगे अब अगला जो गीत है वो हमने लिया है फिल्म आर आर और पार, शमशाद बेगम की आवाज़ में। इंतज़ार है आपके जवाबों का।

1950 का दशक स्वतंत्रता के बाद बदलते भारत का दौर था। देश नई उम्मीदों और नई चुनौतियों के बीच अपनी पहचान बना रहा था और उस समय की फिल्मों में आम आदमी, गरीबी, शहर, सपने और सामाजिक असमानता जैसे विषय दिखाई देने लगे। आवारा, श्री 420, दो बीघा जमीन, प्यासा और मदर इंडिया जैसी फिल्मों ने लोकप्रिय सिनेमा को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा। आपके संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, उनको भी हम बीच बीच में लेते जा रहे हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा और रिमझिम गुप्ता जी हैं। कमलकांत जी, आपने बताया नहीं हमें कि आपको उस दौर की कौन कौन सी फिल्में बहुत पसंद हैं। अगला संदेश हमारे पास रोशन जी का आया है, ये बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हमारे साथ कौशल्या और डिम्पल जी के साथ जुड़े हुए हैं। लिख रहे हैं कि हमारे दौर की फिल्में भी क्या हुआ करती थीं, कहानी में अपनापन, किरदारों में सादगी और गीतों में दिल की आवाज़ हुआ करती थी। शोले, अमर अकबर, एंथनी, डॉन, मुकद्दर का सिंगर, सिकंदर कभी, सिलसिला, अभिमान, आनंद, ये जो आपने नाम लिए हैं ना, ये गोल्डन इरा के नहीं है, ये उसके बाद के हैं। लेकिन हाँ, हम अगर अब 2026 में पहुंच गए तो हम उन फिल्मों को भी उसमें ही शामिल कर सकते हैं एक कुछ परसेंट तक। और लिखते हैं कि उन फिल्मों के गीत बजते ही लगता है जैसे बीते दिनों की गलियों में।

0: हम फिर से लौट आए हों। वो सिनेमा सिर्फ पर्दे पर कहानी नहीं दिखाता था, बल्कि हमारी जिंदगी के किस्सों को भी गीत संगीत के साथ जोड़ देता था। सच कहें तो हमारे दौर की फिल्में पुरानी जरूर हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी बिल्कुल नई हैं। एक गीत बजता है तो पूरा जमाना आंखों के सामने मुस्कुराने लगता है। वाह, कितनी खूबसूरत सी बात आपने लिखकर भेजी है, दिल को छू गई। अगला संदेश देवशंकर तामुरी, अजय देव और तुषार जी का, डॉली बेबी पूजा जी का हमारे पास आया है, डोंजी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। लिखते हैं कि मेरे सदके बलम न कर कोई गम, ये मेरा पसंदीदा गीत है अमर फिल्म का। कोशिश करेंगे कि इस गीत को हम शामिल कर सके। ये संदेश पहुँचा है मोहाली चंडीगढ़ से गुरमीत सिंह तंगूरी, जसवीर कौर, महिक प्रीत और सहिज प्रीत जी का। अगला संदेश हमारे पास किसका आया है जरा देखते हैं। कुछ संदेश हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो इंतज़ार करते हैं कुछ और संदेशों का। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन रिकेस्टो रोजी पर्ल जी लिख रहे हैं कि हमें किसी भी गीत में शामिल करिए। जी, हमने तो आपको हर गीत में शामिल कर लिया है। अजीत भापसर जी, आप बिरनगांव गुजरात से प्रमिला जी जी के साथ हैं, लिख रहे हैं कि मैटिनी मेलोडीज़ में पहला गाना तेरे घर के सामने फिल्म, उसके बाद आर पार, ये जो सॉन्ग्स हैं ये बहुत मधुर गीत हैं, जिन्हें गीता दत्त, शमशाद बेगम, आशा जी की आवाज़ों के जो गीत हैं वो बहुत खूबसूरत से गीत है। बिल्कुल आपने सही बात कही। अगला गीत जो है वो भी आप सबका इंतज़ार कर रहा है, जिसे हमने लिया है फिल्म आहा से और आवाज़ है लता जी की।
1: तुम्हारे हाथों में मेहंदी रचेगी, तुम्हारी मुरादें भर आएंगी, तुम्हारे सपने सच्चे हो जाएंगे। उस दिन दीदी

दोस्तों, उस समय की फिल्मों में कहानी का बहुत महत्व होता था। फिल्म चाहे प्रेम कहानी हो, सामाजिक कहानी हो, ऐतिहासिक कथा हो या फिर पारिवारिक कहानी हो, उसमें भावनाओं की एक मजबूत जमीन जरूर होती थी। बिमल रॉय ने 2 बीघा जमीन जैसी फिल्मों में किसान और मजदूर की जिंदगी को संवेदनशीलता के साथ सामने रखा था। गुरुदत्त ने प्यासा और कागज के फूल के जरिए कलाकार, समाज और इंसानी संवेदनाओं को अलग अंदाज में देखा था। वहीं राज कपूर की फिल्मों में आम आदमी के सपने और शहर की चमक के पीछे छिपी मुश्किलें दिखाई देती थी, और महबूब खान की मदर इंडिया ने भारतीय ग्रामीण जीवन, संघर्ष और जो मातृत्व है उसको बड़े कैनवास पर उतारा था। लता जी की आवाज में फिल्म अमर से ये गीत।

मेरठ से कविता और दिग्दर्शन गौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं कि ये सवाल तो धर्म संकट वाला है कि हमें ब्लैक एंड व्हाइट के ज़माने में कौन सी फिल्म पसंद है। जी हाँ, धर्म संकट वाला तो है ही, क्योंकि एक से एक नायाब फिल्में थी उस दौर में। किसको चुने, किसको छोड़ें, कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कोशिश तो करी जा सकती है ना, तो कोशिश करके देख लीजिए। ऊपर कोच मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान, परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु आशीष वन्या जी कहते हैं कि पुराने जमाने की फिल्म में लगता था कि हमारी संस्कृति झलक रही है, पहनावा और सादगी, और जो गीत सुनने को बार बार मन करता था, जैसे फिल्म यहूदी, सास भी कभी बहू थी, दुल्हन एक रात की, ये सभी फिल्मों को बार बार देखने का मन करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बीरनगांव गुजरात से अजीत भापसर जी कहते हैं कि आज के मैटिनी मेलोडीज़ का पहला गाना से लेकर अभी तक के जो गीत हैं वो सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, और फिरोज़ खान का जो प्रोग्राम था वो भी बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आपका, आप सबके ही सुझावों से हम अपने आप को और निखारने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी जी लिख रहे हैं बुलंदशहर से कि गोल्डन इरा यानी सिनेमा का वो सुनहरा दौर जिसकी चमक आज भी दिलों में कायम है। मुगले आजम, गाइड, आराधना, आनंद अमन, अमर प्रेम, कटी पतंग, शोले, पाकीजा, पड़ोसन जैसी कई जो फिल्में हैं वो सिर्फ पर्दे पर कहानी नहीं सुनाती बल्कि हमारी यादों में एक पूरा दौर बसा देती हैं। उस जमाने की फिल्मों में कहानी थी, अभिनय थी, रिश्तों की मिठास थी, और सबसे बढ़कर ऐसे गीत थे जो आज भी कानों से होते हुए सीधे दिल तक पहुंचते हैं। मुगले आजम का शाही अंदाज हो या गाइड की भावनात्मक कहानी, आनंद की जिंदगी जीने की सीख हो या शोले की दोस्ती, हर फिल्म अपने आप में यादगार अध्याय है। सच कहें तो वो दौर सिर्फ गोल्डन इरा नहीं बल्कि हमारे यादों का एक सुनहरा पन्ना था जिसे जितनी बार पलटिए उतनी ही नई खुशबू आती है। रेडियो पर जब इन फिल्मों के गीत बजते हैं तो लगता है जैसे वक्त की सुइयां पीछे घूम गई और हम फिर उसी खूबसूरत दौर में पहुंच गए। पुरानी फिल्में पुरानी ज़रूर हैं लेकिन उनका जादू आज भी बिल्कुल नया लगता है। वाह, बहुत खूबसूरत सी बात आपने लिखी है, बिल्कुल मेरे दिल की बात जैसे। सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत मन्ना डे की आवाज़ में।

आपके संदेश भी हम तक पहुंच रहे हैं। हर दिन हो मंगल, हर पल हो खास, जीवन में बना रहे अपनों का विश्वास, ये लिखते हैं हमें मास्टर अशोक कुमार वर्मा जी। और अशोक जी, आपने हमें ये नहीं लिखा कि हमारा जो गोल्डन इरा है उसमें आपका आपकी जो फेवरेट फिल्में हैं वो कौन सी हैं। हालांकि हम जानते हैं कि इनको चूज़ करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश की जा सकती है, कोशिश करके देखिएगा। अगला संदेश हमारे पास आया है, ये है असलम खान जी, रेशमा खान, इनकी पोती है जर्शीम, ये बिजनौर से लिख रहे हैं हमें और लिख रहे हैं कि सारा काम छोड़कर हम रेडियो प्रोग्राम सुनते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें वक्त देते हैं। अगला संदेश हमारे पास पहुंचा है उत्तम कुमार भगत जी का, ये श्वेता भगत किसू तासु जी के साथ पांकुण झारखंड से हमें सुन रहे हैं। तो अब हम आपसे यही कहेंगे कि वक्त तो वैसे कम है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो बता सकते हैं कि ये गोल्डन इरा में आपकी पसंदीदा फिल्म कौन कौन सी थी। लिस्ट अगर आप अभी नहीं बना पाए कोई बात नहीं, हम और आप मिलेंगे दोबारा से सोमवार वाले दिन, नोट कर लीजिए 28 तारीख को एक बार फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी, तब अधूरी बातें हम पूरी करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है कि आपसे अनुमति लेनी है और एक खूबसूरत सा गीत भी इंतज़ार कर रहा है जिसे हमने लिया है फिल्म खामोशी से, और अगला गीत जो है वो लिया है फिल्म सीमा से। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि कौन सा गीत आप तक पहुँचाऊँ, तो चलिए एक काम करती हूँ, फिल्म खामोशी का गीत आप तक पहुँचा देती हूँ और अगली बार जो गीत बचे हैं उनको भी आप तक पहुँचाऊँगी। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अपना ध्यान रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और सोमवार को फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए ये प्रेम यूं ही बनाए रखिए, अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। दोपहर के 3:30 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 4 बजने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों, ITI प्रशिक्षुओं, पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों तथा कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रमुख विचारक और समाज सुधारक थे जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया था। और एशियाई खेल खबरों के साथ हैं सौरभ अग्रवाल।
3: एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में आज मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया। दक्षिण कोरिया को रजत और ईरान को कांस्य पदक मिला। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस की टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। कबड्डी में भारत की पुरुष टीम ने थाईलैंड को 66-28 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। मुक्केबाजी में सचिन सिवाच ने जॉर्डन के मोहम्मद अदनान अबू को हराकर पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी ने मालदीव के अहमद दिबाल और अब्दुल रजाक को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा ने पहले दौर में कोरिया की सोंग यू मी को पराजित किया। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर निशानेबाजों को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कद है 5 फुट। इन्होंने पीला सूट, चॉकलेटी सलवार और पैरों में चप्पल पहनी हुई है। ये ग्राम अमर सिंह पुर थाना परीक्षितगढ़ मेरठ यूपी से लापता है। अगली गुमशुदा व्यक्ति का नाम है मनु। ये पत्नी है मोनू की। मनु की उम्र है 26 साल। ये स्त्री हैं। कद है 5 फुट, शरीर सामान्य। ये लोहिया नगर जनपद मेरठ यूपी से लापता है। अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है सानिया। पुत्री सफीक अहमद। सानिया महिला हैं। इनकी उम्र है 22 साल। कद है 5 फुट 5 इंच, शरीर सामान्य। श्रोताओं, इनके बाई भाव पर कट का निशान है। इनके बारे में कोई भी सूचना देने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। सानिया ग्राम मुरलीपुर गुलाब कंकरखेड़ा मेरठ से लापता है। खुशी, इनकी उम्र है 19 वर्ष। ये महिला हैं। कद है 5 फुट 2 इंच, ये मेरठ से लापता है। गुमशुदा व्यक्तियों में अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है पिंकी। पत्नी राम कुमार। पिंकी महिला हैं। इनकी आयु है 35 वर्ष। कद है 5 फुट, शरीर पतला, रंगे हुआ है। ये 25 अगस्त 2026 को ग्राम शहवाजपुर भालखुज जनपद बुलंदशहर से लापता है। अगली गुमशुदा व्यक्ति का नाम है रजनी। पत्नी राधेश्याम। रजनी की उम्र है 32 साल। कद है 5 फुट 2 इंच, शरीर 11 है, रंगे हुआ। ये 27 जुलाई 2026 को नगला बंजारा बुलंदशहर से लापता है। अंतिम गुमशुदा व्यक्ति का नाम है कार्तिक। पुत्र ब्रजेश गुप्ता। कार्तिक की उम्र है 18 वर्ष 9 माह। कद है 5 फुट 6 इंच। आंख का नाक औसत है। शरीर है पतला। इनका रंग गेहूं है। ये 29 अगस्त 2026 को सिकंदराबाद बुलंदशहर से लापता है। श्रोताओं, इन गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर अपने नज़दीकी पुलिस थाने या फिर निशुल्क टोल फ्री नंबर 112 यानी कि 112 पर डायल करें और इन गुमशुदा व्यक्तियों से जुड़ी सूचना साझा करें। अभी आप गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम यूवाणी।

स्क्रीन पे रोशनी हो या रेडियो की तरंग, हर किस्से में छुपा होता है जिंदगी का रंग। कहानियाँ कभी हंसाती हैं तो कभी रुला भी जाती।

0: हैं पर हर बार दिल के किसी कोने को छू ही जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं देवांश।
1: और मैं हूँ प्रज्ञा। सभी युववाणी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। देवांश, आज शुक्रवार है, यानी वीक का वो दिन जब सबकी एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि वीकेंड बस दरवाजे पर ही है।
0: बिल्कुल सही कहा, इसे ही तो कहते हैं फ्राइडे फीलिंग,
1: तो चलिए आज के इस खास सफर की शुरुआत करते हैं।
0: जहां हर पल में होगा एंटरटेनमेंट, थोड़ा म्यूजिक और ढेर सारी बातें।
1: कभी कभी मन बस एक ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ ना कोई दुख हो ना शिकायत, सिर्फ प्यार और सुकून हो। ऐसे ही एक आसमान के नीचे ले चलने की बात करता है ये गाना। किशोरदा की आवाज़ में सुनिए आ चल के तुझे।

0: श्रोताओं, समय हो गया है हमारे आज के पहले सेगमेंट टुडेज टॉक का। देवांश, आज सुबह से मोहल्ले में ढोल नगाड़ों की जो आवाज़ें आ रही हैं, ऐसा लगता है आज कुछ खास दिन है।
1: बिल्कुल प्रज्ञा, आज है गणेश विसर्जन का दिन। और सच कहूँ तो ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि पूरे 10 दिनों की भावनाओं का एक इमोशनल क्लाइमैक्स है। गणपति बप्पा मोरया पुण्यावर्षी लव करया, ये नारा जब गलियों में गूंजता है तो एक अलग ही जोश और साथ में एक हल्की उदासी भी महसूस होती है।
0: सही कहा देवांश, और ये त्यौहार सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, आज ये पूरे देश में, इनफैक्ट विदेशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मुझे तो हर साल मुंबई के गणेश विसर्जन के वो विजुअल्स देखना बहुत पसंद है, जहाँ लाखों लोग गिरगांव चौपाटी पर इकट्ठा होते हैं।
1: हाँ, और इसमें भी लाल बागचा राजा का जो पंडाल है वो तो हर साल न्यूज़ में छाया रहता है। सुना है वहाँ लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं बप्पा के दर्शन के लिए।
0: बिल्कुल, और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी भी है। कहते हैं कि गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने की शुरुआत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी सन 1893 में। उस वक्त अंग्रेज़ों ने लोगों को इकट्ठा होने पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थीं, तो तिलक जी ने इस त्यौहार को एक ऐसा मंच बना दिया जहाँ लोग धर्म की आड़ में इकट्ठा होकर स्वतंत्रता की बातें कर सकें।
1: वाह, ये तो सच में बहुत खूबसूरत बात है कि एक त्यौहार कैसे समाज को जोड़ने का और जागरूकता फैलाने का जरिया बन गया है। और प्रज्ञा, विसर्जन के पीछे की जो फिलॉसफी है वो भी बहुत गहरी है ना?
0: एकदम सही कहा देवांश, कहा जाता है कि मिट्टी से बनी गणेश जी की मूर्ति का पानी में विसर्जित होना दरअसल जीवन के एक बहुत बड़े सत्य को दर्शाता है। जो आया है उसे एक दिन जाना है, यानी सृजन और विसर्जन का चक्र। बप्पा हमारे घर आते हैं, हमारी खुशियाँ, हमारे सुख दुख सब बांटते हैं और फिर वापस उस पंच तत्व में मिल जाते हैं जिनसे उनकी रचना हुई थी।
1: बहुत गहरी बात है ये। और आजकल तो लोग इको फ्रेंडली गणेश विसर्जन को लेकर भी बहुत जागरूक हो गए हैं। मिट्टी की मूर्तियाँ, घर पर बकेट में ही विसर्जन, ये सब ट्रेंड अब काफ़ी पॉपुलर हो रहा है।
0: हाँ, और ये सच में ज़रूरी भी है, क्योंकि हमें त्यौहार मनाना है पर हमारी नदियाँ और समुद्र का भी ख्याल रखना है। वैसे देवांश, मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। कहते हैं कि जब भी विसर्जन का जुलूस निकलता है तो लोग बप्पा से अगले साल फिर आने का वादा मांगते हैं, इसलिए ही तो कहा जाता है पुण्यावर्षी लव करया, यानी अगले साल जल्दी आना।
1: सही कहा, और यही तो इस त्यौहार की सबसे प्यारी बात है। विदाई में भी एक उम्मीद, एक वादा छुपा होता है। तो दोस्तों, आज जब भी आप अपने आसपास ढोल की थाप सुने तो एक पल के लिए ठहरिए और इस त्यौहार को, उस गहराई को महसूस करिए जो हमें सिखाती है कि हर अंत में भी एक नई शुरुआत छुपी होती है।
0: बिल्कुल, तो यहीं से हम आगे बढ़ते हैं बप्पा को समर्पित हमारे अगले गाने की ओर।

0: वंश कुछ सपने आँखों में जन्म लेते हैं, लेकिन उन्हें मंजिल तक पहुँचाने के लिए हौसले की ज़रूरत होती है।
1: बिल्कुल प्रज्ञा, और जब हौसला मजबूत हो तो छोटे कस्बे की गलियों से निकली उड़ान ऑक्सफोर्ड तक पहुंच सकती है और फिर देश सेवा की राह चुन सकती है।
0: आज मन से माइक्रोफोन तक में हम ऐसे ही एक प्रेरक कहानी लेकर आए हैं, एक बेटी की जिसने मुश्किलों को पीछे छोड़ा और अपने सपनों को नई पहचान दी।
1: यह कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कुंदरकी की बेटी इल्मा अफरोज की।
0: लेकिन इस कहानी की शुरुआत आसान नहीं थी, है ना?
1: बिल्कुल नहीं, जब इल्मा सिर्फ 14 साल की थी तब उनके किसान पिता का निधन हो गया। उनकी माँ ने अकेले इल्मा और उनके भाई की परवरिश की। परिस्थितियाँ कठिन थीं, लेकिन पढ़ाई और बड़े सपनों का सिलसिला नहीं रुका।
0: फिर एक छोटे से कस्बे की लड़की दिल्ली तक कैसे पहुंची?
1: अपनी मेहनत से इल्मा ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से फिलॉसफी में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अवसर मिला। उन्होंने विदेश में पढ़ाई की और काम का अनुभव भी हासिल किया।
0: यानी उनके सामने विदेश में करियर बनाने के भी रास्ते खुल गए थे।
1: हाँ, लेकिन इल्मा के मन में अपने देश और अपने लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा बनी रही। आखिरकार उन्होंने भारत लौटकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का फैसला किया।
0: और फिर आया वो दिन जब मेहनत ने परिणाम दिया।
1: बिल्कुल, 2017 की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इल्मा ने 217वीं रैंक हासिल की और इंडियन पुलिस सर्विस के लिए चयनित हुई।
0: मुझे उनकी एक बात बहुत

0: याद आती है, यूपीएससी में रैंक पता चलने पर उन्होंने कहा था, जय हिंद।
1: हाँ, और शायद यही उनकी पूरी यात्रा का सार है। एक ऐसी लड़की जिसने संघर्षों से निकलकर दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों तक पढ़ाई की, लेकिन अंततः अपनी शिक्षा और अनुभव को देश की सेवा से जोड़ने का चुना।
0: तो आज की ये कहानी हमें क्या सिखाती है?
1: कि मंजिल हमेशा परिस्थितियां तय नहीं करती, कभी-कभी परिस्थितियां रास्ता कठिन जरूर बना देती हैं, लेकिन सपना, मेहनत और उद्देश्य उस रास्ते को बदल सकता है।

0: दिस इज अवर वीकली सेगमेंट जहां हम सिनेमा और एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी खास बातें आपके सामने लेकर आते हैं।
1: प्रज्ञा, 25 सितंबर इंडियन सिनेमा के लिए बहुत खास दिन है।
0: अच्छा, ऐसा क्या हुआ था इस दिन?
1: इस दिन 1957 में महान फिल्मकार सत्यजीत रे की फिल्म अपराजिता ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लायन जीता था।
0: यानी दुनिया ने एक इंडियन फिल्म मेकर के सिनेमा को पहचाना?
1: बिल्कुल, सत्यजीत रे सिर्फ डायरेक्टर नहीं थे, वो स्टोरी टेलिंग का एक अलग ही अंदाज थे।
0: उनकी फिल्मों में आम इंसान और उसकी ज़िंदगी इतनी खास तरीके से दिखाई जाती है।
1: सही कहा, पाथेर पांचाली, अपराजितो और अपूर संसार जैसी फिल्मों ने इंडियन सिनेमा को दुनिया तक पहुंचाया।
0: और ख़ास बात यह है कि उनकी कहानियां बिना बड़े ग्लैमर के भी लोगों के दिल तक पहुंची।
1: यही सत्यजीत रे की ताकत थी, साधारण जिंदगी को असाधारण सिनेमा में बदल देना।
0: तो 25 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, इंडियन सिनेमा की वर्ल्ड रिकॉग्निशन की कहानी भी है। सत्यजीत रे ने हमें सिखाया कि कहानी का बड़ा होना ज़रूरी नहीं, सच्चा होना भी ज़रूरी है। एक गांव, एक परिवार, एक छोटा सा बच्चा और उसकी आंखों में दुनिया का वो अचरज, यही उनका सिनेमा था। और जब वो कहानी सरहदों के पार पहुंची, तो दुनिया ने माना कि हमारी मिट्टी की खुशबू किसी भी भाषा में समझी जा सकती है।
1: तो इसी हिंदुस्तानी दिल और दुनिया भर में गूंजी हमारी पहचान के नाम सुनते हैं मेरा जूता है जापानी।

हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। मेरी तरफ देखिए, मेरे लिबास का मुआयना कीजिए, मेरे जूते हैं जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। समझे ना भाई लोग, अपने पास एक ही चीज सोलह आने स्वदेशी है और वो है मेरा हिंदुस्तानी दिल।

0: दोस्तों, अब बात करते हैं आज के टुडे इन हिस्ट्री सेगमेंट की।
1: और आज है 25 सितंबर, एक ऐसी तारीख जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज ही के दिन दुनिया को मिले एक बेहतरीन एक्टर जिसने अपने चार्म और टैलेंट से पूरी दुनिया को दीवाना बनाया, विल स्मिथ। इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1968 को फिलाडेल्फिया में। फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर से लेकर मैन इन ब्लैक और इंडिपेंडेंस डे तक विल स्मिथ ने हर जॉनरा में अपनी छाप छोड़ी है।
0: कुछ विचार किताबों में नहीं रहते, वो हमारे भीतर एक बेचैनी जगा देते हैं, कुछ कर गुजरने की खलबली।
1: तो चलिए अब उसी के जोश में एक गाना सुनते हैं। आज हम सुनेंगे खलबली फिल्म रंग दे बसंती से, जिसके संगीतकार हैं AR रहमान और गीतकार प्रसून जोशी। सवाल पूछने और कुछ बदलने की उस बेचैनी को समर्पित है ये गाना।

0: 25 सितंबर है और आज ही के दिन 1916 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था।
1: जी हाँ, मथुरा ज़िले के एक छोटे से गांव नगला चंद्रभान में बचपन बड़ा ही मुश्किल रहा उनका। कम उम्र में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया था।
0: बिल्कुल, नाना नानी और मामा के घर पले बड़े, लेकिन पढ़ाई में इतने तेज थे कि लगातार स्वर्ण पदक जीतते रहे, स्कॉलरशिप पर स्कॉलरशिप मिलती रही।
1: दीनदयाल उपाध्याय एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक विचारक भी थे। उन्होंने एकात्म मानव दर्शन नाम का एक सिद्धांत दिया।
0: ये समझाओ जरा, ये क्या है?
1: दरअसल उनका मानना था कि इंसान को शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों स्तर पर एक साथ देखा जाना चाहिए। यानी सिर्फ आर्थिक विकास काफ़ी नहीं, समाज और संस्कृति का भी उतना ही ध्यान रखना ज़रूरी है। उन्होंने इसे पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का एक भारतीय विकल्प बताया था।
0: दोस्तों, इसी सोच से निकला है अंत्योदय का विचार भी, यानी समाज के सबसे आखिरी और सबसे कमज़ोर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। उनकी याद में मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया और 1991 में उन्होंने मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया।
1: एक साधारण से गांव से निकलकर एक ऐसी विचारधारा गढ़ने तक जो आज भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है, यही थी दीनदयाल उपाध्याय जी की कहानी।
0: बिल्कुल, और अब बात करते हैं आज के गाने की।
1: आज हम आपको सुनाएंगे किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार फिल्म अनाड़ी से, जिसके संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। दूसरों के काम आने और उनके दर्द को अपना समझने की भावना पर बनाया ये गाना दीनदयाल जी के अंत्योदय के विचार से कहीं ना कहीं मेल खाता है।

0: देवांश, आज तो ना घर जाके मेरा ढेर सारे मोदक खाने का प्लान है।
1: अच्छी बात है, प्रायोरिटीज क्लियर हैं तुम्हारी।
0: हाँ बिल्कुल क्लियर है। वैसे देवांश, तुम्हें कौन सा त्योहार पसंद है?
1: मुझे तो सारे ही त्यौहार पसंद हैं, मगर नवरात्रि मेरे दिल के ज़्यादा करीब है।
0: बहुत अच्छी बात है, पर क्या मैं पूछ सकती हूँ ऐसा क्यों?
1: शायद इसलिए प्रज्ञा, क्योंकि बचपन से मैंने अपनी माँ को नवरात्रि के व्रत करते देखा है। प्रज्ञा, तुम होगी माँ की लाडली, मेरी माँ मेरी लाडली हैं।
0: देवांश, माँ ना सबकी लाडली ही होती हैं। तुमने ऐसा अलग क्या किया है अपनी माँ के लिए?
1: प्रज्ञा, जब मेरी माँ की शादी हुई वो 12th तक ही पढ़ी थी। फिर लॉकडाउन के दौरान मैंने उन्हें ग्रेजुएशन करने के लिए मोटिवेट किया और उन्होंने हिंदी ऑनर्स में फर्स्ट डिवीजन से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की।
0: वाह देवांश, तुम्हारी इस पहल की मैं दिल से सराहना देती हूँ। वहीं समाज का एक पहलू ये भी है कि हम रोज़ खबरों में या अपने आसपास भी किसी ना किसी की बेटी के साथ होने होती अन्याय की बातें सुनते ही रहते हैं। पर जितना गंभीर ये वेमेन सेफ्टी का मुद्दा है, ज़रूरी नहीं कि एक ही इंसान को इसकी जिम्मेदारी उठानी हो। अगर अपने आसपास की महिलाओं का सम्मान करें, उनका साथ दें और ज़रूरत पड़ने पर उनके लिए आवाज़ उठाएं, तो यही समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: बिल्कुल प्रज्ञा, चुनौतियाँ अपनी जगह हैं लेकिन उम्मीद भी उतनी ही ज़रूरी है। हाल के एशियन गेम्स में हमारी महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर कई पदक जीते और देश का नाम रोशन किया। यही उम्मीद है, हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हमें बस उनके सपनों को सम्मान रखना और उनका साथ देना चाहिए।

0: दोस्तों, आज के इस खूबसूरत सफ़र को यहीं समेटते हैं। आज हमने बात की गणेश विसर्जन की, उस भावनात्मक कहानी की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय वाले विचार की।
1: उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव और फीडबैक हमें भेज सकते हैं yuvvanifeedback@gmail.com पर, yuvvanifeedback@gmail.com पर। आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अब हमें दीजिए अनुमति। मैं प्रज्ञा।
0: मैं देवांश।
1: नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा में आज उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यवहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में पर्याप्त तरक्की हुई है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के विद्यार्थियों के एक समूह से मुलाकात की। वे राष्ट्रीय एकता यात्रा के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन आए थे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रमुख विचारक और समाज सुधारक थे जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर आज पुणे में गणेश प्रतिमा विसर्जन की शोभा यात्राएं निकाले जा रही हैं। शोभा यात्राओं को देखने और गणपति के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। मानु शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत 2 स्वर्ण, 8 रजत और 11 कांस्य समेत 21 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi has said that Vikasit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction today with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colours of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service.
2: हमे आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
3: During the interaction, these Yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also urged the Yatris to maintain a diary and record their experiences during the Yatra.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: देखिए सुनील भाई, आज 10वां दिन है गणेश महोत्सव का, और जिस उत्साह के साथ गणेश जी का स्वागत किया था, वैसे ही जय बप्पा के, गणपति बप्पा मोरया के जयकारे के साथ ही आज विदाई का भी दिन आ गया है।
0: बिल्कुल, देखिए वैसे हमारा देश त्योहारों का देश है, भाई वर्ष भर में हमने एक त्योहार और पर्व मनाते हैं, तो आज हम गणेश विसर्जन पर्व मना रहे हैं, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं सबसे पहले।
1: बिल्कुल
0: और जैसा कि आपने बताया कि भाई गणेश विसर्जन का अर्थ भगवान गणेश की प्रतिमा को जल में विसर्जित करना, और

0: जो भी हमारे जो त्यौहार होते हैं प्रियंका बहन, वो कोई ना कोई शिक्षा हमें अवश्य देते हैं, संदेश देते हैं। तो देखिए, इस पर्व से हमें ये संदेश मिलता है कि भाई देखिए, जीवन और संसार की सभी चीज़ें, सुख दुख मिलना बिछड़ना, सब क्षणिक और अस्थायी है, यानी कुछ भी स्थायी नहीं है। और प्राण प्रतिष्ठा से पूजित गणेश मूर्ति जल में घुल कर पांच तत्वों जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु में मिल जाती है और अपने मूल निराकार रूप में लौट जाती है।
1: बिल्कुल। तो
0: मान्यता
1: आप
0: है कि भाई जब भक्त बप्पा की मूर्ति प्रतिमा को विदा करते हैं तो भगवान गणेश अपने भक्तों के सारे दुख, संकट और नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ ले जाते हैं।
1: बिल्कुल। तो कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं चंद्रपाल और साथियों के आवाज में ये गणेश वंदना।
2: वो मेरे

0: प्रियंका बहन, ये तो गणेश वंदना सुनी चंद्रपाल और साथियों से। और देखिए, आज गणेश चतुर्थी के साथ साथ, यानी गणेश विसर्जन के साथ साथ, अनंत चतुर्दशी का भी महत्व तो आज मनाया जा रहा है। और भगवान विष्णु की पूजा इस दिन, जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और इस दिन कलाई पर 14 गांठों वाला अनंत सूत्र, यानी पवित्र धागा बांधने का विधान है, जो 14 लोकों और भगवान के अनंत स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। और धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से और अनंत सूत्र धारण करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है।
1: बिल्कुल। और देखिए, हमारा जो लोक रंजनी कार्यक्रम है उसमें हम आपको भजन भी सुनवाते हैं, रागनी भी सुनवाते हैं, उपदेश भी सुनवाते हैं, अलग अलग जो लोक संगीत की विधाएं हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो अब सुनवाते हैं आपको एक लोकगीत, और कलाकार रहेंगी मंजू शर्मा।

0: प्रियंका भाई, ये तो लोकगीत सुना मंजू शर्मा से। और जैसा कि आपने बताया कि भाई हम अपने कार्यक्रम में देखिए लोकगीत, उपदेश, रागनी, भजन सभी चीजें लेकर आते हैं।
1: तो सुनवाते हैं शीशपाल भाटी की आवाज में ये रागनी।

0: प्रियंका बहन, ये तो शिषपाल भाटी से सुनी रागनी, और शिषपाल भाटी की गाई इस रागनी के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर, संयोजक शिव नंदन लाल, लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंजनी। यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपिका।
3: नमस्कार सभी श्रोताओं को और स्वागत है आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम में।
2: और दीपिका, आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो भारतीय खिलाड़ी एशियन गेम्स में इस समय प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं उनके बारे में सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एशियन गेम्स से शुरुआत करते हैं, उसके बाद बात करेंगे क्रिकेट की, अन्य खेलों की भी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियन गेम्स से, और इस समय जो एक्शन में खिलाड़ी हैं वो हैं गुलवीर सिंह। लगातार वो 10,000 मीटर की दौड़ में लगातार अपना तीसरा स्थान लेके वो चल रहे हैं। जिस तरह से खिलाड़ियों ने अपनी पेस सेट की थी, तो 5 खिलाड़ी इस समय एक दूसरे के आगे पीछे दौड़ रहे हैं और उसमें तीसरे स्थान पर हैं गुलवीर सिंह। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उम्मीद है इस समय गुलवीर सिंह भारत के लिए पदक की, अगर हम बात करें तो।
3: बिल्कुल, पदक का रंग बदलने की कोशिश कर रहे हैं गुलवीर सिंह और एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के लिए आज का दिन रहा बेहद खास। शूटिंग में गोल्ड और सिल्वर, कबड्डी में महिला और पुरुष टीमों की फाइनल में एंट्री, महिला हॉकी की सेमीफाइनल में जगह, टेबल टेनिस और स्क्वाश में पदक पक्के और एथलेटिक्स ट्रैक पर कई भारतीय सितारों की चुनौती। यानी 25 सितंबर का दिन भारतीय खेल प्रेमियों के लिए उत्साह, उम्मीद और पदकों की नई कहानी लेकर

0: आया है। तो ये शुरुआत करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर से।
1: और सबसे बड़ी खबर दिन की ये थी कि एशियन गेम्स में शूटिंग एक बार फिर भारत के लिए पदक लेकर आई है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत की सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफिकेशन में 587-29x का स्कोर किया और फाइनल में भी दबाव के बीच संयम और शानदार स्ट्रोक्स लगाते हुए अपना संयम दिखाया। बिल्कुल डिसिप्लिन शूटिंग उन्होंने की। फाइनल मुकाबले में भारतीय निशानेबाजों ने 484.6 अंक हासिल किए और स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया।
0: यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शूटिंग भारतीय दल के लिए एशियन गेम्स में पदकों का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही है। सटीक निशाना, मजबूत मानसिकता और निर्णायक क्षणों में धैर्य। सुरुचि और कमलजीत ने इन तीनों का बेहतरीन उदाहरण पेश किया और इसी के साथ भारत के खाते में आया एक और गोल्ड। अब बात करते हैं 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में सिल्वर की। शूटिंग रेंज में दूसरी बड़ी खबर आई पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में। भारत की टीम में थे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्रांश पाटिल और नीरज कुमार। भारतीय तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। भारत ने कुल 1,762 अंक हासिल किए और चीन ने 1,766 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि भारत ने सिल्वर अपने नाम किया। हालांकि व्यक्तिगत फाइनल में भारतीय निशानेबाज पदक तक नहीं पहुंच सके और टीम स्पर्धा में सिल्वर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही।
1: और दीपिका, कहीं ना कहीं यदि खिलाड़ी अपनी टेक्निक, अपनी डिसिप्लिन और अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा करे तो वो सफल अवश्य होता है, और यही बात सुरुचि ने साबित कर दी। सुरुचि ने जाने से पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी से बातचीत की थी, और जब शाहिद ने उनसे पूछा कि क्या आप एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीत सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं जीत सकती हूँ। तो उस समय किस तरह का उनका मोराल था जाने से पहले, किस तरह से सुरुचि ने अपने जो उनका ट्रेनिंग शेड्यूल है और उस पर कितना वो भरोसा करती हैं, क्या क्या उन्होंने बताया था, उसको एक बार जरा सुन लेते हैं।
2: मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे सिर्फ अपना करना है, मैं ज़्यादा नहीं सोचती।
3: बिल्कुल, ज़्यादा सोचती नहीं, ज़्यादा बोलती भी नहीं। दिन के हिसाब से भी होता है कि उस दिन कैसा होता है, कितना मायने रखता है।
2: वो दिन एक तरीके से अपना दिन भी होता है, एक तरीके से वो भी माना जाता है, और हमारा ट्रेनिंग पे भी होता है। जो हमने ट्रेनिंग करी है, जो हमने सीखा है, क्या हम वो कर पा रहे हैं, वही रिजल्ट मिलेगा।
3: ट्रेनिंग की बात की, ट्रेनिंग कैसी चल रही है, ट्रेनिंग के बारे में बताइए।
2: ट्रेनिंग मेरी बहुत बढ़िया चल रही है, मैं दिन में 4-5 घंटे फिलहाल ट्रेनिंग कर रही हूँ कंटिन्यू। उसके बाद ब्रेक लेके फिर 2-3 घंटे ट्रेनिंग कर रही हूँ। ट्रेनिंग का टाइम बढ़ाया है, काफ़ी सारे मिस्टेक्स को इम्प्रूव किया है और बेटर शूटिंग करी है।
3: मेंटली ट्रेनिंग और उस फिजिकल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, तीनों होती है, इम्पोर्टेंट क्या है?
2: सारी चीज़ इम्पोर्टेंट है और सारी चीज़ें करने भी चाहिए एक एथलीट को, वरना एक छोटी सी गलती के कारण दिन खराब हो सकता है, मेडल से चूक सकता है।
3: एशियन गेम्स से सब पूरे देश की होप से लगी होगी, और जाहिर सी बात आप किस बेहतर कर रही हैं, आपने अपने घर में भी बेहतर किया, क्या उम्मीद करें एशियन गेम्स से?
2: मेरी तो उम्मीदें हैं एशियन गेम्स से गोल्ड की, मैं उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ।
3: जापान में वर्ल्ड होगा एशियन गेम्स, और जो तैयारियाँ चल रही हैं, जिस तरह आपने पीछे किया, हालांकि वही अपोनेंट होंगी जो एशियन की होंगी, उनको देखते हुए कितना मुश्किल लग रहा है?
2: मुझे मुश्किल नहीं लग रहा, मुझे अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा है, मेरे सर पे जिन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दी है, सिखाया है, समरेश सर से अभी मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ उनके साथ।
3: मुझे इतना कॉन्फिडेंस कैसे लाती हो?
2: आई थिंक इट्स नेचुरल।
3: जब कूल होती है, जब शूट भी करती हैं, कैसे हार्ट बीट पे कंट्रोल करती हैं, ब्रीदिंग के बारे में बताइए। शूट करने के लिए उतरती हैं, फोकस कहाँ होता है, हार्ट बीट भी बढ़ती रहती है, सामने निशाना भी होता है।
2: जब मैं लेन पे खड़ी होती हूँ तो मैं सिर्फ अपनी टेक्निक पे फोकस करती हूँ, और जो कुछ भी चल रहा है आगे पीछे दाएं बाएं, मैं उस पर ध्यान नहीं देती, मुझे सिर्फ अपनी टेक्निक फॉलो करती हूँ, मैं उसी से फायर करती हूँ।
3: जो समर्थक चिल्लाते हैं, हूट करते हैं, क्या कभी उससे भी डिस्टर्ब होता है?
2: पहले होता था लेकिन आदत हो चुकी है।
3: ये आदत आपको क्या ओलंपिक तक कब लेके जाएगी? ओलंपिक भी सामने है, उसके क्वालिफिकेशन भी, लास्ट में क्वालिफिकेशन भी शो होने वाले हैं साल के अंत में, उसके बारे में बताइए।
2: सबसे पहले तो मेरा एम रहेगा कि मैं पहले तो कोटा लूँ, जो इस साल के लास्ट में ही है वर्ल्ड चैंपियनशिप।

0: मेरी तो उसी में उम्मीद रहेगी कि मैं उसी में ओलंपिक को टालूँ और फिर उसके बाद मैं ओलंपिक के लिए तैयारी करूँगी।
1: जब एशियन गेम्स के लिए वो जा रही थी, तो उस समय जब उन्होंने अपना बताया कि कैसे वो ट्रेनिंग करती हैं, किस तरह से उन्होंने पूरा अपना शेड्यूल फॉलो किया है, और सबसे अच्छी बात दीपिका उन्होंने ये बोली कि अगर आप अपनी तकनीक और अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा करते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने करके भी दिखाया, स्वर्ण पदक जीता है।
2: बिल्कुल। और अब बात करते हैं उस खेल की जिसमें भारत का एशियन गेम्स में शानदार इतिहास रहा है, और वो है कबड्डी। 25 सितंबर को भारतीय महिला और पुरुष दोनों टीमों ने अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बना ली है। पहले महिला टीम की बात करें तो सेमीफाइनल में नेपाल को 48-24 से हराया। मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार मुकाबला दिखाया, डिफेंस में मजबूत पकड़ दिखाई और रेडिंग में लगातार अंक, इन दोनों ने भारत की जीत की नींव रखी। अब भारतीय महिला कबड्डी टीम के सामने स्वर्ण पदक का मुकाबला है। और पुरुष टीम की अगर बात करें तो भारत ने थाईलैंड को 66-28 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय रेडरों ने लगातार अंक बटोरे, जबकि डिफेंस में थाईलैंड के खिलाड़ियों को वापसी का मौका ही नहीं दिया। वहीं अगर महिला हॉकी टीम की बात करें तो हॉकी के मैदान से भी एक बड़ी खबर है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान जापान को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय टीम ने पूरे मुकाबले में आक्रामक हॉकी तो खेली ही और जापान ने वापसी की कोशिश करी, एक गोल भी हासिल किया, लेकिन भारतीय डिफेंस ने उसके बाद मौका नहीं दिया और 3-1 से इस जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। और अब टेबल टेनिस के मुकाबले के बारे में जानते हैं अजय जी से।
1: टेबल टेनिस में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। मानु शाह और दिया चितले की जोड़ी ने मिश्रित युगल में सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर दिया है। अब भारतीय जोड़ी के सामने चुनौती है पदक का रंग बदलने की। सेमीफाइनल में जीत मिली तो फाइनल में गोल्ड का रास्ता खुलेगा, यानी टेबल टेनिस में भी भारत के पदक खाते में एक और पदक जुड़ना तय है। और वहीं स्क्वॉश में भारत की मजबूत चुनौती भारतीय खिलाड़ियों ने पेश कर दी है। स्क्वॉश कोर्ट में से भी भारत के लिए अच्छी खबर आई है। महिला एकल में अनाहत सिंह और तानवी खन्ना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय कर लिया है। दोनों भारतीय खिलाड़ियों की प्रगति से इस स्पर्धा में भारत की पदक उम्मीदें मजबूत हुई हैं। मिश्रित युगल में जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार की जोड़ी ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। इसका मतलब है कि स्क्वॉश में भी भारत के लिए कम से कम एक पदक सुनिश्चित हो चुका है। अब नजरें इस बात पर हैं कि भारतीय खिलाड़ी इस पदक का रंग कितना चमका पाते हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बॉक्सिंग रिंग की बात करें तो दीपिका, क्या हो सकता है बॉक्सिंग रिंग में?
2: जी हाँ, अब रुक करते हैं बॉक्सिंग रिंग का। और पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जॉर्डन के मोहम्मद अदनान अबू जाजेह को 4-1 के अंतर से हराया। इस जीत के साथ सचिन ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, यानी बॉक्सिंग में भी भारत की पदक उम्मीद कायम है। हालांकि महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति को उत्तर कोरिया की पांग चॉल मी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। और खेल में जीत और हार दोनों होती हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों की चुनौती लगातार जारी है। और फेंसिंग से भी निराशा हाथ लगी है। पुरुषों की फॉयल टीम को हांगकांग ने 45-27 से हराया। वहीं महिला एपी टीम को उज़्बेकिस्तान ने 45-29 से शिकस्त दी। दोनों भारतीय टीमें राउंड ऑफ 16 में अपने अभियान से बाहर हो गई। और अब नज़र है एथलेटिक्स पर। जी हाँ, सबसे बड़ी उम्मीदों में शुमार है कुलवीर सिंह। और जैसा कि आपको बताया था, कुलवीर सिंह का मुकाबला 10,000 मीटर फाइनल का मुकाबला चल रहा था जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, यानी कि अब अनुभव भी है, रिकॉर्ड भी है और बड़ी प्रतियोगिता में प्रदर्शन का भरोसा भी। और अब निगाहें ट्रैक पर है।
1: और दीपिका, बहुत अच्छी खबर आ चुकी है, क्योंकि गुलवीर, जैसे हमने बताया था कि पहले तीन खिलाड़ियों में उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई थी और लगातार उन्होंने उस पेस को सेट किया हुआ था जिससे वो पदक की उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहे थे और रजत पदक जीत चुके हैं।
2: बहुत ही बड़ी खबर आई है। साथ ही साथ शॉटपुट की बात करें तो मनप्रीत कौर ने 17.17 मीटर का थ्रो फेंककर ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया है।
1: और जिस तरह से अभी तक भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं और क्या क्या आगे हो सकता है, हमने बात की वरिष्ठ खेल पत्रकार उथरा गणेशन से और उनसे जानना चाहा कि क्या क्या उम्मीदें अभी हम भारतीय खिलाड़ियों से लगा सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: देखिए, जैसे उम्मीद कुछ वैसे तो नहीं चल रहे हैं, काफी सारे ऐसे मेडल हैं कि उम्मीद हम लेके चल रहे थे लेकिन अभी तक नहीं आ पाए हैं, पर आज से थोड़ी सी चीजें बेहतर हुई हैं। कल से ट्रैक एंड फील्ड शुरू हुआ है जिसमें 2 मेडल आए हैं हमारे, और एक बहुत ही करीबी मामला था जो मिस हो गया काउंट पैक पे, तो आज शूटिंग में भी पहला गोल्ड आ गया है जिसकी उम्मीद हम पिछले 5 दिन से कर रहे थे। तो उम्मीद यही है कि अब चीजें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं, थोड़े से मेडल्स पड़ने लगे हैं, तो अब आगे चीजें और बेहतर होती चली जाएंगी। अभी ऑलरेडी एथलेटिक्स में एक ब्रॉन्ज मेडल और आज भी हमारा आ चुका है शॉर्टपट में लड़कियों का, तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि अब चीजें तो थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हुई है, तो अब यहाँ से रफ्तार पकड़ेंगी हमारी मेडल की उम्मीद और बेहतर होती जाएंगे।
1: कोई नाम आप लेना चाहेंगे जिनसे आपको उम्मीद है कि स्वर्ण पदक जीतेंगे?
3: देखिए, अगर किसी चीज की गारंटी हो जाए तो वो खेल नहीं रह जाता। मैं हमेशा से मानती हूँ कि खेल उस दिन मैदान पे कौन क्या करता है इस पे डिपेंड करता है, तो गारंटी के साथ खेल कभी नहीं आता। पर अभी आज थोड़ी देर में कुलवीर सिंह का 10,000 मीटर की दौड़ है जिसमें हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद गोल्ड भी आ सकता है, क्योंकि इस सीजन वो एशिया में टॉप पे चल रहे हैं या शायद सेकेंड पे चल रहे हैं, तो उनसे उम्मीद बहुत ज्यादा है। बल्कि कुलदीप से तो 5,000 में भी उम्मीद है, एंट्री उनकी 1,500 में भी है, उसके अलावा अभी 400 मीटर विमेंस के हीट होने हैं, तो उम्मीद तो बहुत से खेलों में है। कल सचिंदर पाल सिंह टू का शॉर्टपट में इवेंट है पुरुषों का, जिसमें हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद तीसरी बार वो गोल्ड लेकर आए थे हमारे लिए देश के लिए। उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, कल शूटिंग में भी है, कबड्डी में कल फाइनल्स है भारत पुरुषों और महिलाओं दोनों का, तो उम्मीद मिल रही है कि उसमें दोनों में गोल्ड आएगा। स्क्वॉश के भी इवेंट्स हैं, तो उम्मीद हमारी खत्म नहीं हुई है, उम्मीद अभी बहुत ज्यादा है। अभी तो बहुत सारे खेल बचे हैं, बहुत सारे खेल शुरू होने बचे हैं, रेसलिंग तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, तो उम्मीद से तो दरिया कायम है अजय जी, उम्मीद से हम सब जी रहे हैं, और उम्मीद यही है कि इस बार भी भारत का प्रदर्शन आगे अगले आने वाले कुछ दिनों में बेहतर ही होता चला जाए।
1: ये थी वरिष्ठ खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन, जो बता रही थी कि आने वाले समय में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन और भी बेहतर होगा, और जिस तरह से अभी तक के जो सूरत हाल है एशियन गेम्स की, तो उसमें वो हमें पता चलती है पूरी, अगर हम उसको देखें तो वो पता चलती है मेडल टैली से। तो मेडल टैली में क्या क्या हुआ है ये बताएंगी दीपिका।
2: बिल्कुल, मेडल टैली पर नज़र डालते हैं। चाइना सबसे टॉप पर बना हुआ है कुल 157 पदकों के साथ, जिसमें 97 गोल्ड है, 36 सिल्वर है और 24 ब्रॉन्ज मेडल है। दूसरे स्थान पर है जापान, कुल पदक है 113 और इन पदकों में 27 गोल्ड है, 42 सिल्वर है और 44 ब्रॉन्ज मेडल है। कोरिया तीसरे स्थान पर है 64 मेडल्स के साथ, जिसमें 13 गोल्ड मेडल्स है, 17 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल है। चौथे नंबर पर है कजाकिस्तान, कुल 29 मेडल्स के साथ, जिसमें 8 गोल्ड, 8 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और भारत 12वें स्थान पर है कुल 21 मेडल्स के साथ, जिसमें 2 गोल्ड, 8 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं।
1: हालांकि दीपिका, थोड़ा सा निराशा लगती है इस मेडल टैली को देखते हुए कि भारतीय खिलाड़ी इस समय इस मेडल टैली में 12वें स्थान पर हैं, भारतीय टीम 12वें स्थान पर है, लेकिन ये सूरत हाल बदलेगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे इवेंट अभी होने हैं जहां पर भारतीय खिलाड़ी बहुत मजबूत चुनौती पेश करेंगे। और मेरा अपना पर्सनल व्यक्तित्व पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि निश्चित तौर पर भारतीय जो हमारे मेडल टैली में जब तक एशियन गेम्स ख़त्म होंगे, हम पहले 7 देशों में कहीं ना कहीं हमारे शुमार होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे खेल ऐसे हैं जहां पर हमारे गोल्ड मेडल आ सकते हैं, और जितने अधिक गोल्ड मेडल होंगे उतने ही ऊपर आप मेडल टैली में होते हैं।
2: बिल्कुल, भारत की कहानी अगर कुछ शब्दों में समेटो तो शूटिंग में गोल्ड, शूटिंग में सिल्वर, महिला कबड्डी फाइनल में, पुरुष कबड्डी फाइनल में, भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में, टेबल टेनिस में पदक पक्का, स्क्वाश में पदक पक्का, बॉक्सिंग में क्वार्टर फाइनल की एंट्री और एथलेटिक्स ट्रैक पर पदक की उम्मीद है। यह सिर्फ पदकों की कहानी नहीं है, उन खिलाड़ियों की कहानी है जो वर्षों की मेहनत के साथ एशियन गेम्स जैसे बड़े मंच पर तिरंगे का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक शॉट में एकाग्रता है, एक हर रेड में साहस है, हर गोल में टीम की भावना है, हर हर पंच में आत्मविश्वास है और हर दौड़ में देश की उम्मीद है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, और देश की उम्मीदें वो खिलाड़ी भी हैं जो बिल्कुल अभी युवा हैं और खेलों में अपना नाम कमा रहे हैं, खेलों में आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा ही एक टूर्नामेंट भारत में होता है और ना केवल भारतीय खिलाड़ी बल्कि बहुत सारे विदेशी खिलाड़ी उस टूर्नामेंट को खेलने के बाद अपने अपने देश की टीमों में खेले हैं। और ये टूर्नामेंट है सुब्रत कप फुटबॉल टूर्नामेंट। इसमें किस तरह का मुकाबला था, क्या क्या हुआ, ये पूरी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे युवा सहयोगी चंद्र आलोक।

0: 65वें सुब्रतो कप बॉयज अंडर 17 का फाइनल मुकाबला CISCE मनीरबा पब्लिक स्कूल मोहाली और केरल से आने वाली MIC इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल अथानिकल मल्लापुरम के बीच दिल्ली के भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में खेला गया। फाइनल मैच में आकर्षण का केंद्र रहा पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मिस्टर IPL सुरेश रैना और भारतीय वायुसेना के सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। तकरीबन 3 से 4 हज़ार दर्शकों से भरा हुआ अंबेडकर स्टेडियम गवाह बना एक रोमांचक मैच का, जिसमें CISCE मनीरबा पब्लिक स्कूल मोहाली की टीम शुरुआत से ही हावी रही। पहला गोल मैच के 7वें मिनट में आजम खान ने किया और मोहाली की टीम 1-0 से आगे हो गई। स्टॉपेज टाइम में MIC इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल की टीम ने तौफिक के गोल के बदौलत फाइनल मुकाबला को बेहद ही दिलचस्प बना दिया और हाफ टाइम के बाद दोनों टीम का स्कोर 1-1 से बराबर था। जैसे ही खेल शुरू हुआ 39वें मिनट में मणिपुर से आने वाले पुनसेका मेताई ने कप्तान सेलेक्स ओइनम के शानदार पास को गोल में तब्दील करते हुए टीम को 2-1 से आगे कर दिया। उसके कुछ मिनटों के बाद यानी 46वें मिनट में MIC इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल के रक्षात्मक पंक्ति की गलती के कारण मनीरबा पब्लिक स्कूल टीम को पेनल्टी मिला, जिसका भरपूर फायदा टीम ने उठाया। मनीरबा पब्लिक स्कूल की टीम की तरफ से फाइनल मैच के हीरो रहे आजम खान ने बिना किसी हिचकिचाहट के बॉल को गोलकीपर प्रत्युक्ष देव को छकाते हुए गोल कर दिया। इस प्रकार मनीरबा पब्लिक स्कूल 3-1 से आगे हो गई। इस मुकाबले में केरल से आने वाली टीम को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला, हालांकि कुछ चूक के कारण केरल की टीम 2 गोल करने में सफल रही। एंथोनी जॉय ने 63वें मिनट में टीम के लिए दूसरा गोल किया। दर्शकों का उत्साह इस मैच में देखने लायक था। मैच के बाद हमने बात की MIC इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रत्युक्ष देव से, हालांकि वो काफ़ी निराश थे हार के बाद। हमने बात की विजेता टीम के कप्तान से और उनसे जाना
1: क्योंकि वो लोग भी फाइनल पहुँचा, क्योंकि मतलब फाइनल पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मतलब लीग मैच खेल के बहुत टफ मैच खेल के फाइनल पहुँचता है। हम लोग भी बहुत हार्ड वर्क किया, एफर्ट, वी पुट ऑल द एफर्ट्स एंड फ्रॉम लाइक पास फ्रॉम लाइक 4 मंथ्स वी आर प्रैक्टिसिंग, लाइक वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस।
0: जीत को किसे डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: ऑफ कोर्स रंजीत सर और चीफू सर, ऑल टू हिम।
0: आखिरी में टीम के कोच रंजीत बजाज से और उनसे जाना उनके टीम के आज के प्रदर्शन के बारे में। सर, इस जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
2: बहुत अच्छी जीत थी, अल्लाह पे अदर टाइटल थर्ड टाइम।
0: सर, आप भारतीय फुटबॉल को लेकर के आपकी जो महत्वाकांक्षा है, पिछले कुछ दिनों में काफी बड़े पैमाने पर इस बात को बात होती है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
2: जो मैंने प्लान बनाया वो प्लान नहीं है, जी एक होता है, एम होता है, कि तुम्हारा एक विश होता है, जो तुम्हारा दृढ़ निश्चय है कि मैंने करना ही है, वो ना एम है ना प्लान है। क्योंकि मेरे को अभी तक ये पता, अगर मैंने 2036 में गोल्ड लेना है तो मुझे कल क्या करना चाहिए, जिसमें से आज एक चीज़ थी कि एक जीतना है, और ऐसे हर रोज चीज़ें हैं जो हमारे को करनी है। अगर हम वो टिक मार्क करते रहें
0: तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्लोज मैच था 3-2 से आप
3: फाइनल टूर्नामेंट विच विल बी वन साइडेड। जब हम बाहर जाते हैं तब भी हम
0: आपको यह जानकारी देते हुए कि मनीरबा पब्लिक स्कूल ने बॉयज अंडर 17 सुबोत्तो कप का खिताब जीत लिया है। आकाशवाणी की कमेंट्री

और अपने प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ दिल्ली के भीमराव अंबेडकर स्टेडियम से मैं चंद्र आलोक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।

0: और अब बात कर लेते हैं 46th फीडे चेस ओलंपियाड की और राउंड 8 के मुकाबलों पर खास जानकारी। अब आपको बताते चलते हैं, शतरंज की बिसात पर दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी आमने सामने हैं और 46वें फीडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें राउंड में भारतीय पुरुष और महिला टीम को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। मौजूदा चैंपियन भारत की पुरुष टीम को अजरबैजान के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ से संतोष करना पड़ा और इस ड्रॉ के साथ भारत के पास शीर्ष स्थान पर पहुंचने का मौका तो आया लेकिन वह इसे भुना नहीं सका। 8वें राउंड के बाद भारत के खाते में 13 मैच पॉइंट्स और वह संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर बने हुए हैं और वहीं शीर्ष स्थान पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। उज्बेकिस्तान जो 14 पॉइंट्स के साथ तालिका में सबसे ऊपर था उसे जर्मनी के हाथों 1.5 और 2.5 से हार का सामना करना पड़ा और जर्मनी की इस जीत में फेडरिक स्वान और रास्मस स्वान की जीत महत्वपूर्ण रही। दोनों ने नोदिरबेक और शमसुद्दीन को हराया और नतीजा यह रहा कि 8वें राउंड के बाद उज्बेकिस्तान और जर्मनी 14-14 मैच पॉइंट्स के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर है जबकि भारत, चीन, नीदरलैंड और अमेरिका समेत 8 टीमें 13 पॉइंट्स के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। अब बात करते हैं भारत और अजरबैजान के मुकाबले की। भारतीय टीम के चारों बोर्ड पर मुकाबले ड्रॉ रहे। आर प्रज्ञानंद का सामना अनुभवी शक्रियार से हुआ और दोनों खिलाड़ियों ने ड्रॉ खेला। दूसरे बोर्ड पर अर्जुन एरेगेसी और अदीन सुलेमानली के बीच भी मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। तीसरे बोर्ड पर सबसे ज़्यादा निगाहें थी डी कुकेश और मुरादली मोहम्मद के मुकाबले पर। सिसिलियन से शुरू हुए इस मुकाबले में गुकेश ने सफ़ेद मोहरों से आक्रामक खेल दिखाने की कोशिश की और उन्होंने एक साहसिक क्वीन मूव के जरिए स्थिति को जटिल बनाया लेकिन मुरादली ने सटीक जवाब देते हुए संतुलन बनाए रखा। क्वीन के बोर्ड के हटने के बाद मुकाबला एंड गेम में पहुंचा और मुरादली ने सेंटर पर नियंत्रण मजबूत किया और अपने राजा को सक्रिय किया जबकि गुकेश के क्वीन साइड पर दबाव बनाने की कोशिश की। दोनों खिलाड़ी समय के दबाव में भी बेहद सावधानी से खेलते रहे और आखिरकार 56 चालों के बाद मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। मुरादली का डिफेंस इस मुकाबले में खास और प्रभावी रहा और गुकेश जीत का मौका हासिल करने के बावजूद उसे निर्णायक परिणाम में नहीं बदल सके। चौथे बोर्ड पर थे विदित संतोष गुजराती। टीम में वापसी करते हुए रफ मामेदोव के खिलाफ ड्रॉ खेला। विदित ने इस मुकाबले में निहाल सरीन की जगह भारतीय टीम में वापसी की थी यानी अजरबैजान के खिलाफ चारों बोर्ड पर ड्रॉ और स्कोर रहा 2-2। अब बात करते हैं महिला वर्ग की जहां मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला कजाकिस्तान से हुआ। यह मुकाबला भी 2-2 से ड्रॉ रहा और भारतीय महिला टीम संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर बनी रही। टॉप बोर्ड पर कुनरी हम्पी का मुकाबला बिबिसारा से हुआ और यह गेम ड्रॉ रहा। दूसरे बोर्ड पर दिव्या देशमुख और मेरुवर्ड के बीच भी बाजी बराबरी पर छूटी। दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने काले मोहरों से मुकाबला खेला। वहीं वैशाली रमेश बाबू को नूरमान अलुआ के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा लेकिन इसी मुकाबले में भारत के लिए सबसे बड़ी सकारात्मक खबर आई बी सविता श्री से। सविता श्री ने एलनाज को हराकर भारतीय टीम को जरूरी अंक दिलाया और यह जीत उनके लिए व्यक्तिगत रूप से भी बेहद खास रही। सविता श्री ने ओलंपियाड में अब तक खेले गए अपने सभी 7 मुकाबले जीते हैं, 7 में 7 जीत और उनका रेटिंग परफॉर्मेंस भी शानदार रहा। यह प्रदर्शन भारतीय महिला टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण और सविता श्री लगातार अपनी शानदार फॉर्म का परिचय दे रही हैं। मेजबान उज्बेकिस्तान ने नीदरलैंड को 3-1 से हराया और चीन के जॉर्जिया ने को 2.5 और 1.5 से मात देकर अपनी स्थिति को मजबूत किया। मंगोलिया ने बुल्गारिया को 2.5 1.5 के स्कोर से हराया और इस तरह 8वें राउंड के बाद महिला वर्ग में भारत संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर बना हुआ है। कुल मिलाकर 8वां मुकाबला भारत के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है
1: लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ समय से दीपिका अगर हम चेस की बात करें, शतरंज की बात करें तो हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसी बिसात बिछाई है, ऐसी चालें चली

0: हैं कि पूरी दुनिया के खिलाड़ी हतप्रद रह गए हैं और आश्चर्य का अनुभव करते हैं कि भारत में इतने सारे चेस के इतने बड़े खिलाड़ी कैसे आ गए।
1: बिल्कुल, और अब भारत की नज़रें अगले राउंड पर हैं, जहां एक जीत स्टैंडिंग में बदलाव ला सकती है और एक बड़ा उलटफेर कर सकती है।
0: और आज उलटफेर करना होगा भारतीय महिला क्रिकेट टीम को। भारत की ए महिला और ऑस्ट्रेलिया की ए महिला क्रिकेट टीमें तीसरे अनऑफिशियल ओडीआई मुकाबले में आमने सामने हैं। पंजाब के पीसीए क्रिकेट स्टेडियम आईएस बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम मोहाली में इस समय मुकाबला चल रहा है और निर्धारित 50 ओवर्स में पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 362 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। बहुत बड़ा स्कोर भारतीय महिला टीम को अब चेज करना है। और चार्ली नॉट जो 109 रन की उन्होंने पारी खेली, बेहतरीन पारी खेली, केवल 70 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 12 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के भी उन्होंने लगाए, तो ये दर्शाता है कि महिलाएं भी अब छक्के लगाती हैं। एक समय था जब कहते थे कि अगर आपको कलात्मक क्रिकेट देखना है तो महिला क्रिकेट देखिए, लेकिन अब पावर भी है महिलाओं में, क्यों दीपिका जी?
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: और अब भारतीय टीम को अगर ये मुकाबला जीतना है तो 363 रन बनाने पड़ेंगे निर्धारित 50 ओवर्स में। और हालांकि भारतीय टीम की तरफ से आज गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं हुई। जयंती मणिकलिता ने 5 ओवर में 56 रन दिए, जिसमें उन्होंने 2 नो बॉल और 2 वाइड गेंदें भी करी हैं। अक्षिता भगत ने 5 ओवर में 36 रन दिए, वैष्णवी शर्मा ने 10 ओवर में 48 और उन्होंने 4 विकेट्स भी लिए। मीनू मणि अनुभवी खिलाड़ी हैं लेकिन उन्होंने 10 ओवर में 56 रन दिए। अमनदीप कौर ने 9 ओवर में 62 रन दिए। हालांकि बहुत अच्छी ऑलराउंडर मानी जाती हैं लेकिन आज उनका दिन बिल्कुल नहीं था। वहीं निक्की प्रसाद ने 10 ओवर में 84 और 4 विकेट ली और तनिषा सिंह ने 1 ओवर में 15 रन दिए।
1: और अब बात कर लें पुरुष क्रिकेट की। जी हाँ, इंडिया ए की टीम खेल रही है जिसमें देवदत्त पडिक्कल की कप्तानी में इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए को पहले टेस्ट में 162 रन से हराकर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। शानदार जीत में भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों का बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। बल्ले से कुमार कुशाग्र का शानदार शतक, जबकि गेंद से अंशुल कंबोज, तुषार देशपांडे, शम्स मुलानी और तनुष कोटियन ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। अब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंडिया ए ने अपनी पहली पारी में 334 रन बनाए। कुमार कुशाग्र ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 113 रन की शतकीय पारी खेली। वहीं साई सुदर्शन ने 57 रन और तनुष कोटियन ने 69 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ए की पहली पारी सिर्फ 171 रन पर सिमट गई और भारत को जीत मिली 162 रनों से।
0: शानदार जीत इसे कहा जा सकता है क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत ये भारतीय टीम ने अर्जित की है और बहुत सारे और भी चीज़ें भारतीय टीम अर्जित कर रही है। लेकिन अब स्टूडियो की घड़ी हमें बता रही है दीपिका कि हमें अपने श्रोताओं से विदा लेनी होगी। मैं अजीत तोमर, मेरी सहयोगी दीपिका और मेरे प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
4: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियां और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। उन्होंने कहा कि परिषद की सफलता की कहानियां अब पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रही हैं। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों, आईटीआई प्रशिक्षुओं, पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों तथा कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ दोनों नेताओं की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कर्नाटक से मालदीव के लिए GI टैग वाली गुलबर्गा तुअर दाल की 1 मीट्रिक टन खेप को रवाना किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत के GI टैग वाले कृषि उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विस्तार करना है। जापान एशियाई खेलों में आज कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। वहीं 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य समेत 22 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi has said that Vikasit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction today with Seva Yatris traveling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service.
4: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
5: The Prime Minister said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. Today, infrastructure in villages is improved considerably, while self-defense, self-reliance among the women of the country has also increased. During the interaction, these yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also urged the yatris to maintain a diary and record their experiences during the yatra. Prime Minister Narendra Modi today highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the initiative has led to more being made in India, more investment in India, and more exports from India. He said this transformation is visible across sectors. The Prime Minister said,

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, डीएनएम 810 किलो हर्ट्स पर। शाम के 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। प्रियंका बहन कार्यक्रम लेकर हाजिर है। देखिए आज 25 सितंबर है और आज है महान अर्थशास्त्री समाज शास्त्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। उनका
1: बिल्कुल
0: जन्म आज ही के दिन यानी 25 सितंबर को 1916 में मथुरा जिले के नगला चंद्रमान गांव में हुआ था और उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय और माता का नाम राम प्यारी था।
1: बिल्कुल। और आज का दिन जो है अंत्योदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अंत्योदय शब्द का अर्थ है समाज के सबसे गरीब, पिछड़े और हाशिए पर खड़े व्यक्ति का विकास। यह दिन समाज के वंचित वर्ग की सेवा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी मनाया जाता है।
0: प्रियंका बहन आपने अत्यंत की बात की तो देखे अत्यंत दया का नारा देने वाले दीनदयाल उपाध्याय का कहना था, अगर हम एकता चाहते हैं तो हमें राष्ट्रवाद और को समझना होगा। साथ ही उनका कहना था कि भारत की जड़ों से जुड़ी राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति ही देश के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखती है। कोई भी देश अपनी जड़ों से कटकर विकास नहीं कर सकता। और साथ ही दीनदयाल जी का मानना था कि केवल आज़ादी मिलने से सच्ची स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, जब तक भारत अपनी संस्कृति, पहचान, परंपराओं और मूल्यों को नहीं अपनाता तब तक वह मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता।

0: और इतना ही नहीं, उन्होंने देखिए पत्रकारिता के महत्व से स्वतंत्रता आंदोलन और उसके ठीक बाद दौर में उन्होंने जन जागृति का फैलाने का कार्य किया। साथ ही वही देखिए उन्होंने जब वो अपने लेखों के जरिए युवाओं को देशभक्ति की भावना का संचार भी उन्होंने किया। और इस दिन देखिए देखिए देश भर में गरीबों के कल्याण व राष्ट्र निर्माण से जुड़े अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है।
1: बिल्कुल, ये तो रही दीनदयाल उपाध्याय जयंती के बारे में जानकारी। और अब श्रोताओं को सुनवाते हैं राजेश कुमार अट्टा की आवाज़ में ये रागनी।
0: और किस्सा रहेगा रामायण का, और ये उस मौके की रागनी है जब युद्ध में लक्ष्मण जी के हाथों मेघनाथ जी यानी इंद्रजीत का वध हो जाता है और उनका कटा हुआ सिर भगवान रामचंद्र जी के दल में चला जाता है। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेने के लिए हाथ जोड़कर भगवान श्री राम की शरण में आती है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि उनके पति का जो शीश उसे सौंप दिया जाए ताकि वह पति के साथ सती हो सके। और यह रागनी इसी मार्मिक संवाद का उदर्शाती है। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

0: रिंका बहन, ये तो रागनी सुनी राजेश कुमार अट्टा से एक और किस्सा था रामायण का। और देखिए, विज्ञान की तरक्की के साथ साथ खेती में काफी परिवर्तन आया और साथ साथ आई नई नई तकनीक। कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI की भूमिका खेती को आधुनिक, किफायती और अधिक उत्पादन बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल
0: और देखिए, स्टिक कृषि की अगर बात करें तो जो इस पर आधारित तकनीकी मिट्टी की नमी, पोषक तत्व और मौसम का विश्लेषण, सभी इसके द्वारा जानकारी मिल जाती है।
1: बिल्कुल, इससे फसलों की पैदावार बढ़ाने का और लागत कम करने का मुख्य उद्देश्य है। और इन्हीं सब जानकारियों को विस्तृत रूप से आपको देने के लिए हम एक बातचीत लेकर आए हैं, जिसका विषय है कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI की भूमिका। और इसमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सैयद ओवैस, सहायक प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से।
2: किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की आधार है और बहुत सारी हमारी कह सकते हैं कि 70% से ज्यादा जो लोग हैं, हमारे जो नागरिक हैं, वो कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज का जो युग है वो AI युग बन चुका है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका युग है जहाँ AI तकनीक हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुका है। लेकिन कृषि क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी AI क्रांति लेकर आ रहा है, और जिसकी वजह से आज हमारे किसान AI आधारित तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं और अपने समसामयिक कृषि

0: पूरे कर रहे हैं और जिसका लाभ ये है कि अधिक से अधिक उन्हें बेहतर फसल मिल रही है और उसका पूर्ण लाभ ले रहे हैं। तो आज किसान भाइयों, इसी विषय पर हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कि हम बात करेंगे कि कृषि में एआई का महत्व क्या है। उसके लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर मोहम्मद अवैश जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: जी, धन्यवाद।
0: सर हैं असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। जैसा कि मैंने कहा कि एआई आधारित तकनीकें आ गई हैं हर क्षेत्र में, तो कृषि में जो है एआई का आगमन कैसे हुआ?
1: अगर थोड़ा सा हम पीछे चलें कृषि के बारे में, तो कृषि में शुरू से ही मशीनीकरण की तरफ ध्यान दिया जा रहा है ताकि हम उससे ज़्यादा फसलों से उत्पादकता ले सकें और हमारे किसान समृद्ध हो सकें। अब उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए एआई का आगमन भी कृषि में हुआ है, तो इसको हम देखते हैं कि कृषि में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस समय है। जैसे कि हम जानते हैं कि 15 से 18% हमारे यहाँ जो कृषि है वो हमारे जीडीपी में सहयोग कर रही है। उन्हीं सब चीज़ों को अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई जो है वो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और हम उसको धीरे धीरे भी अपना रहे हैं। इसके लिए हमने, जैसे कि हम कृषि बुद्धिमत्ता के बारे में अगर हम कहना चाहें, किसान भाइयों को आसान भाषा में समझाएं, तो ये जो है कंप्यूटर, रोबोट या अन्य मशीन के प्रदर्शन से इसका हम ताल्लुक जोड़ सकते हैं।
0: बिल्कुल, मतलब
1: जी,
0: एक हमारा कृत्रिम मानव है।
1: हाँ, कृत्रिम मानव
0: जो मनुष्य की तरह सोचने लगा है, उसकी
1: जी,
0: तरह कार्य करने
1: जी,
0: लगा
1: जी,
0: है, तो ये किस तरह की मशीन है जो
1: हाँ,
0: मानव ने ही उसका निर्माण किया है,
1: सही,
0: लेकिन
1: बिल्कुल
0: वो
1: सही,
0: बेहतर तरीके से
1: जी,
0: काम कर
1: जी,
0: रहा
1: जी,
0: है।
1: जी,
0: तो सर, महत्व की भी हम बात कर लेते हैं, इसका क्या महत्व
1: हाँ,
0: है?
1: इसका महत्व यह है कि पारंपरिक कृषि के साथ साथ एआई तकनीक को संतुलित रूप से अपनाने के साथ इसकी उत्पादकता, लाभप्रदता और किसान समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो एआई सिस्टम है आज का, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्रांति उत्पन्न कर रहा है। और कृषि और संबंध क्षेत्र जैसे हमारे हैं पशुपालन है और ये सब चीज़ें जो हैं, उससे हमारा 8 से 10% इससे बढ़ोतरी मिल रही है इस समय में। और इसके बाद में अगर हम देखें तो तमाम चीज़ें जो कृषि से संबंधित जो हम उपयोग कर रहे हैं आज के समय में, जिसके अंदर एक सटीक कृषि, जिसको हम प्रिसीजन फार्मिंग बोलते हैं, जिसके अंदर हमें सही आकलन कर लेते हैं कि हमें क्या किस समय पर क्या बोना है, क्या उगाना है और किस हिसाब से हमें उसकी कटाई करनी है, एक तो इसके अंदर इसका उपयोग ये बढ़ रहा है। दूसरा ये है कि रोग का पता लगाना, कीटों का पता लगाना और उसके हिसाब से उसका समाधान हमें तलाश करना होता है, ये भी एआई की तकनीकों द्वारा हम कर लेते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो फसल की निगरानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, कि फसल के अंदर नुकसान कैसा हो रहा है, और साथ में मौसम का पूर्वानुमान के लिए भी हम एआई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो एक फ़ायदा इसका और देखने में आ रहा है कि पशु की निगरानी के लिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हम एआई आधारित तकनीकों को पशुशाला में लगा लेते हैं, कैमरे जिसका एक रूप हो सकते हैं, ड्रोन भी इसका एक रूप हो सकता है, उससे हम पशुओं की देखभाल कर सकते हैं, पशु हमारे खुले में हैं, हिंसक पशुओं से उसका उनकी हिफाजत कर सकते हैं। और उसके बाद में मृदा जो हमारी है सॉइल, उसके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ये कारगर साबित हो रही है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मृदा स्वास्थ्य के लिए एआई उपग्रह से प्राप्त जो चित्र हम लेते हैं, उनसे हम मृदा जो हमारी बनावट है, कहाँ पे शैलो है, कहाँ पे उठा हुआ है, उसके हिसाब से लेवलिंग करने में बड़ी आसानी हो जाती है। और दूसरी बात, पोषक तत्वों का जहाँ तक सवाल है, उसकी जानकारी के लिए भी हम लोग एआई तकनीकों का इस्तेमाल कर लेते हैं। और उसके बाद में जो है बागवानी का क्षेत्र है हमारा, जैसे कि अब आम की फसल तैयार है, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या अगर नॉर्थ इंडिया में, तो आम की फसल तैयार हो रही है, अब उसके अंदर हम एआई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए सही समय पर जो इस वक्त कीटों का और रोगों का निदान हम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इसके लिए जो एआई आधारित विपणन हमारी जो मार्केटिंग की एजेंसीज हैं, उनसे हम अपने आप को कनेक्ट करके अपने जो प्रोड्यूस है, अपना उत्पाद है, उसको सही जगह पर सही समय पर बेच सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम समझ सकते हैं कि एआई के द्वारा पानी,
0: सिंचाई,
1: इरिगेशन,
0: ये सारी चीज़ें
1: जो हैं हम लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं।
0: लेकिन सर, ये सब सारी सुविधाएं हैं, तकनीकें हैं, जिस पर हम लोग मिट्टी की जांच भी कर लेते हैं, पोषक तत्वों का भी पता लगा लेते हैं, पूर्वानुमान मौसम का भी हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चुनौतियां आती हैं।
1: हाँ, चुनौतियां,
0: तो वो किस तरह की चुनौतियां आती हैं?
1: चुनौतियां मैडम इसमें कई किस्म की हैं कि अगर हम इसको अपना लेते हैं, अपनाने के बाद की जो चुनौतियां हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जागरूकता का अभाव हमारे किसानों में है, नई चीज़ के लिए हम पारंपरिक तरीकों को छोड़ना नहीं चाहते। और उसके पीछे भी बहुत सारी वजह यह है कि हमारा जो किसान है वो सीमांत फार्म किसान है या छोटा किसान है, बड़ा किसान होगा तो वो चुनौती स्वीकार करेगा, रिस्क लेने की उसके अंदर कैपेसिटी रहेगी, तो जागरूकता का अभाव है सबसे ज़्यादा। उसके बाद में फार्मर के साथ हमारी ये परेशानी कि वो डिजिटल साक्षरता में पीछे है, जी उसके
0: एजुकेट होना
1: हाँ
0: बहुत
1: हाँ और
0: जरूरी
1: डिजिटल
0: है,
1: साक्षरता उसके लिए बहुत जरूरी है।
0: एजुकेशन बहुत जरूरी
1: जी
0: है जी।
1: उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो जो टेक्निक्स को अप्लाई करना है हमें, जिन
0: ट्रेनिंग की जरूरत है
1: ट्रेनिंग की ज़रूरत है और उसकी लागत भी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो किसान हमारा उसमें थोड़ा सा झिझकता है कि साहब महंगा पड़ेगा, मैं इसको अपनाऊँ या ना अपनाऊँ। उसके बाद में फिर थोड़ा सा आगे हम बढ़ें तो इसकी जो है विशिष्टता की ज़रूरत है, तो ख़ास आपको ट्रेनिंग, खास किस्म का आपका एक स्ट्रक्चर और उसके लिए आपका जो है जागरूक होना बहुत अहम है।
0: तो ये खास चुनौतियां हैं जो हमारे किसान हैं वो उनका देख रहे हैं कि भाई कुछ चुनौतियां आती हैं क्योंकि पैसों की थोड़ी कमी पड़ जाती है,
1: जी
0: लेकिन जिस तरह से सर FPOs होते हैं,
1: फार्मर
0: ऑर्गेनाइजेशंस
1: प्रोड्यूसर्स
0: होते हैं,
1: ऑर्गेनाइजेशन,
0: हाँ
1: जी
0: प्रोड्यूसर्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं,
1: जी
0: तो FPOs में AI कितना कारगर हो रहा है क्योंकि उसमें काफी हमारे जो किसान हैं वो जुड़ जाते हैं और एक दूसरों के साथ मदद करके एक ग्रुप होता है
1: जी
0: इसमें,
1: जी जी
0: तो उसमें क्या ये फायदेमंद है?
1: हाँ फायदेमंद है। FPO के तहत हम अपने जो कृषि उत्पाद हैं उनको हम एक जगह इकट्ठा करके और छोटे फार्मर से बड़े फार्मर से इकट्ठा करके उसको एक जगह से सेल्स आउटलेट समझ लीजिए उसको हाँ बना लेते हैं। तो AI आधारित बहुत सारे ऐप हैं जिसपे हम सटीक जानकारी ले लेते हैं कि हमारी फसल की कीमत क्या है, जिसको हम मार्केट इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं कि हमें बाजार के बारे में पहले से पता चल जाता है, तो किसान को अपना जो उत्पाद है वो सही मूल्यों पर बेचने में आसानी हो जाती है और कब उसकी कितनी डिमांड होगी तभी उसी हिसाब से अपने फसल की हार्वेस्टिंग करें। खासकर ये फलों और सब्जियों के केस में ज़्यादा है क्योंकि फलों का और सब्जियों का निरंतर तुलाई होती रहती है और बाजार में उसका आगमन होता रहता है।
0: तो फलों और सब्जियों में ज्यादा मतलब भूमिका
1: जी
0: निभा रहा है
1: जी
0: हमारा
1: जी
0: जो AI है।
1: ये
0: एक बार फिर से हम जानना चाह रहे हैं क्योंकि उपयोग बहुत बड़ी चीज है कि हम कहाँ कहाँ AI को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और कर सकते हैं, क्या ज्यादातर संभावनाएं बढ़ रही हैं AI के कृषि में?
1: हाँ जी ज़रूर संभावनाएं बढ़ रही हैं।
0: जी
1: उपयोग में हम लोग देखें तो एक तो सबसे अहम इसका जो है कीटों का और रोगों का निदान कर सकते हैं। कुछ ऐप हमारे इस किस्म के हैं जिनको हम अपने सिंपल मोबाइल से भी
0: फोटो खींच के और
1: फोटो
0: डाल
1: खींच
0: सकते
1: के
0: हैं।
1: हाँ उसको कर सकते हैं और आपको तुरंत ही उसका समाधान मिल जाएगा कि इसके ऊपर कौन से कीट का आक्रमण हुआ है और कौन सा रोग इसमें लगा हुआ है।
0: तो ये ChatGPT जो है एक बहुत
1: जी
0: बड़ा उदाहरण हो सकता
1: चैट
0: है इस चीज
1: जीपीटी भी
0: का,
1: है, इसके अलावा
0: उसके
1: और
0: जरिए।
1: भी कई ऐप हैं जिसको जो किसान इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ सरकारी एजेंसीज हैं वहाँ पे आप फोटो भेज सकते हैं अपना उसका जो आपकी समस्या ग्रस्त फसल है तो वहाँ से तुरंत कृषि वैज्ञानिक हमारे उसका निदान करके उसका समाधान निकाले।
0: सर चुनौतियां आती हैं हमारे किसानों के पास, सामाजिक भी होती हैं
1: जी
0: आर्थिक होती हैं, तो किस तरह की चुनौतियां हैं वो?
1: चुनौतियाँ हमारे सामने इस वक्त ये आ सकती है थोड़ी सी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को में कृषि को रूपांतरित करने की अपार संभावनाएं तो हैं, मगर मुख्य तौर पर एक चुनौती ये भी है कि छोटे किसानों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियां महंगी हो सकती हैं। खेतों से इकट्ठा किया हुआ डेटा का स्वामित्व किसके पास होगा, जो हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो उसका ओनरशिप किसके पास रहेगी, ये भी एक
0: जी
1: महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी, तकनीकी साक्षरता की कमी, ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है। और ऑटोमेटिक सेल्फ आउट होने के नाते पारंपरिक कृषि श्रमिकों जो थे हमारे उनकी मांग घट जाएगी, जिससे हमारे
0: बिल्कुल
1: जो कृषि श्रमिक हैं वो हमारे थोड़े कहीं ना कहीं उनको परेशानी होगी, मजदूरी मिलने में
0: जी,
1: दिक्कत होगी।
0: आर्थिक रूप से।
1: जी इस लिहाज से ये थोड़ा सा इसके सामने चुनौती है, मगर फिर भी हमें इसे उसकी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए संभावनाएं तलाश कर रहे हैं कि सरकार हमारी तरफ से हमारे लिए किसानों के लिए ट्रेनिंग इस किस्म की चलाएगी ताकि कृषि श्रमिक जो है हमारे वो कुशल तरीके से इस क्षेत्र में आके अपनी सेवाएं दे सकें और पारिश्रमिक ले सकें।
0: बिल्कुल,
1: जी
0: सरकार के प्रयास तो सर मैं आपसे जानूंगी कि किस तरह से इसे बेहतर बना रहा है, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ है कि इम्प्लीमेंटेशन यानी अप्लाई होने के बाद भी कई तरह की परेशानियां आती हैं, जैसे आपने बताया कि कीट रोगों का परीक्षण भी किया जा सकता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए,
1: जी
0: लेकिन और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कई तरह की चुनौतियां पाई जाती हैं AI का इस्तेमाल करते हुए, वो क्या-क्या हैं सर?
1: इसमें अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी ये हमारे लिए भी थोड़ी सी दुश्वार है,
0: जी
1: इसमें परेशानी आ रही है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका पहुंचना मुश्किल है, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि डेटा की उपलब्धता, यानी कि अभी हमारे पास पूरी तरीके से डेटाबेस तैयार नहीं हुआ है, डेटाबेस अभी तैयार हो रहा है ग्राम स्तर पे फसलों के हिसाब से, वो तैयार हो जाएगा उसके बाद से फिर हमारी सब चीज़ें आसानी हो जाएंगी कि हमारे किस एरिया के अंदर कौन सी समस्या है भूमि को लेके और किन कीटों का आगमन किस फसल पे कब होता है, ये हमारे पास समस्या बनी हुई है। तो भविष्य में बहुत जल्दी ही ये सब चीज़ें हुई वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, इसमें कृषि विज्ञान केंद्र इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और जल्दी ही ये सब चीज़ें आपके सामने होंगी ताकि जो है हम आसानी से अपने जो AI की जो टूल्स हैं टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकें।
0: जी सर, अब मैं आती हूँ कि सरकार का क्या अंशदान है या योगदान है इसे और बेहतर बनाने के लिए, और जो AI है हमारे सभी किसानों तक उसकी पहुँच आसान हो।
1: अभी हमारे यहाँ न्यू दिल्ली में 6 से 16 फरवरी के बीच में AI समिट
0: आयोजित
1: आयोजित
0: किया
1: की
0: गया
1: गई
0: था,
1: थी,
0: बिल्कुल
1: जिसमें 20 से ज़्यादा मुल्कों ने

0: सलिया, और उसमें ख़ास जो जोर था हमारा वो एआई पर ही था,
1: बिल्कुल
0: और उसके अंदर से भी एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा मतलब भूमिका निभाने के लिए जोर दिया गया है कि इसमें कृषि को जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर में रखा गया है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था इससे सुदृढ़ बनी रहे। और इस बीच में हमारी सरकार इसके लिए बहुत प्रयासरत है, इसरो हुआ और आपका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग हुआ, ये सब मिलके जो है बहुत बड़े जो है काम कर रहे हैं। और इसके लिए सरकार की तरफ से अगर आप कुछ एआई के टूल्स खरीदना चाहते हैं या कुछ लगाना चाहते हैं तो अलग अलग केंद्र सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी अलग अलग स्कीमें इसके लिए क्रियान्वित की जा रही हैं जिससे इसका कृषक जो है फ़ायदा उठा सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि आज कृषि जगत में एआई कितना बड़ा योगदान दे रहा है। फसल उत्पादन में वृद्धि हो रही है, इसकी वजह से रोग और कीटों की पहचान बहुत आसानी से हो रही है। और इरिगेशन, आपने कहा कि स्मार्ट
0: जी
1: सिंचाई होने लगी
0: इस
1: है
0: जी
1: एआई का इस्तेमाल करने की वजह से, और भविष्यवाणी भी सटीक हो रही है
0: जी
1: मौसम की।
0: बिल्कुल सही,
1: कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये, और
0: बिल्कुल
1: मशीनों का सही से उपयोग हो रहा है, और बाजार की जानकारी भी हमारे किसानों तक एआई के जरिए पहुंच रही है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान जागरूक होंगे और
0: जरूर।
1: प्रशिक्षण लेंगे ताकि
0: हाँ
1: एआई का अपनी कृषि में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके। डरने की जरूरत नहीं है कि मनुष्य की जगह
0: बिल्कुल
1: एआई
0: सही
1: लेने
0: जी
1: वाला
0: जी
1: है,
0: ऐसी नहीं है,
1: क्योंकि मनुष्य ही एआई को चला
0: मनुष्य
1: रहा
0: ही
1: है।
0: एआई को चला रहा है
1: बस आपको जागरूक होकर काम करना
0: जी,
1: है।
0: बिल्कुल सही
1: तो सर, आज के कार्यक्रम में आप शामिल हुए डॉक्टर मोहम्मद अवैस जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। मैं सुषमा आप सभी से अनुमति लेना चाहती हूँ। सर, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: प्रियंका बहन। ये तो जानकारी रही कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की भूमिका, और जानकारी दे रहे थे सैयद ओवैस, एक सहायक प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, और उनसे बातचीत कर रही थी हमारी सहयोगी सुषमा शर्मा।
1: बिल्कुल, बातचीत का लाभ तो हमारे किसान भाई लेंगे ही, लेकिन मनोरंजन का भी इंतजार रहता है। तो आपको सुनवाते हैं योगेश कुमार और साथियों से ये रागनी।
2: और ये रागनी का किस्सा रहेगा भाई हरिश्चंद्र तारावती, ये उस मौके की रागनी है जब हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा के कारण सब दान कर चुके होते हैं और खुद को एक शमशान घान के चंडाल के हाथों बेच देते हैं, और वहीं उनकी पत्नी तारावती भी एक घर में दासी का काम करती है। उनकी मुलाकात जब होती है तो किसी मोड़ पे जब मुलाकात होते थे, हरिश्चंद्र अपनी मर्यादा व धर्म के आघातों को याद करते हुए भावुक होकर अपनी पत्नी तारावती से बात करते हैं जिसमें सत्य धर्म व कर्तव्य की परीक्षा को दर्शाया गया है। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

0: प्रियंका बहन, ये तो भाइयों ने रागनी सुनी योगेश कुमार से, और किस्सा था हरिश्चंद्र तारावती का। और योगेश कुमार की गाइस रागनी के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिव नंदन लाल। ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7 बजने को है, अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है।

ने कहा कि परिषद की सफलता की कहानियां अब पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रही हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ दोनों नेताओं की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का स्वागत किया। उन्होंने तटीय क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने, मैंग्रोव संरक्षण तथा आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत के प्रयासों को रेखांकित किया। जापान एशियाई खेलों में आज कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। वहीं 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स। शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
1: प्रियंका बहन कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। देखिए, सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार के साथ साथ अनेक सहकारी संस्थाएं भी किसानों की मदद के लिए काम कर रही हैं। ऐसी ही एक सहकारी संस्था है क्रिपको, यानी कृषक भारती कोऑपरेटिव संस्था, जो सीधे किसानों से जुड़ी है और किसानों की मदद के लिए प्रमाणित बीज, उच्च गुणवत्ता वाले खाद उपलब्ध कराने का कार्य करती है। आज क्रिपको की 46वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, तो आइए सुनते हैं इसी वार्षिक आम सभा पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट।
2: नमस्कार। नई दिल्ली के अशोका होटल में क्रिपको की 46वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्रिपको के अध्यक्ष वी सुधाकर चौधरी, उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, क्रिपको के प्रबंध निदेशक SS यादव, क्रिपको के निदेशक मंडल के सभी सदस्य और पूरे देश से आए सहकार बंधुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। सबसे पहले क्रिपको के प्रबंध निदेशक SS यादव ने सभी का स्वागत करते हुए कहा,
3: आज की यह वार्षिक आम सभा केवल हमारे वित्तीय परिणाम और व्यवसायिक प्रदर्शन की समीक्षा का अवसर ही नहीं, बल्कि यह हमारे सदस्य सहकारी संस्थानों के विश्वास, किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पण और राष्ट्र के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा में क्रिपको के योगदान का उत्सव भी है। आज हम 46 वर्षों की उस यात्रा का उत्सव मना रहे हैं जिसकी नींव सहकारिता, किसान सेवा, राष्ट्रहित और पारस्परिक विश्वास पर रखी गई थी। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान विश्व स्तर पर उर्वरक उद्योग को कच्चे माल की कीमतों, आपूर्ति व्यवस्था, ऊर्जा लागत और बाजार की बदलती परिस्थितियों जैसी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद क्रिपको ने उत्पादन,

0: वृद्धि हुई है और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी करीब 16% पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ी है। यह परिणाम हमारी वित्तीय अनुशासन, लागत पर प्रभावी नियंत्रण और विवेकपूर्ण व्यावसायिक निर्णयों का परिणाम है। विगत अवधि में संस्था की वित्तीय मजबूती, कार्य कुशलता और दीर्घकालिक स्थिरता को लगातार प्राथमिकता दी गई है। आज के ये परिणाम उसी दिशा में किए हुए सामूहिक प्रयासों की सफलता को दर्शाते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 हजीरा प्लांट के कॉमर्शियल प्रोडक्शन का 40वां वर्ष रहा। इस वर्ष हजीरा प्लांट ने अमोनिया और यूरिया के उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। किसानों तक समय पर खाद पहुंचाना कृषकों का केवल व्यावसायिक कार्य ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व है। वर्ष के दौरान कृषकों ने यूरिया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स जिसमें DAP और NPK जैसे महत्वपूर्ण उर्वरक शामिल हैं की रिकॉर्ड बिक्री की है। उर्वरक की गुणवत्ता और समय पर उपलब्धता को लगातार सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा गया है। हम लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। क्रिप्को सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करते हुए किसानों तक समय पर और भरोसेमंद उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: क्रिप्को के अध्यक्ष वी सुधाकर चौधरी ने वर्ष भर की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा,
2: इंडिया रिसीव्ड एन अबव नॉर्मल मानसून सपोर्टिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी अक्रॉस द कंट्री। इस मुश्किल समय में भी क्रिप्को ने पूरी लगन के साथ किसान के सेवा किया है। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड आवर प्लांट्स मेंटेन्ड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस प्रोड्यूसिंग 12.39 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ अमोनिया एंड 21.31 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ यूरिया। बोथ प्लांट्स ऑपरेटेड एट नियरली फुल कैपेसिटी। क्रिप्को ने 45,85,000 मेट्रिक टन कुल बिक्री किया है। ये परफॉर्मेंस हमारी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ और किसान के प्रति कमिटमेंट को दिखता है। फर्टिलाइजर्स की टोटल सेल्स के साथ सोसाइटी ने मिट्टी की सेहत और सही तरीके से खाद देने पर ध्यान दिया, इसलिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी पर भी खास जोर दिया गया। इस परफॉर्मेंस की माध्यम से क्रिप्को ने देश भर की किसान को समय पर फर्टिलाइजर उपलब्ध करने के अपना जिम्मेदारी पूरी लगन से निभाई है। हम सब जानते हैं कि अच्छी फसल के साथ साथ मिट्टी का सेहत भी बहुत जरूरी है। किसानों को क्वालिटी सीड उपलब्ध करना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अच्छा बीज ही अच्छा फसल की बुनियाद होती है। हमारी कोशिश है कि सही प्रोडक्ट के साथ हर किसान तक सही जानकारी सही समय पर मिल जाए। इसके साथ साथ प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा भी हम सबकी जिम्मेदारी है। सहकारिता को मजबूत बनाना और गांव को विकास में योगदान देना क्रिप्को की प्रायोरिटी रहा है। किसानों को समृद्धि, सहकारिता की मजबूती और गांव का विकास ये क्रिप्को का संकल्प है। अब मैं क्रिप्को के जॉइंट वेंचर और सब्सिडरीज की परफॉर्मेंस की बात करना चाहता हूँ। ये सभी कंपनी क्रिप्को के विकसित में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। बिजनेस ग्रोथ के साथ साथ क्रिप्को सहकारिता मंत्रालय की नेशनल कोऑपरेटिव इनिशिएटिव्स को भी सपोर्ट कर रहा है। सहकारिता की सबसे बड़ी ताकत उसके सदस्यों का विश्वास है। 31 मार्च 2024 तक क्रिप्को की कुल मेंबरशिप 9,672 कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। सोसाइटी की पेड अप शेयर कैपिटल 391.1 करोड़ रहा। फाइनेंशियल ईयर 2025-24 में क्रिप्को की टोटल इनकम 16,401 करोड़ 34 लाख रुपया है, जबकि पिछले वर्ष ये 15,694 करोड़ 1 लाख रुपया थी। हमारी इनकम पिछले वर्ष की मुकाबले लगभग 5% बढ़ी है। अंत में मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी सदस्यों का उनके मार्गदर्शन, लीडरशिप और सपोर्ट के लिए हार्दिक आदर व्यक्त करता हूँ।
1: इस अवसर पर क्रिप्को द्वारा शंकर भाई एल चौधरी को सहकारिता शिरोमणि पुरस्कार से

0: सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा,
1: सहकार शिरोमणि का ये जो सम्मान आपने दिया है वो हमारी दूध उत्पादक माताओं बहनों को समर्पित करता है। सहकारिता की बात आती है तो कई लोग बोलते हैं कि ये कोई हमने नया शुरुआत की। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव का 10-15 साल पहले एक सेमिनार था, तभी वहाँ पर अलग अलग संवाद होते रहते हैं और लोग बोलते थे कि क्या सहकार का मॉडल किसने दिया। हो सकता है अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग जनपदों में अलग अलग टाइम पर कोऑपरेटिव का काम की शुरुआत हुई होगी, लेकिन हमारे भारत के रूट्स में, हमारे देश के जींस में सहकारिता है। जैसे ही हम जंगलों से कबीला की ओर आए, कबीला के साथ में रहकर एक छोटी छोटे गांव की रचना की और जिसे दुनिया सभ्य समाज की संरचना बोलते हैं, तो गांव में रहने की शुरुआत के ही उसी टाइम से हमारे रूट्स में सहकारिता रही। कृषि करने की शुरुआत जैसे हुई तो किसान ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं पैदा करता हूँ उनके ऊपर सिर्फ मेरे बच्चों का ही अधिकार है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे गांव में और कोई भूखा है तो इनके लिए भी मैं काम करूँगा। दूध जिसके पास में ज़्यादा है तो वो मानता है नहीं, और किसी के बच्चे भी भूखे नहीं रहने चाहिए, इनके ऊपर इनका भी अधिकार है। ये मॉडल जो था हमारा ग्रामीण मॉडल, वो सहकारिता का मॉडल, और ये सहकारिता से हम साथ मिलकर कर सकते हैं। मान लो कि भारत देश में फर्टिलाइजर इम्पोर्ट कितना कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी मैंने जो खास करके फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दोनों का कुल मिलाकर देखा तो 40% से ज़्यादा हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। या तो हम फर्टिलाइजर इंपोर्ट नहीं कर रहे तो हम गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, या तो रॉक फॉस्फोरस हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते? क्या हमारे पास में स्ट्रेंथ नहीं है? है, हमारे पास में स्ट्रेंथ है। हम जो सस्टेनेबिलिटी के प्रयास करें, हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की और जो हम शुरुआत करें, तो हमारे गाय के गोबर में एक गाय कम से कम 10 किलो से ज़्यादा गोबर देती है। भारत में 30 करोड़ से ज़्यादा गाय भैंस जो है इनका उपयोग करें तो देश की बहुत सारी मात्रा में सोयल की हेल्थ हम ठीक कर सकते हैं।
0: भगवान सिंह यादव को सहकारिता विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा,
2: जो सम्मान मुझे मिला है उसके लिए देश की प्रमुख सहकारी संस्था में हृदय से आभारी हूँ। गुजरात हमारा सहकारिता का गुरु है। पूरे इंडिया में सहकारिता का जो भी कुछ प्रारंभ हुआ है, सफलता मिली है, वो गुजरात से ही मिली है। ये हमारा देश में जो भी कुछ है, जिस हर स्टेट्स में और केंद्र में भी, तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक कि उन्हें सहकारिता का सहयोग ना मिला हो, ये बात कहना चाहता हूँ। और साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि भाई चंद्रकांत सिंह जी जो बहुत प्रिय हैं, उन्होंने इस कृपो का पहले नाम रोशन किया है और अब वर्तमान में भगवान मध्य प्रदेश से भाई भंवर सिंह शेखावत ये नाम रोशन अदा कर रहे हैं। और मैं पुनः ये कह सकता हूँ कि यह है सहकारिता की विंग जो है, कृपकों की विंग है, हमारे किसानों को, किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाएंगे।
0: इस अवसर पर सभी का धन्यवाद करते हुए कृपको के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा,
3: आज कृपको की आम सभा में मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने, जो देश के कोने कोने से आए तमाम प्रतिनिधि यहां उपस्थित होकर के कृपको की आम सभा में भाग लिया, मनोबल बढ़ाया, कृपको के अधिकारियों को काम करने में जो प्रोत्साहन दिया, इसके लिए हम आप सब लोगों के आभारी हैं। माननीय शंकर चौधरी साहब ने अभी आप लोगों के बीच में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के साथ साथ खेती में किस तरीके से लागत है उसको हम कम कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं, हम दूसरे देशों की उत्पादन क्षमता पर इम्पोर्ट करके हम आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। माननीय शंकर चौधरी जी देश के सहकारी आंदोलन के बहुत प्रखर नेता रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने देश में श्वेत क्रांति लाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे महानुभावों के सहयोग और उनके समर्पण के कारण आज हम दुनिया में छाए हुए हैं। उन्होंने देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने की जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे आदरणीय भगवान सिंह जी, जो मध्य प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री भी रहे हैं और इसके साथ साथ विभिन्न संस्थाओं में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाते हुए उनको चेयर भी किया है, आज वो मध्य प्रदेश से सहकारी आंदोलन के बहुत बड़े नेता के रूप में हमेशा जाने जाते हैं, हम आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ हमारे तमाम विशेष अतिथि हैं, जिसमें वहीं से विशाल सिंह जी हैं, सुनील कुमार सिंह जी हैं, मोहन भाई कुंडारिया जी हैं, इन सब लोगों के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। हम अपने सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जिन्होंने पूरे समय संस्था को मजबूत करने में, संस्था की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सभी अधिकारियों कर्मचारियों को हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रबंध निदेशक जी को धन्यवाद देते हैं कि उनके नेतृत्व में क्रिप्को दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है, और हम चाहेंगे कि सब लोग मिलजुल करके देश के सहकारी आंदोलन को मजबूत करने में सभी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आओ हम सब लोग एकजुट होकर के देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, गांव के ग्रामीण अंचल के किसान को मजबूत करने के लिए हम सहकारिता के माध्यम से आगे बढ़ें और देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाएं। सभी लोगों को आज के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इसके साथ ही क्रिप्को की 46वीं आम सभा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। सहयोग विशाल कुमार, दिनेश कुमार और प्रताप सिंह भाटिका, प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर, और कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल।
4: अभी आप सुन रहे थे क्रिप्को की 46वीं वार्षिक आम सभा पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट, और अब करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं ज्ञानेंद्र सरदाना की आवाज़ में ये किसान गीत।

0: खा के थपेड़े बखत के बच्चे।
1: ये तो भाई देखिए, उपदेश सुना ज्ञानेंद्र सरदाना से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सार्वजनिक जीवन पर 25 वर्ष पूरे न के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है एक राष्ट्र जन व्यापी अपन सेवा संकल्प अभियान। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जन सेवा और सुशासन से है। और साथ ही देखिए, योजनाओं की जानकारी किसानों, युवाओं, महिलाओं और मजदूरों तक को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना इसका उद्देश्य है। और साथ ही सामाजिक कल्याण की बात करें तो स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर और जरूरतमंदों की सहायता सेवा कार्य करना।
2: बिल्कुल, और हर वर्ग के और हर उम्र के लोगों को भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि विकास के लिए सभी का विकास साथ में होना ज़रूरी है, चाहे हमारे युवा हों, हमारे ग्रामीण भाई बहन हो या विशेष रूप से हमारे किसान। और किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पर लगातार सरकार काम कर रही है ताकि हमारे जो किसान भाई हैं उनकी आय दुगनी हो सके। और अगर फ़िलहाल की बात करें तो तिलहन किसान मित्र बहुभाषीय व्हाट्सएप सलाहकार सेवा का भी आरम्भ किया गया है, जिसमें व्हाट्सएप के ज़रिए किसान भाई सभी भाषाओं में पर्याप्त जानकारी ले सकते हैं तिलहन फसलों के बारे में।
1: बिल्कुल, इतना ही नहीं, देखिए इस योजना के तहत देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और जो आशा बहुओं का सम्मान भी किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं, लाभार्थियों और बच्चों के साथ मातृ संवाद और पोषण जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही नशा मुक्त युवा अभियान, युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए खेल, रैलियाँ और अनेक आयोजनों का किया जा रहा है। सेवा ज्योतिष कलश यात्रा भी इसके दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में विकसित भारत के संकल्प को लेकर यात्राएं निकाली जा रही हैं। साथ ही पर्यावरण और जल संरक्षण, देश भर में जिलों में श्रमदान के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, जल संरक्षण की शपथ और स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं।
2: बिल्कुल, और अगर तिलहन फसलों की बात करें तो मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन, अन्य कई तरह की तिलहन फसलें हैं जिसको कि आप व्हाट्सएप के ज़रिए जुड़कर सुविधा ले सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं और इसमें जो एक्सपर्ट हैं उनसे डायरेक्ट आप बातचीत कर सकते हैं। ये सुविधा 24 घंटे के लिए आपको उपलब्ध होगी। और अगर नंबर की बात करें तो 4024598180 और आगे 91 लगाना ना भूलें।
1: और देखिए, ऐसे ही एक व्हाट्सएप आयल सीड्स किसान मित्र तेलन किसानों के लिए भारत की पहली राष्ट्रव्यापी बहुभाषी व्हाट्सएप योजना का जो सलाहकार सेवा का आज शुभारम्भ किया गया। माननीय सचिव DARE महानिदेशक ICAR द्वारा 6 फरवरी 2026 को इसका जो उद्घाटन किया गया अधिकृत तौर पर। और आयल सीड किसान मित्र वैज्ञानिक अनुसंधान और कृषक समुदाय के बीच खाई को पाटने के लिए एक आभासी कृषि विस्तार साथी के रूप में डिजाइन किया गया है। यह स्मार्ट खेती की जानकारी के सीधे तरीके हर किसान के फोन तक पहुंचाता है, जिसमें सतत कृषि पद्धतियों और फसल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है।
2: बिल्कुल, इसमें किस्मों का चयन है, फसल प्रबंधन है, कीट व रोग नियंत्रण है, सिंचाई और कटाई से जुड़ी सभी वैज्ञानिक सलाह आप इसके जरिए पा सकते हैं।
1: इतना ही नहीं, देखिए सरकारी योजनाएं, MSP मंडी भाव, बीज सब्सिडी और बीमा योजना की जानकारी भी इसके अंतर्गत, और साथ ही कटाई और भंडारण का सही समय और तेल की मात्रा बढ़ाने के उपाय भी इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। यह सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, अलसी, अरंडी जैसी सभी प्रमुख तलनी फसलों के लिए और किसानों की अपनी भाषा में।
2: बिल्कुल, कहने का मतलब

0: मतलब है कि बुआई से लेकर कटाई तक और बाजार में पहुंचाने तक सारी की सारी जानकारियां इसमें किसान भाइयों को दी जाएंगी, ताकि किसान भाई जो है अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। और आजकल फोन सबके पास है और व्हाट्सअप सबसे आसान जरिया हो गया है जानकारी प्राप्त करने का। अगर व्हाट्सएप पे घर बैठे आपको आसानी से सारी जानकारी मिल जाएगी तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। और अब सुनवाते हैं उपदेश और कलाकार रहेंगे जयप्रकाश शर्मा।
1: ओ मारिया

प्रियंका बहन, ये तो सुना जयप्रकाश शर्मा को। और देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून सामान्य तारीख से 2 दिन पहले यानी 23 सितंबर को ही लौट चुका है, और आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 31 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। और भाई, मौसम को ध्यान में रखते हुए देखिए, अक्टूबर महीना शुरू हो रहा है और यह महीना रबी फसलों की बुआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गेहूं की अगेती बिजाई अगर आप करना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का समय सबसे अनुकूल माना जाता है। सरसों की बुआई अक्टूबर की शुरुआत

0: पखवाड़े में, यानी 1 से 15 अक्टूबर तक पूरी कर लेनी चाहिए। साथ ही भाई नमी का लाभ उठाते हुए अक्टूबर मध्य में चने और मटर की बुआई कर देनी चाहिए। साथ ही देखिए भाई, सब्जियों की आप बुआई करना चाहते हैं तो गाजर मूली की बुआई आप कर सकते हैं, लहसुन और प्याज की भी आप बिजाई कर सकते हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी और टमाटर सितंबर मध्य में तैयार की गई जो गोभी और टमाटर की पौधे इस महीने मुख्य खेतों में रोपित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और कल है शनिवार, और शनिवार को आपका पसंदीदा फ़ोन इन कार्यक्रम हेलोग्राम संसार प्रसारित किया जाता है। तो जो भी भाई रिकॉर्डिंग कराना चाहते हैं या कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, 6:30 पर सुन सकते हैं कार्यक्रम हेलोग्राम संसार।
0: बिल्कुल। और साथ ही देखे भाई, कल के कार्यक्रम की बात जब आपने की तो प्रियंका बहन कल 5:10 पर आनंद ले सकेंगे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी। और ग्राम संसार में ही भाई देखिए, ग्राम हेलो ग्राम संसार के अलावा साथ ही चर्चा करेंगे विश्व गर्भ निरोध दिवस के बारे में और जानकारी देंगे खेलो इंडिया के बारे में। और 7:05 पर सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम।
1: इसके साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम
0: राम राम।
1: राम। कृषि
0: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, वक्त शाम के 7:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं कसलों पर केंद्रित ये कार्यक्रम।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से और स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त शाम के 7:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं अगली गजल जगजीत सिंह की स्वर में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में एक गज़ल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स। वक्त स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 7:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और राजधानी को अधिक हरा भरा, स्वच्छ तथा स्वस्थ बनाने के लिए मिशन ग्रीन दिल्ली के अंतर्गत 70 लाख पौधरोपण का लक्ष्य पूरा किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने डीटीसी बसों के संविदा ड्राइवरों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। दिल्ली में आज रात 10 बजे तक आईटीओ चौक, बहादुर शाह जफर मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, मीरदर्द रोड, रणजीत सिंह मार्ग, रणजीत सिंह फ्लाईओवर, जहांगीर रोड और प्रेस रोड के आसपास यातायात पर प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन रहेगा। और भाजपा ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और राजधानी को अधिक हरा भरा, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए मिशन ग्रीन दिल्ली के अंतर्गत 70 लाख पौधरोपण का लक्ष्य पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये उपलब्धि केवल संख्या पूरी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ाने, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और स्वच्छ हवा के लिए निरंतर प्रयासों का परिणाम है। श्रीमती गुप्ता ने जानकारी दी कि मेगा प्लांटेशन ड्राइव 2026 की शुरुआत इस वर्ष 7 जुलाई को वन महोत्सव के अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की थी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सार्वजनिक स्लॉट बुकिंग सुविधा के माध्यम से 1,80,000 से ज्यादा बुकिंग की गई, जिनमें करीब 1,47,000 नागरिकों ने भाग लेकर 3 लाख से अधिक पौधे लगाए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मिशन ग्रीन दिल्ली वायु प्रदूषण से निपटने और दिल्ली के पर्यावरण में सुधार की व्यापक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्री सिरसा ने कहा कि अब सरकार का अगला ध्यान लगाए गए पौधों के जीवित रहने, संरक्षण और संवर्धन पर होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग की रिपोर्ट के साथ मैं विशाल शर्मा।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: श्री जेपी नड्डा ने कहा कि अब तक आयुष्मान भारत के अंतर्गत करीब 13 करोड़ मरीजों का इलाज किया जा चुका है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की राशि जारी की है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत अब सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जिससे बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को भी लाभ मिल रहा है। आरोग्य मंथन 2026 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने पर दोनों योजनाओं के बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कार दिए गए। श्री नड्डा ने नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री मोबाइल ऐप और सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट एप्लीकेशन भी शुरू किया। दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, स्वास्थ्य संस्थान, बीमा क्षेत्र और विशेषज्ञ शामिल हुए। इसमें इन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को आगे मजबूत करने पर चर्चा जारी है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं प्रशांत कुमार।
1: दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने आज एक विशेष बैठक की। इसमें कंसेशनर यानी किसी निजी कंपनी के जरिए संविदा पर रखे हुए डीटीसी बस ड्राइवरों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की गई। ये बैठक बस ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों के साथ की गई। बैठक में ड्राइवरों द्वारा उठाई गई मांगों के समाधान के साथ ही राजधानी में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के सुचारू संचालन पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कंसेशनर के माध्यम से रखे गए संविदा पर काम करने वाले ड्राइवरों के लिए उचित कल्याण

0: कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। परिवहन मंत्री ने कहा कि कंसेशनर के जरिए अनुबंध पर रखे गए बस ड्राइवरों का कल्याण और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की निरंतरता दोनों ही महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने संबंधित पक्षों से लागू कानूनों और संबंधित रियायत समझौते के अनुसार संविदा पर काम करने वाले ड्राइवरों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा के साथ ही उचित दुर्घटना बीमा की व्यवस्था संभावनाओं पर विचार करने को कहा। उन्होंने अवकाश संबंधी प्रावधानों के संबंध में भी संबंधित पक्षों से विचार करने को कहा है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित वर्ल्ड सेफ्टी 2026 सम्मेलन में रोड सेफ्टी कैंपेन हेलमेट पहनने के परिणाम के लिए आधिकारिक रूप से ऑनरेबल मेंशन से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान सेफ्टी सम्मेलन 2026 अल्ट्रा शॉर्ट वीडियो श्रेणी में प्रदान किया गया। सरकार ने बताया कि इस सम्मान में दोपहिया वाहन चालकों के बीच हेलमेट के महत्व को रेखांकित करने और बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की संभावित परिणामों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार संचार अभियान को मान्यता दी गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इनमें NDMC कन्वेंशन सेंटर में परिषद के कर्मचारियों के साथ संवाद, चाणक्यपुरी स्थित अनुपम कॉलोनी जीरो वेस्ट मॉडल क्षेत्र का दौरा और धर्म मार्ग स्थित दंत चिकित्सालय में दंत स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का उद्घाटन शामिल था। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने समर्पित NDMC परिवार के साथ संवाद किया और उन सफाई कर्मचारियों, माली और अभियंताओं की सराहना की जो राष्ट्रीय राजधानी के हृदय स्थल को स्वच्छ, हरित और सुव्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने स्वच्छता ही सेवा अभियान में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर NDMC को बधाई दी। श्री संधू ने विश्व स्तरीय दिल्ली के लिए 4 स्तंभों वाले रोड मैप की रूपरेखा प्रस्तुत की, साथ ही बेहतर प्रकाश व्यवस्था और पिंक फोर्स की तैनाती के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित सड़कों, AI सक्षम त्वरित नागरिक सेवाओं और साझा जिम्मेदारी के रूप में जन भागीदारी पर बल दिया।
3: सारे कर्मचारी NDMC वाले अच्छा काम करते हैं। अभी आपने ब्रिक्स समिट देखी, उसमें सबने अप्रिशिएट किया। मैंने सिर्फ उनको यही प्रेरित किया कि जो आप ब्रिक्स में डिलीवर कर सकते हो वो बाकी दिनों में भी दिल्ली को साफ सुथरा रखना, और ये भी कॉपरेशन उनसे मांगी कि NDMC एरिया में पूरी सुरक्षा।
2: श्री संधू ने NDMC क्षेत्र में स्थित अनुपम कॉलोनी का भी दौरा किया, जहां उन्होंने निवासी कल्याण संघ के सदस्यों से बातचीत की और स्रोत स्तर पर 100% कचरा पृथक्करण तथा मौके पर कंपोस्टिंग के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। इसके अलावा श्री संधू ने धर्म मार्ग पर दंत स्वास्थ्य जागरूकता और निवारक मौखिक स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने दंत विशेषज्ञों से बातचीत की और विशेष रूप से तैयार किए गए जागरूकता स्टॉलों का दौरा भी किया। शिवांग के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए रजनी शुक्ला।
0: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज सुल्तानपुरी क्षेत्र का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। श्री वाही ने क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने सुल्तानपुरी में स्थित जर्जर सामुदायिक भवन को तोड़कर उस पर सामुदायिक कार्य के लिए एक योजना बनाने के आदेश दिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने आज मेरठ के विहान बालिका बालक आवासीय विद्यालय के लगभग 100 से अधिक विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए एक विशेष शैक्षिक यात्रा का आयोजन किया। यात्रा का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से परिचित कराना और स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत स्वच्छता को अपने व्यवहार तथा व्यक्तिगत जिम्मेदारी के तौर पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि आज रात 10 बजे तक ITU चौक, बहादुर शाह जफर मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, मिरदर्द रोड, रणजीत सिंह मार्ग, रणजीत सिंह फ्लाईओवर, जांगीर रोड और प्रेस रोड के आसपास यातायात पर प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू रहेंगे। पुलिस ने बताया कि ये व्यवस्था

0: मार्ग रणजीत सिंह फ्लाईओवर, जहांगीर रोड और प्रेस रोड के आसपास यातायात पर प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू रहेंगे। पुलिस ने बताया कि ये व्यवस्थाएं दोनों कैरिजवे और सर्विस रोड पर भी लागू रहेंगी। यातायात पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे निर्धारित समय के दौरान इन मार्गों पर जाने से बचें और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आज इन मार्गों पर नो पार्किंग व्यवस्था लागू रहेगी। पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि नो पार्किंग क्षेत्र में खड़े वाहनों को टो किया जाएगा और नियमों के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।

0: हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। एक रिपोर्ट।
1: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय

भाग लिया और उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाया। विशेषज्ञों ने स्वस्थ जीवन शैली के बारे में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी दिया, जिससे प्रधानमंत्री के स्वस्थ भारत और आरोग्य भारत के संकल्प को साकार करने में योगदान मिला है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा है कि भारत का नदियों के साथ संबंध हजारों वर्ष पुराना है। देश के शहर, सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी रही हैं। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में 7वें नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यमुना का पुनरुद्धार केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक अभियान के रूप में भी आगे बढ़ाना होगा। दिल्ली नगर निगम स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत कल शाहदरा दक्षिण जोन में धूल मुक्त और पार्क स्वच्छता अभियान आयोजित करेगा। ये अभियान सुबह 9 बजे से न्यू राजधानी एनक्लेव स्वास्थ्य विहार और न्यू प्रीत विहार में आयोजित किया जाएगा। और राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल हल्की वर्षा होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और राजधानी को अधिक हरा भरा, स्वच्छ तथा स्वस्थ बनाने के लिए मिशन ग्रीन दिल्ली के अंतर्गत 70 लाख पौधरोपण का लक्ष्य पूरा किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है।

जी हाँ दोस्तों, समय कभी नहीं रुकता है और कुछ मुलाकातें ऐसी ही होती हैं। कुछ मुलाकातें इतनी खास होती हैं कि अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत पुराने मिले हों। 5 साल, 3 साल, 2 साल, कई मुलाकातों को इतने साल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम बहुत पुराने मित्र हैं या बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। और दोस्तों, वाकई में एक मुलाकात ज़रूरी होती है। हम हर बार सोचते हैं कि हम अपने ख़ास से मिलें, कुछ बातें करें, लेकिन समय जो है ना वो बीत जाता है और हमारे पास वही रहता है एक एक्सक्यूज़ कि हमारे पास समय नहीं था। तो एक मुलाकात ज़रूरी बनाइए। अगर किसी वीकेंड पे या किसी दोस्त से मिलना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, मुलाकात ज़रूरी है। जैसे आपकी और हमारी मुलाकात आज निश्चित थी, हम आपसे मिल रहे हैं और आपके कुछ खूबसूरत नगमे जो आपकी पसंद के वो प्ले कर रहे हैं। तो मुलाकात अगर किसी से अधूरी रह गई है तो ज़रूर मिले।

जी हाँ श्रोताओं, सिर्फ तुम फिल्म से जसविंदर नरुला की आवाज़ में ये आपने गीत सुन रहे हैं आप, और हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, मुलाकात की। बहुत छोटा सा शब्द है ना मुलाकात, लेकिन इसका दायरा इंसान की पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है। जी हाँ, पूरी ज़िंदगी जितनी बड़ी है, उस मुलाकातों में कितनी ऐसी मुलाकातें होती होंगी जो कुछ अधूरी रह जाती होंगी, या फिर हम अभी भी उनको पूरा करना चाहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मिलने पर। ये वक्त, ये शब्द सुनते ही ऐसा लगता है ना जैसे हाँ, हम किसी पसंदीदा शख्स से मिल आए हैं बस इसी वक्त। किसी के मिलने का सबसे बड़ा ख्याल क्या आता है आपको किसी के मिलने से? और साइकोलॉजी ये कहती है कि किसी इंसान से आप अगर 7 सेकंड में ही उसके इम्प्रेशन के बारे में जान जाते हैं, आप तय कर लेते हैं कि हमें वो इंसान कैसा लग रहा है सिर्फ शुरुआती 7 सेकंड में।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर आप हमें सुन रहे हैं। कार्यक्रम है गीत मालिका और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम रोज सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, मेट्रो में, ऑफिस में, बसेस में, लिफ्ट में, पर क्या वो वाकई में मुलाकात होती है या सिर्फ एक दूसरे के पास से गुजर रहे लोग? असली मुलाकात तो वो है जहाँ दो नज़रें मिले, दो दिल जुड़े और वक्त ठहर जाए।

जी हाँ दोस्तों, अलका याग्निक और उदित नारायण की खूबसूरत आवाज़ों के साथ ये गीत आपने सुना फिल्म तेरे नाम से। हम बात कर रहे थे मिलना, वाकई में तुमसे मिलना अच्छा लगता है, लेकिन ये बात ऐसा लगता है कि सुने हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। हम बात कर रहे थे मिलने की, तो आजकल का जो समय है हम घंटों चैट पर बात कर लेते हैं, ऐसा ही रहता है ना। चैट पे, व्हाट्सएप पे, इमोजी के साथ में हम बहुत सारा वक्त बिता लेते हैं। उन इमोजीज को भेजकर हम रो लेते हैं, हंस लेते हैं, लेकिन आमने सामने की जब बारी आती है मिलने की, तो कहीं ना कहीं हम अपने फ़ोन के पीछे ही छुप जाते हैं। और दोस्तों, इसे ही कहते हैं डिजिटल प्रेजेंस और फिजिकली एब्सेंस। भाई समय निकालिए, फिजिकली सभी से मिलना शुरू करिए, क्योंकि डिजिटल पे तो आप हमेशा रहते हैं, व्हाट्सएप पे, मैसेजेस पर, लेकिन मिलने का जो दौर है ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। उसे फिर से शुरू करते हैं।

कहा है तुझको चाहत से ज्यादा, समझा है तुझको मोहब्बत से ज्यादा, ये मैं जानता हूं या दिल जानता है।

चांद मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ।

जी हाँ दोस्तों, सोनू निगम की आवाज़ में अभी आपने ये सॉन्ग सुना और ये एल्बम थी जान। वाकई में किसी का मिलना कुछ इस कदर हो जाता है कि बस वक्त ठहर जाए और ये घड़ी कभी ख़त्म ना हो। सालों बाद जो मिले तो वक्त ठहर सा गया, जो चेहरे बदल गए थे लेकिन एहसास वहीं का वहीं रह गया। इन्हीं मुलाकातों को अच्छा कहा जाता है। व्हाट्सएप या डिजिटल की दुनिया में हम मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हमारे पास सिर्फ एक बहाना होता है कि भाई वक्त नहीं है, लेकिन जब मुलाकात होती है तो ऐसा लगता है कि वक्त बस यहीं पे ठहर जाए और उसके बाद ढेरों बातें हो जाती हैं।

कुछ बातें अधूरी रह गई हैं, कुछ आंखों ने कह दी है, बस यूं समझो एक मुलाकात में सदियों की दास्तान हो गई है।

जी हाँ दोस्तों, हिमेश रेशमिया और साथ में श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत फिल्म आपका सुरूर से, और इस गीत को संगीत भी हिमेश रेशमिया ने ही दिया। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम में प्रसारित सभी गीत आप पसंद कर रहे होंगे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। वक्त स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ चेतना। मिले तो थे बस कुछ पलों के लिए वो, मिले तो थे कुछ पलों के लिए वो, पर वो मुलाकात सदियों की खुशबू छोड़ गई।

जी हाँ दोस्तों, मुलाकात हम सोचते रह जाते हैं कि भाई उनसे आज मिलेंगे, लेकिन वो वक्त गुजर जाता है और मुलाकात जो है ना वो बाकी रह जाती है। एक कप चाय का और ढलती शाम और वो एक खूबसूरत शख्स जिसके साथ आप मिलना चाहते हैं, इससे ज़्यादा खुशनुमा कोई शाम शायद ही होगी। मुलाकात की भी एक अपनी अलग से ही एक तसल्ली सी होती है। आप सभी जानते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर आप एक दूसरे को देख तो सकते हैं जनाब, लेकिन हाथ से हाथ तो नहीं थामे जा सकते। उसके लिए तो आपको मिलना ही पड़ेगा और मिलना चाहिए भी।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आप गीत सुन रहे कुमार सानू की आवाज़ में और साथ में हल्का याग्निक, और हम बात कर रहे थे मिलने के ऊपर। भाई मुलाकात ज़रूरी है, एक मुलाकात बेहद ज़रूरी है। हम भाग दौड़ और अपनी बिजी लाइफ स्टाइल में बिल्कुल भूल जाते हैं कि कुछ मुलाकातें बहुत ज़रूरी होती हैं रिश्तों को कायम रखने के लिए। तो जिनसे भी मुलाकात नहीं हो पा रही है आपकी, भाई फ़ोन उठाइए, अपना मुलाकात को सेट कीजिए, मिलने का जो टाइम है उसको बनाइए कि कब मिला जा सकता है। वीकेंड आ रहा है, कम से कम आप वीकेंड पर तो एक मुलाकात बनती है जनाब। फ़िलहाल वक्त जो है वो स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8 बजकर, माफ़ कीजिएगा, 8 बजकर 40 मिनट होने को हैं और जाने का वक्त हो गया इस कार्यक्रम से। लेकिन हमारी मुलाकात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, मिलेंगे आपसे 11 बजकर 10 मिनट पर, लेकर कार्यक्रम आपकी फरमाइश है और उस मुलाकात को बरकरार रखेंगे, जारी रखेंगे रात्रि के 12 बजे तक। फ़िलहाल आपको इस आखिरी गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। वक्त स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक जीता। गुरवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से।

0: रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री इस समय नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि किस प्रकार इस संकल्प को आगे रखते हुए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया है।
2: पहले भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना, अलग अलग योजनाएं तैयार करती थी, प्रशिक्षण देती थी और सरकार को अपनी अपनी सलाह देती थी। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए कई बार सुझाव दिए गए थे। 1999 की करगिल समीक्षा समिति और उसके बाद बने मंत्रियों के समूह ने भी इस दिशा में बदलाव की सिफारिश की थी। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय होगा।
1: आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है।
2: दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने CDS का पद बनाने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया, जिसका प्रमुख CDS को बनाया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि CDS की नियुक्ति से सरकार को सैन्य मामलों पर सलाह लेने के लिए एक ही प्रमुख अधिकारी से संपर्क करने की सुविधा मिली।
3: ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट होने के कारण सरकार को जो भी एडवाइस देना है, सरकार को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, खबर चाहिए, एडवाइस चाहिए, एक आदमी जो पूरा सब कुछ संभाल सकता है, तो इसीलिए CDS का होना निहायत जरूरी था।
2: CDS के पद के सृजन होने के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और समन्वय और बेहतर हो गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। नागालैंड के 9 जिलों में भी इसे बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी अफस्पा

0: बढ़ाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: हमारा रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ को पार कर गया है और इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आज यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं। अमेठी में बनी AK-203 एसोल्ट राइफल आज नक्सलवादी और टेररिस्टों की नींद उड़ा चुकी है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है।
2: आज जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा।
0: ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पिम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला महिला स्व सहायता समूहों, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बिक्री का मंच प्रदान करेगा। विजयवाड़ा में उन्होंने कहा कि ये मेला 8 से 22 अक्टूबर तक लगभग 600 स्टॉलों के साथ आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4030 अम्बेडकर प्रतिमा स्थलों के विकास के लिए 403 करोड़ रुपए जारी किए हैं। योजना के पहले चरण में 403 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में इस प्रतिमा स्थलों कुल मिलाकर 4030 स्थलों का विकास किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। विदेश मंत्री ने एक अन्य बैठक में खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉ. जयशंकर कल महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषण को अपनाए जाने का स्वागत किया। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के प्रारंभ का स्वागत किया है। इसकी घोषणा इस वर्ष 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के समुद्री पर्यवेक्षकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। शंघाई में वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा

0: महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से भी अधिक है। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और बहराइच जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का अनुमान है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
1: जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सुरुचि ने कहा कि इस जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: टीम वर्क बहुत ही अच्छा है, मुझे मेरे टीम पार्टनर पर पूरा भरोसा था कि वो अच्छा ही करेगा और हम अपना 100% देंगे तो हमारे

0: बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आएगी और ये मेडल जीतने के लिए कॉन्फिडेंस मुझे वर्ल्ड कप से मिला है और अभी एशियन गेम्स में जीता है तो शायद ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे कॉन्फिडेंस देगा।
1: 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है।
2: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल केंद्र प्रायोजित इस योजना में गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000

0: center extends AFSPA in disturbed areas of Manipur, Nagaland and Arunachal Pradesh for another 6 months. External Affairs Minister S. Jaishankar calls for text-based negotiations to ensure meaningful UN reforms, criticizes those opposing change. And at Asian Games in Japan, India's overall medal tally reaches 23 with 2 gold, 9 silver and 12 bronze. Pair of Kamaljeet and Suruchi Singh clinch gold in mixed team 10-meter air pistol event. Long-distance runner Gulveer Singh wins silver in men's 10,000-meter race. Baranika Ellen Govan bags bronze in women's pole vault. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देही इलाकों में तब्दीली और ख़वातीन का खुद कफील होना भारत की तरक्की की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म ने समाजी इस्लाहात और मुस्बत तब्दीली की अहमियत को उजागर किया। मरकज़ ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के शोरिज सदा इलाकों में AFSPA को अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में बामानी इस्लाहात को यकीनी बनाने के लिए मतन पर मबनी मुज़ाकरात पर ज़ोर दिया है। उन्होंने तब्दीली की मुखालफत करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत के तमगों की मजमूई तादाद 23 हो गई है। इसमें सोने के 2, चांदी के 9 और कांसे के 12 तमगे शामिल हैं। कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने मिक्स्ड 10 मीटर के एयर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। तवील फास्ते तक दौड़ने वाले खिलाड़ी गुलवीर सिंह ने मर्दों की 10,000 मीटर की दौड़ में चांदी का तमगा हासिल किया है। वहीं बारानिका एलन गोवन ने खवातीन के पोल वॉल्ट में कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत के शहरों और गांवों के दरमियान की दूरी में खातिरख्वाह कमी आई है। उन्होंने देही बुनियादी ढांचे में नुमाया बेहतरी का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क भर में खवातीन बड़े पैमाने पर खुद कफील और माशी तौर पर बाइख्तियार बन रही हैं। सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वड़नगर की यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए आज वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात कही। जनाब मोदी ने सामाजिक खिदमत, सामाजिक इस्लाह और मुस्बत तब्दीली की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर किसी की शमूलियत और तआवुन से ही विकसित भारत का ख्वाब पूरा हो सकता है। जनाब मोदी ने वाज़े किया कि वड़नगर से उन्हें वो इकदार मिली हैं जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को शक्ल दी है, जबकि काशी ने उन इकदार में अपना रंग भरा है। जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि नौजवान अफराद भी खिदमत के इस सफर पर निकले हैं।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: बातचीत के दौरान यात्रियों ने वज़ीर-ए-आज़म से अपने तजुर्बात बयान किए। इस दौरान जनाब मोदी ने यात्रियों को अपने तजुर्बात डायरी में दर्ज करने का मशवरा दिया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में बामानी इस्लाहात के लिए मतन पर मबनी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर किसी तहरीरी मतन के बगैर मुज़ाकरात जारी रहते हैं तो इसका मकसद सिर्फ वक्त हासिल करना और इस्लाहात के अमल को मज़ीद मौक़र करना रह जाएगा। उन्होंने कहा कि अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में ढांचा जाती इस्लाहात में ताख़ीर पर दुनिया भर में बढ़ती हुई बेचैनी इस बात की निशानदेही करती है कि इस्लाहात की मुखालफत करने वाले अनासिर अक़वाम-ए-मुत्तहिदा को मजबूत बनाने की बजाय महज अपने मफादात के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क में अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की 81वीं जनरल असेंबली के मौके पर इख्तलाफात और रुकावटें, बदलती हुई दुनिया के लिए फासले मिटाना और पुल की तामीर के उनवान से मुनक़िदा वजारती मीटिंग से खिताब कर रहे थे। इदारे की पेशरफ्त में रुकावट बनने वाले तरीक़ेकार की मुश्किलात का जिक्र करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के इदारा जाती ढांचे में तब्दीली की इज्तिमाई ख्वाहिश मज़ीद मजबूत हुई है। डॉक्टर जयशंकर ने अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में ढांचा जाती इस्लाहात के मुतालबे का दिफा करते हुए कहा कि यह मुतालबा अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के ख़िलाफ़ किसी अदावत की वजह से नहीं बल्कि इस इदारे को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश से पैदा हुआ है। वज़ीर-ए-ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की 81वीं जनरल असेंबली के मौके पर

0: अपनी भरपूर सिफारती सरगर्मियां जारी रखीं। डॉक्टर जयशंकर ने आर्मेनिया, बारबाडोस और इराक के अपने हममनसबों के साथ अलग अलग मीटिंगें कीं। इसके अलावा पनामा के सदर से भी उन्होंने मुलाकात की। सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने अपनी मीटिंगों की तफसीलात शेयर करते हुए बताया कि बातचीत में दोतरफा तआवुन, इलाकाई हालात व वाक़यात और वसी तर बैनुल अक़वामी उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। ये हालिया मीटिंगें अक़वामे मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के दौरान डॉक्टर जयशंकर की वसी तर सिफारती सरगर्मियों का हिस्सा हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ खितों के रहनुमाओं और वज़राए खारजा के साथ दोतरफा ताल्लुकात, इलाकाई हालात और कसीर फरीकी तआवुन समेत मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया। वजारत खारजा में इकतसादी ताल्लुकात के सेक्रेटरी सुधाकर दलेला ने अक़वामे मुत्तहिदा की 81वीं जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर कम तरक्की याफ्ता मुल्कों LDCs की सालाना वजारती मीटिंग में शिरकत की। सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत खारजा ने कहा कि मीटिंग के दौरान भारत ने कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ अपनी मुस्तहकम और पायदार शराकत दारी के अज़्म का इआदा किया है। सुधाकर दलेला ने कम तरक्की याफ्ता मुल्कों की पायदार तरक्की के लिए आसान और काबिल रसाई माली वसाइल, रोज़गार के मौके पैदा करने के अलावा घरेलू पैदावार में सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन पर जोर दिया। सेक्रेटरी मौसूफ ने सेंडाई फ्रेमवर्क पर अमल दरामद, कुदरती आफात और आबोहवा की तब्दीली के असरात से निमटने के लिए आसियान का जामे तरीक़ेकार के उनवान से मुनक़िदा खसूसी प्रोग्राम से भी खिताब किया। वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सी बी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की 81वीं जनरल असम्बली के मौके पर समंदर की सतह में इजाफे से कुर्रे अर्ज़ की बका को लाहक खतरात से निमटने के मौजू पर मुनक़िदा आला सतह के मुकम्मल इजलास में भारत का मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने समंदर की सतह में इजाफे से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा के एलामिये को अपनाए जाने का खैर मकदम किया और समंदर से मुत्तसिल इलाकों को आबोहवा की तब्दीली के खतरात से महफूज बनाने, मैंग्रोव के तहफ़ और कुदरती आफात से महफूज बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए भारत की कोशिशों को उजागर किया। उन्होंने मसावात पर मबनी मुश्तरका लेकिन मुख्तलिफ जिम्मेदारियों और मुतालिका सलाहियतों की अहमियत को भी उजागर किया। जनाब सी बी जॉर्ज ने समंदर के कानून से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा के कन्वेंशन UNCLOs की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि समंदरी हदूद मुस्तहकम रहनी चाहिए और जज़ीरानुमा और साहिली मुल्कों की ममलकती हैसियत और ख़ुद मुख्तारी का तसलसल बरकरार रहना चाहिए। मरकज़ ने मुसल्ला अफवाज के खसूसी अख्तियारात के कानून 1958 को मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के शोरिश ज़दा इलाकों में मजीद 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ये फ़ैसला 1 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। मणिपुर में वजारत दाखिला ने 13 पुलिस स्टेशनों के तहत आने वाले इलाकों को छोड़कर तमाम रियासत में AFSPA को नाफिज करने का फ़ैसला किया है। इन ज़िलों में दीमापुर, न्यूलैंड, चिमोई, केडिमा, मोन और मेलुरी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलैंड और लॉन्गडिंग ज़िले और आसाम की सरहद से मुतसिल नमसाई ज़िले में नमसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस स्टेशनों के मातहत इलाकों में भी AFSPA नाफिज किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पहल के तहत गुज़िश्ता 12 साल की हुसूलियाबियों को आज उजागर किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस पहल ने मेड इन इंडिया, भारत में सरमायाकारी और भारत से ज़्यादा बरामदात को फ़रोग दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये तब्दीली सभी शोबों में नज़र आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि मेक इन इंडिया का ताल्लुक बुनियादी ढांचे, एंटरप्राइज़ और जिद्दत तराजी से है जो भारत को फलने फूलने और खुशहाल बनने के काबिल बनाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल कर रहे हैं जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी हैं और इस पुख्ता अहद का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नज़रिए के तहत हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। आज खसूसी सीरीज़ में इस नज़रिए के जरिए दिफाई अमले के सरबराह के अहदे की तश्कील का जायज़ा पेश किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूँ। इस विषय के जो जानकार हैं, वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग कर।
2: इससे पहले भारत के दिफाई अफवाज के 3 शोबे, बर्री अफवाज, बहरिया और फजाइया, अलग अलग मनसूबाबंदी, तरबियत और खरीदारी का अमल अंजाम देते थे और हुकूमत को अलहदा तौर पर मशवरे दिया करते थे। साल 1999 की कारगिल जायजा कमेटी की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा उन्हें मरबूत करने से मुतालिक तजवीज़ें पेश की जाती रहीं, जिसे वज़रा के ग्रुप ने भी उठाया। ताहम किसी एक अफसर को तीनों खिदमात को हुक्म देने का इख्तियार नहीं था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को योम आज़ादी के मौके पर अपने खिताब में लाल

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफ्सपा को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
2: हमारा रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ को पार कर गया है और इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आज यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं। अमेठी में बनी AK-203 असोल्ट राइफल आज नक्सलवादी और टेररिस्टों की नींद उड़ा चुकी है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड ने व्यापारियों के कल्याण, कारोबार सुगमता, डिजिटल सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, केंद्र राज्य समन्वय और निर्यात संवर्धन से जुड़े उपायों की समीक्षा की है। बोर्ड की 11वीं बैठक में वस्तु और सेवा कर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, व्यापारियों की शिकायतों के निवारण, खुदरा विक्रेताओं, निर्माताओं, निर्यातकों तथा सेवा प्रदाताओं के लिए संस्थागत सहयोग मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। शंघाई में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं माटी के रंग। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे विजया भारती के गाए कुछ भोजपुरी गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के रंग, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुना विजया भारती झा का गायन, भोजपुरी

गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24 इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंजन। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे नील रंजन मुखर्जी का गाय गिटार वादन राग चंद्रकौंस।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में अभी आप सुन रहे थे नील रंजन मुखर्जी का गिटार वादन राग चंद्रकौंस।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स।

0: कार्ड्स पर। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर को अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में आयोजित 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य के सिविल सचिवालय से सोमनाथ यात्रा 2026 को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजीव गांधी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सहित विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लगभग 40 प्रतिभागी इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। शंघाई में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि वर्ल्ड स्किल्स शंघाई में टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से अधिक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। जी हाँ, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम के साथ आज मैं हूँ आपके साथ।

दिल की बात दिल तक पहुंच जाती है तो फिर ऐसा महसूस होता है कि हमने जो दिल में तमन्ना की है वो तमन्ना तो पूरी हो ही गई। और ऐसे ही आपकी तमाम तमन्नाओं को आज हम पूरा करेंगे आपकी फरमाइशी गीतों को सुनवाकर और कार्यक्रम में आपके नामों को शामिल करके। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ, और इस गीत की भी फरमाइश कहाँ से आई है इस गीत के बाद ज़रूर बताएंगे।

यहाँ उदित नारायण की आवाज़ जो है वो अगर हम जब भी सुनते हैं तो दिल में एक एहसास ऐसा होता है कि मोहब्बत ना भी हो किसी से तो मोहब्बत हो जाए। और ये जो गीत आपने सुना ये तो बहुत खूबसूरत गीत है ही, फिल्म सिर्फ तुमसे, और जिसकी फरमाइश भी हमें मिली है, जाकिर मौलानी साहब ने इस गाने की फरमाइश की है। और इसके साथ साथ किशन सपकाल, सुधाकर जाधव, मोहम्मद फरीद अंसारी, सतीश अनेजा, मोहम्मद फरीद अंसारी के साथ साथ नवी हसन और मेहर अरोड़ा ने भी इस गीत की फरमाइश की थी। और ऐसे ही कई जो है नाम कई सारे गीतों के साथ जुड़े हुए हैं जिनको हम इन लेने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

जी हाँ, ऐसे ही बहुत खूबसूरत एहसासों के साथ ये जो गाने लिखे जाते हैं, कहीं ना कहीं हर दिल की आरजू होती है, हर दिल का एहसास होता है। और शब्दों को किस तरह से इतनी खूबसूरती से तराश कर एक गीत का रूप दे देते हैं, और जब हम ये गीत सुरों के साथ सुनते हैं, साजों के साथ सुनते हैं, तो बहुत खूबसूरत हमें ये लगते हैं। और कहीं ना कहीं यह हमारे दिलों से, हमारे जज्बातों से जुड़ जाते हैं। कहते हैं ना कि उम्र दराज मांग ली, मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरजू में कट गए और 2 इंतज़ार में। और इंतज़ार की घड़ियां जो भी हैं, बहुत सारे एहसासों के साथ होती है कि जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं तो हमारे दिल में उसके लिए प्यार भी है, उम्मीद भी है, यादें भी हैं जो रह रहे के उस इंतज़ार की घड़ियों में यादों का एक कारवां सा अपने जहन में चलता रहता है। जी हाँ, और इस अगला जो गीत आप सुनेंगे वो भी बहुत ही खूबसूरत है, और इस गीत की जो फरमाइश आई है वो है

अमित राज गर्ग की, और हिसार हरियाणा से इन्होंने फरमाइश की है इस गीत की। और इन्होंने कहा है कि आज इनका बर्थडे भी है, जन्मदिन भी है, तो हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहते हैं कि भाई जिसका इंतज़ार आप कर रहे हैं उस इंतज़ार की घड़ी जल्द ख़त्म हो।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से

0: दाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
0: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

जी साथियों, और इन्हीं खूबसूरत गीतों के साथ जब आपके मैसेजेस हमें मिलते हैं और हम आपका कार्यक्रम में नाम लेते हैं, तभी ये कार्यक्रम पूरा होता है। जी हाँ, अगला हमें मैसेज मिला है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, और नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल से हमें मैसेज किया है अकरम हुसैन, जिन्हें प्रिंस डाक बाबू के नाम से भी जानते हैं। बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा और कलेर बिहार से हमें मैसेज किया है मोहम्मद आसिफ खान, निखत परवीन ने। अगला मैसेज आया है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बहन शाह, राजेंद्र जी शाह से। और इन सबका जो मैसेज आया है वो है पद्मा टॉकीज, नेपा नगर, मध्य प्रदेश से। शिव मंदिर हकीकत पुरा मऊ से हमें मैसेज किया है मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने। और कार्यक्रम में अगला नाम हम लेंगे कैथल हरियाणा से, हमें मैसेज किया है जयवीर सिंह ठाकुर ने और इनके साथ हैं अनिल शर्मा। सेक्टर 67 मोहाली से हमें मैसेज किया है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप ने। और इन्हीं के साथ कालका से भी हमें मैसेज मिला है शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का।

और आपका भी जो प्यार है वो हमेशा बरकरार रहता है, हमेशा बना रहेगा, यही हमारी उम्मीद भी रहती है। और हमारे जो श्रोता हैं वो अपना प्यार इजहार करते हैं हमें मैसेज करके, अपने गीतों की फरमाइश करके, क्योंकि यही एक तरीका है, यही एक कह सकते हैं कि माध्यम भी है जो आपको हमसे जोड़े रखता है, आपकी फरमाइशी गीतों के साथ साथ, आपके नाम के साथ साथ। और हमारी कोशिश रहती है कि समय के साथ साथ हम गीतों को शामिल तो ज़रूर करें, लेकिन साथ ही साथ आपके नामों को शामिल करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। सिद्धार्थ गुंडाने का हमें मैसेज आया है राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से, और इनके साथ है अर्चना गुंडाने, प्रणय कुमारी प्रसिद्धि, हीरामंड शेंडे जी, और साथ है प्रतिभा गुंडाने। कार्यक्रम में और नाम भी हम शामिल करेंगे। फातिमा कॉलोनी से, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हमें मैसेज किया है एड नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद ने। और कार्यक्रम में जो अगला मैसेज है वो है

गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का, और साथ हैं रेखा देवी सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, रिमी, तनुश्री गुप्ता, बेबी अनविका, तनुश्री गुप्ता, अभय कुमार सिन्हा। और ये जो मैसेज हमें मिला है वो है वाइट फील्ड बेंगलोर से, रेखा बसंत कुमार सिन्हा का भी हमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैसेज मिला है। और अगला जो मैसेज है, नवाज़ कॉलोनी इंदौर से मैसेज आया है, कुमारी वंदना मराठा भाऊ, मराठा पूजा, रेखा रघुवंशी, निशा बल्लन रघुवंशी, ललिता, जगदीश चौहान, चंदा, युवराज वानखेड़े ने हमें मैसेज किया है। और गांव बिटोडा भोयर तहसील से भी हमें मैसेज मिला है, और वाशिम पश्चिम विंध्यर्भ से भी मैसेज आया है, योगी राज मस्के, श्रीहरि मस्के, इंदुमती मल्हार, कविता मोहन, विशाल कुशल, गोपाल श्याम, गोविंद मस्के और इनके साथियों ने हमें मैसेज किया है। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं और अगला गीत सुनते हैं।

इतनी खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश से मुझे यानी तरन्नुम जहां को दीजिए इजाज़त। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर 12 बजने वाले हैं। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब समाचार होंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से

0: गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियाँ आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड ने व्यापारियों के कल्याण, कारोबार सुगमता, डिजिटल सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, केंद्र राज्य समन्वय और निर्यात संवर्धन से जुड़े उपायों की समीक्षा की है। बोर्ड की 11वीं बैठक में वस्तु और सेवा कर, GST, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, MSME, व्यापारियों की शिकायतों के निवारण, खुदरा विक्रेताओं, निर्माताओं, निर्यातकों तथा सेवा प्रदाताओं के लिए संस्थागत सहयोग मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 SIR के अंतर्गत 29 और 30 सितंबर को दिल्ली के कॉलेज, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करें। मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए पंजीकरण के लिए योग्य 18 से 25 साल की उम्र के छात्रों को फॉर्म 6 भरने में बूथ लेवल ऑफिसर BLO सहायता करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आवश्यक फॉर्म और सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, आवेदनों का रिकॉर्ड रखने, दूसरे जिलों या विधानसभा क्षेत्र से संबंधित फॉर्म संबंधित अधिकारियों को भेजने और शिविरों का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया है। शंघाई में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना आशा भोंसले की आवाज़ में फिल्म एक नया रिश्ता से। तो हम बात कर रहे थे खयाम साहब पर। खयाम साहब का पूरा नाम था मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी। इनका जन्म 18 फरवरी 1927 को राहौन शहर पंजाब में हुआ था और ये एक पंजाबी मुस्लिम परिवार से संबंध रखते थे। जब ये किशोरावस्था में थे तब ये दिल्ली अपने एक रिश्तेदार के पास आ गए थे और दिल्ली में ही रहकर इन्होंने शास्त्रीय संगीत गायक पंडित अमरनाथ से शिक्षा संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। सुनते हैं फिल्म

ये गीत आपने सुना फिल्म चंबल की कसम से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। श्रोताओं, पंडित अमरनाथ से संगीत की शिक्षा लेने के बाद खयाम साहब ने लाहौर की ओर रुख किया, जहां ये मशहूर पंजाबी संगीत निर्देशक बाबा चिश्ती से मिले। बाबा चिश्ती ने अपने बनाए हुए एक गाने को इनकी आवाज़ में सुना और वे इनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इनको अपना सहायक बना लिया। खयाम साहब ने बाबा चिश्ती के साथ करीब 6 महीनों तक काम किया और उसके बाद 1943 में ये लुधियाना आ गए। उस समय इनकी उम्र महज 17 साल थी। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म बारूद से लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में।

अलिफ से बोलो क्या होता है?

0: अच्छा मुन्ना, बोलो तेज से क्या होता है?
1: तीतर।
2: तकदीर।

श्रोताओं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खयाम साहब अपने सपनों को पूरा करने के लिए बम्बई आ गए। 1948 में इन्हें फिल्म हीर रांझा में शर्मा जी के नाम से संगीत देने का मौका मिला और उसके बाद 1950 में फिल्म बीवी के एक गीत अकेले में वो घबराते तो होंगे में इन्हें संगीत देने का मौका मिला। ये गीत रिकॉर्ड किया गया था मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत हिट साबित हुआ और खयाम साहब को एक पहचान मिल गई। इसी के साथ श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म संकल्प से ये गीत। सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में।

श्रोताओं, बीवी फिल्म का संगीत हिट होने के बाद खयाम साहब को आगे कई फिल्मों में संगीत देने का मौका मिला। इन्होंने फुटपाथ, फिर सुबह होगी, शोला और शबनम, आखिरी खत, शगुन मोहब्बत इसको कहते हैं, जैसी फिल्मों में संगीत दिया। आइए सुनते हैं फिल्म आखिरी खत से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, 1970 का दशक अन्य कलाकारों और संगीतकारों के साथ साथ खयाम साहब के लिए भी बहुत बेहतरीन रहा। इस दशक में इन्होंने फिल्म कभी कभी, त्रिशूल, थोड़ी सी बेवफाई, दर्द, नूरी, बेपनाह और खानदान जैसी फिल्मों में संगीत दिया। आइए सुनते हैं फिल्म त्रिशूल से इनके संगीत निर्देशन में बना हुआ ये गीत।

श्रोताओं, जहाँ तक खयाम साहब की निजी जिंदगी का सवाल है, तो इन्होंने 1954 में जगजीत कौर नामक एक सिख युवती के साथ शादी की थी। इन दोनों का एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम था प्रदीप। इनके बेटे की मृत्यु 2012 में हार्ट अटैक से हो गई थी। आई श्रोताओं, सुनते हैं जगजीत कौर की आवाज़ में फिल्म शगुन से ये गीत।

श्रोताओं, खयाम साहब को अनेकों अवार्डों से नवाजा जा चुका है। इन्हें अनेकों फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं और 2007 में इन्हें संगीत नाटक का 2009 में नौशाद संगीत सम्मान अवार्ड, 2011 में पद्म भूषण अवार्ड और 2018 में हृदयनाथ मंगेशकर अवार्ड से नवाजा गया था। आइए श्रोताओं सुनते हैं फिल्म कभी कभी से लता मंगेशकर और मुकेश साहब की आवाज़ में ये गीत।

श्रोताओं, खयाम साहब ने फिल्मों के अलावा भी संगीत दिया है। सन 1971 में मीना कुमारी द्वारा लिखित और गाई नज़मों की एल्बम आई राइट आई रिसाइट में इन्होंने संगीत दिया था। इसके अलावा इन्होंने मिर्ज़ा गालिब, दाग, वली मोहम्मद वली, मजरूह सुल्तानपुरी, निदा फाजली जैसे गज़ल रचनाकारों और कवियों की रचनाओं के लिए भी संगीत दिया है। आइए सुनते हैं फिल्म रज़िया सुल्तान से इनके संगीत निर्देशन में बना हुआ ये गीत।

श्रोताओं, खयाम साहब आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। 28 जुलाई 2019 को जुहू मुंबई स्थित सुजॉय हॉस्पिटल में फेफड़ों के इन्फेक्शन के कारण इन्हें भर्ती कराया गया था। 19 अगस्त 2019 को कार्डियक अरेस्ट के कारण 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये आज भले ही हमारे बीच मौजूद ना हो, लेकिन अपने संगीत के माध्यम से हमारे बीच हमेशा मौजूद रहेंगे। इसी के साथ श्रोताओं, सुरों का सफ़रनामा के अंत में सुनते हैं खयाम साहब के संगीत निर्देशन में बना ये अंतिम गीत फिल्म यात्रा से, आशा भोसले की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे

0: ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण गंतव्यों को जोड़ेगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई ट्रेन सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रदर्शन से संबंधित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की अगस्त महीने की 52वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष अगस्त में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने 2,42,000 से अधिक शिकायतों का निवारण किया। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 SIR के अंतर्गत 29 और 30 सितंबर को दिल्ली के कॉलेज, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आवश्यक फॉर्म और सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, आवेदनों का रिकॉर्ड रखने, दूसरे जिलों या विधानसभा क्षेत्र से संबंधित फॉर्म संबंधित अधिकारियों को भेजने और शिविरों का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया है। जापान एशिया खेलों के कल 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलिंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction yesterday with Seva Yatris, travelling on the Yatra from Varanasi to Vatnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasized the importance of social service, social reform and positive change. He said Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vatnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service. During the interaction, these Yatris shared their experiences

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 1:10 और ये समय है पुरानी गीतों के कार्यक्रम गीत सुनहरे का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं पुराने और सदाबहार गीत। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म भक्त सूरदास से KL सहगल साहब की आवाज़ में।

0: फिल्म हमराही से ये अगला गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।
1: आंसू मेरे दिल

आइए श्रोताओं, अगला गीत सुनते हैं, फिल्म मिर्जा गालिब से तलत महमूद साहब की आवाज़ में।

इसी के साथ श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म श्री 420 से लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश और साथियों की मधुर आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को पहली अक्टूबर से 6 महीने के लिए

0: बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर पेमा सानी चंद्र शेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला 2026 महिला स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बिक्री का मंच प्रदान करेगा। विजयवाड़ा की पुन्नमी घाट पर व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के बाद उन्होंने कहा कि ये मेला 8 से 22 अक्टूबर तक लगभग 600 स्टॉलों तक के साथ आयोजित किया जाएगा। देश भर से लगभग 2500 प्रतिभागियों के हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य और अन्य ग्रामीण उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री करने की उम्मीद है। डॉक्टर पेमा सानी ने कहा कि ये मेला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की ब्रांडिंग, बाजार संपर्क और सीधी बिक्री को बढ़ावा देगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान योजना के नियमों और निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने 4 सदस्यीय टीम गठित की है। ये टीम राज्य व्यापक स्वास्थ्य और एकीकृत सेवा एजेंसी साचिस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रही है। राज्य व्यापक स्वास्थ्य और एकीकृत सेवा एजेंसी साचिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का आकलन करने के लिए औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इस वर्ष पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी में प्रमुख आकर्षण बनी हुई है। इसमें राज्य की भक्ति परंपरा, हस्तशिल्प, चित्रकला, वस्त्र और साहित्यिक विरासत को दर्शाने वाली कलाकृतियां शामिल हैं। नीलामी सूची में ओडिशा के कई पारंपरिक हस्तशिल्प भी शामिल है। इनमें कटक की चांदी की फिलीग्री या तारकशी कला या संबलपुरी वस्त्र और इक्कत प्रमुख है। पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी का 8वां संस्करण ऑनलाइन जारी है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रदर्शन से संबंधित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की अगस्त महीने की 52वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष अगस्त में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने 2,42,000 से अधिक शिकायतों का निवारण किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction yesterday with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vatnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasised the importance of social service, social reform and positive change. He said, Viksit Bharat can be realised only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vatnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colours of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colours of service. During the interaction, these yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also encouraged the yatris to maintain a diary and record their experiences during the yatra. Prime Minister Narendra Modi has highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the initiative has led to more being made in India, more investment in India and more exports from India. He said this transformation is visible across sectors. The Prime Minister said Make in India is about creating infrastructure, enterprise and innovation that allows India to grow and prosper. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad on the Mann Ki Baat program in Akashvani at 11 a.m. on Sunday. It will be the 138th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR News website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News and the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. The Office of the Chief Electoral Officer, Delhi, has directed all the district election officers to organize special camps for enrollment of young electors at colleges, universities and other educational institutions across Delhi on September 29th and 30th as part of Special Intensive Revision 2026. Students between the age of 18 to 25 eligible for registration will be assisted by BLOs to fill Form 6 for inclusion in the electoral rolls. The CEO has also directed officials to ensure adequate forms and materials, maintain records of applications, transform forms relating to other districts or assembly constituencies to the concerned authorities and publicize the camps widely. The External Affairs Minister is in New York leading the Indian delegation for the high-level week at the 81st session of the United Nations General Assembly. Dr. Jaishankar will address the high-level session today. During the visit, the minister has attended various plurilateral and bilateral meetings. In Asian Games, India's overall medal tally has reached 23 with 2 gold, 9 silver and 12 bronze in Japan. Indian duo Kamaljeet and Suruchi Singh won gold in the mixed team 10-meter air pistol event in Nagoya, Japan yesterday. The pair shot 484.6 in the final to finish 6.6 points ahead of South Korea's Soo Hyun Hong and Gwon Chu, who took silver with 478. Indian long-distance runner Gulbir Singh won the silver medal in the men's 10,000-meter race of the Asian Games. Indian athlete Varunika Ilangovan won the bronze medal in the women's pole vault at the Asian Games. Another Indian athlete, Manpreet Kaur, won the bronze medal in the women's shot put. In table tennis, Indian mixed doubles pair Adya Shitale and Manish Shah settled for a bronze medal after losing to world champions in Chinese combination Wang Shikin and Sun Ying Sha 0-3. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have congratulated all the medal winners of the Asian Games. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over Uttar Pradesh and Uttarakhand today. According to IMD, heavy to very heavy rainfall is likely over Chhattisgarh and Madhya Pradesh today. The districts in UP that are likely to receive heavy rainfall include Rampur, Pilibhit, Bareilly, Shahjahanpur and Bahraich. And that is the end of this news bulletin.
2: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 2:10। ये समय है कार्यक्रम गीत बहार का। श्रोताओं, गीत बहार कार्यक्रम में आप सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। आइए सुनते हैं सबसे पहले एक गीत फिल्म नमक हराम से किशोर कुमार की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण गंतव्यों को जोड़ेगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई ट्रेन सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। भारत की प्रमुख उर्वरक उत्पादक किसान सहकारी संस्था कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिबको ने वित्त वर्ष 2025-26 में 824 करोड़ रुपए से अधिक का कर पूर्व लाभ दर्ज किया है। नई दिल्ली में आयोजित क्रिबको की वार्षिक आम बैठक में प्रबंध निदेशक एस एस यादव ने कहा कि क्रिबको और उसकी सहायक कंपनियों ने

0: उत्पादन और परिचालन दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं की पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज के दक्षिणी क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों, आईटीआई प्रशिक्षुओं, पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों तथा कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र शामिल थे। उड़ीसा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इस वर्ष पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी में प्रमुख आकर्षण बनी हुई है। इसमें राज्य की भक्ति परंपरा, हस्तशिल्प, चित्रकला, वस्त्र और साहित्य की विरासत को दर्शाने वाली कलाकृतियां शामिल है। नीलामी सूची में उड़ीसा के कई पारंपरिक हस्तशिल्प भी शामिल है। इनमें कटक की चांदी की फिलीग्री या तारकशी कला तथा संबलपुरी वस्त्र और इक्कत प्रमुख है। पीएम स्मृति चिन्ह ई नीलामी का 8वां संस्करण ऑनलाइन जारी है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में सर्दियों के दौरान डाक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए अनूठी पहल शुरू की गई है। भारी बर्फबारी से सड़कें बंद होने पर अब ड्रोन के जरिए दूरदराज के डाकघरों तक डाक पहुंचाई जाएगी। इसका उद्देश्य भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों को निर्बाध डाक सेवा उपलब्ध कराना है। मंडी में सफल परीक्षण के बाद अब इस व्यवस्था को लाहौल की 11 और दूरदराज शाखाओं तक पहुंचाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी और लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश की चेतावनी के कारण कई जिलों में 12वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रहेंगे। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में पिछले 24 घंटों में चक्रवाती स्थितियों के कारण भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होने के साथ साथ सड़क यातायात पर भी असर पड़ा है। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted a considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction yesterday with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasised the importance of social service, social reform and positive change. He said Viksit Bharat can be realised only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colours of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colours of service. During the interaction, these Yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also urged the Yatris to maintain a diary and record their experiences during the Yatra. Prime Minister Narendra Modi has highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the initiative has led to more being made in India, more investment in India and more exports from India. He said this transformation is visible across the sectors. The Prime Minister said Make in India is about creating infrastructure, enterprise and innovation that allows India to grow and prosper. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. on Sunday. It will be the 138th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR News website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, TD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Uttar Pradesh government has decided to take strict action against hospitals

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम गज़ल गीत, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। आइए सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना, कलाकार थी पी लीला। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मिनी एन का वायलन वादन, राग कल्याणी।

आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। आपने सुना मिनी एन का वायलिन वादन। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आज शनिवार है,

संवत 1948 के अश्विन मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 सितंबर 2026 सुबह के 4:53 बावन सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आइए जान ले। आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में हिंदी समाचारों के बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जानेंगे योग बद्ध पद्मासन के बारे में। देशभक्ति गीत के बाद कार्यक्रम स्वर रंजनी में आज आप सुनेंगे रामा सुंदर रंगनाथन का गायन राग बैरागी भैरव। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा सुबह 6:10 पर। इसके बाद आप सुनेंगे एक चिंतन प्रायश्चित पर गांधी जी के विचार। रामचरित मानस में आज का विषय है अयोध्या कांड। इसमें आज आप 60वीं कड़ी सुनेंगे। संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के बाद सुबह 7:10 पर समय रहेगा कार्यक्रम संगीतिका का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे सुमंता मुखोपाध्याय का के गाए कुछ भजन। गीतों भरी गुड मॉर्निंग ये प्रोग्राम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर। इसके बाद हिंदी अंग्रेजी और उर्दू में समाचार सुनेंगे। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर। धरती आकाश का समय रहेगा सुबह 9:15। मिट्टी दी महक ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर। फिल्म संगीत आपकी पसंद ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:10 पर। सबरस इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं।

हैं सुबह 11:10 पर। 11:30 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर मंजरी। महिला कार्यक्रम घरांगन का समय रहेगा दोपहर 12:10। 1:10 पर सुनिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज की फिल्म है अमर। पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी समाचारों के बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के कलाकार हैं देव आनंद। इसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। 3:30 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे नाटक इंतजार। ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचानकर नवाचार के माध्यम से व्यवहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों, ITI प्रशिक्षुओं, पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों तथा कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल हैं। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर समूचे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये नई रेल सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का एक और विकल्प प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। भारत की प्रमुख उर्वरक उत्पादक किसान सहकारी संस्था कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिबको ने वित्त वर्ष 2025-26 में 824 करोड़ रुपए से अधिक का कर पूर्व लाभ दर्ज किया है। नई दिल्ली में आयोजित क्रिबको की वार्षिक आम बैठक में प्रबंध निदेशक SS यादव ने कहा कि क्रिबको और उसकी सहायक कंपनियों ने उत्पादन और परिचालन दक्षता के उच्च मानकों को

योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाए। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। योग का महत्व योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। आज वही योग दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहा है। योग का अर्थ है जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने चित्त को एक ही जगह स्थापित करना योग है। आज के कार्यक्रम में बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन को अंग्रेजी भाषा में लॉक्ड लोटस पोज या फिर क्लोज्ड लोटस पोज भी कहा जाता है। बद्ध पद्मासन दो शब्दों से मिलकर बना है, बद्ध और पद्म, जिसमें बद्ध का अर्थ होता है बांधा हुआ और पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। इस आसन को करने का तरीका मेरे साथ कीजिए।

सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं। हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। श्वास अंदर लें और अपनी

0: ऐसा ही करें। अब आप पद्मासन में हैं। इस मुद्रा में आपके दाएं कूल्हे और घुटने पर खिंचाव आएगा। अब अपना बायां हाथ पीठ के पीछे से आगे की ओर ले आएं और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ दें। यह करने के बाद इस मुद्रा में एक से दो बार सांस अंदर और बाहर लें। और अब यही क्रिया दाएं हाथ से भी दोहराएं। बहुत से लोग ये आसन उतनी आसानी से नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए जहां तक आपके हाथ जाते हैं पद्मासन में बैठे हुए, पीठ के पीछे से क्रॉस करते हुए जितनी दूरी तक आपके हाथ जाते हैं वहां तक ले जाएं। नियमित अभ्यास से धीरे धीरे आपका लचीलापन बढ़ेगा और आप इस आसन को पूरी तरह से कर पाएंगे। जिन लोगों का बद पद्मासन लग चुका है, अब आप उस मुद्रा में थोड़ी देर बैठें और कुल मिलाकर 5 बार सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, ताकि आप आसन में 30 से लेकर 60 सेकेंड यानी 1 मिनट तक रह सकें। धीरे धीरे जैसे आपके शरीर में ताकत और लचीलापन बढ़ने लगे, आप इस समय को बढ़ा भी सकते हैं, परंतु कभी भी इस आसन को 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड से ज्यादा ना करें। 5 बार सांस लेने के बाद आप इस मुद्रा से बाहर आ सकते हैं। अब बद्ध पद्मासन करने के लाभ के बारे में बात करें। बद्ध पद्मासन घुटनों और कूल्हों के जोड़ों का लचीलापन बढ़ाता है। कंधों, कलाइयों, पीठ, कोहनियों, घुटनों और टखनों में खिंचाव लाता है और उन्हें मजबूत बनाता है। यह पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और रीढ़ की नसों में रक्त परिसंचरण बढ़ाता है। बद्ध पद्मासन पाचन अंगों को उत्तेजित करता है और कब्ज आदि से राहत दिलाता है। बद्ध पद्मासन का दैनिक अभ्यास गठिया में भी आपको फायदा देता है, लेकिन इस आसन को करने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये आसन निषेध है। जिनके घुटनों में तीव्र दर्द हो उन्हें बद्ध पद्मासन नहीं करना चाहिए। अगर आपको हैमस्ट्रिंग में चोट हो तो बद्ध पद्मासन ना करें। कंधों में चोट या दर्द हो तो ये आसन आपके लिए वर्जित है। और हमेशा की तरह एक सुझाव, अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक जोर ना लगाएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी एक नए आसन के साथ, इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने जानकारी ली योग पद्मासन की।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। समय हुआ है सुबह के 5:30। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी।